नमस्कार। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 23 जून सन 2026। इस समय 5:57 होने को हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से विकसित हो रही भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय शक्ति है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि पिछले दशक में भारत की उपलब्धियां राष्ट्र प्रथम की भावना से निर्देशित रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लिए गए निर्णय और कार्रवाई सदियों तक देश के भविष्य की आधारशिला रहेंगी।
1: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
0: प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में अपनी हाल की भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के प्रति भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की चेतना में सदियों से सहेजी गई स्मृतियां जीवंत हैं। वर्तमान में उठाए गए कदम अगले 1000 वर्षों के लिए भविष्य को आकार देंगे। सरकार के 12 वर्ष के सेवा कार्यों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश के लगभग 45,000 गांवों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि आज कुछ लोग संविधान की बात उठाते हैं, लेकिन जब वे सत्ता में थे तो नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में संविधान का नाम लेने पर ही गोली तक मार दी जाती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया जैसी पहल इस कारण सफल हो सकी है क्योंकि देश के लोगों ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और देश के प्रति कर्तव्य निभाए। आर्थिक सुधारों से मध्यम वर्ग को मिल रहे लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कर राहत उपायों से परिवारों की कर मुक्त आय बढ़ी है। भारत और मोरक्को के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉ विनोद बाहड़े और मोरक्को के राष्ट्रीय न्यायिक पुलिस ब्रिगेड के प्रमुख हिशाम बाली ने की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण और बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। उम्मीद है कि ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थी मारे गए और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, जिससे ये प्रक्रिया ज्यादा आसान और सुलभ हो जाएगी। फीफा विश्व कप में इस समय अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ग्रुप 1 के मुकाबले में फ्रांस और इराक के बीच मैच चल रहा है। इससे पहले ग्रुप जे के मैच में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी ने 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से

0: होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

जिस भूमि ने हमें जन्म दिया, संस्कार दिए और पहचान दी, उसके प्रति प्रेम, सम्मान और समर्पण का भाव ही देशभक्ति है। आइए अपने कर्मों से भारत को और अधिक शक्तिशाली, समृद्ध और गौरवशाली बनाने का संकल्प लें।

भक्ति में डूबा हुआ हृदय संसार के कोलाहल से परे शांति और आनंद का अनुभव करता है। जब मन श्रद्धा से भर जाता है, तब प्रत्येक विचार, प्रार्थना और प्रत्येक श्वास ईश्वर का स्मरण बन जाती है।

भक्ति वो शक्ति है जो हृदय को विनम्रता, प्रेम और समर्पण से आलोकित करती है। एक भक्त का हृदय न केवल ईश्वर के प्रति समर्पित होता है, बल्कि समस्त सृष्टि के प्रति करुणा और सद्भाव से भी परिपूर्ण होता है।

जहां भक्ति का प्रकाश होता है वहां अहंकार और अहंकार का अंधकार खुद मिट जाता है। भक्ति में निमग्न हृदय को बाहरी सुखों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसे अपने आराध्य के स्मरण में ही परम संतोष प्राप्त होता है।

0: अभी आपने सुना भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं आज का चिंतन। शीर्षक है मन, आलेख एनी हेटफील्ड की और वाचक हैं मनीष सोनी।
1: मन मानव जीवन का सबसे सूक्ष्म, सबसे रहस्यमय

0: और सबसे शक्तिशाली अंग है। यही मन हमें सोचने, समझने, महसूस करने और निर्णय लेने की क्षमता देता है। मन ही हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाता है और मन ही हमें गहरे दुख, भ्रम और असंतोष में डाल देता है। इसीलिए कहा गया है, मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति का द्वार है। मन एक ऐसी शक्ति है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका प्रभाव हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारे कर्म सब मन के माध्यम से ही उत्पन्न होते हैं। यदि मन शांत, सकारात्मक और संतुलित हो तो जीवन सरल, सुखमय और उद्देश्यपूर्ण बन जाता है। लेकिन यदि मन अशांत, नकारात्मक और असंतुलित हो तो व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी वो दुखी रहता है। मन का स्वभाव चंचल है, वो कभी भी अतीत में भटकता है, कभी भविष्य की कल्पनाओं में उलझ जाता है। वर्तमान में टिक कर रहना मन के लिए सबसे कठिन कार्य है। यही कारण है कि मनुष्य अक्सर उस सुख को महसूस कर पाता है जो उसके पास वर्तमान में मौजूद है। वो या तो बीते हुए कल के दुखों को याद करता है या आने वाले कल की चिंताओं में खो जाता है। इस तरह मन स्वयं ही अपने लिए दुख का निर्माण कर लेता है। मन की शक्ति अपार है, यह व्यक्ति को साधारण से असाधारण बना सकती है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने अपने मन पर नियंत्रण पाया, उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, बुद्ध, रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुषों ने मन की शक्ति को पहचाना और उसे अनुशासन में रखा। उनका मन दृढ़ संकल्प, सेवा और करुणा से भरा हुआ था, इसलिए उनका जीवन समाज के लिए प्रेरणा बन गया। मनुष्य का मन विचारों से बनता है। जैसे बीज बोए जाते हैं, वैसे ही विचार बोए जाते हैं। अच्छे विचार अच्छे कर्मों को जन्म देते हैं और अच्छे कर्म जीवन को सुंदर बनाते हैं। इसके विपरीत नकारात्मक विचार मन में भय, ईर्ष्या, क्रोध और घृणा पैदा कर देते हैं। ये भावनाएं व्यक्ति को भीतर से कमजोर बना देती है। इसलिए कहा जाता है कि हमें अपने मन के विचारों का चयन सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। मन को समझना आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। जब व्यक्ति अपने मन के भावों, इच्छाओं और प्रवृत्तियों को पहचान लेता है, तभी वो स्वयं को पहचान पाता है। आत्मनिरीक्षण, ध्यान, प्रार्थना और सत्संग मन को शुद्ध करने के प्रभावी साधन है। जब मन शांत होता है, तब बुद्धि स्पष्ट होती है और व्यक्ति सही निर्णय ले पाता है। आज के युग में मनुष्य का मन अत्यधिक व्यस्त और अशांत हो गया है। तकनीक, प्रतिस्पर्धा, भौतिक सुख सुविधाएं और सामाजिक दबाव मन को लगातार तनाव में रखते हैं। व्यक्ति बाहर से सफल दिखाई देता है, पर भीतर से खालीपन और बेचैनी महसूस करता है। इसका कारण यह है कि उसने अपने मन को समझने और संभालने का समय नहीं दिया। मन का संतुलन जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है। संतुलन मन न तो अत्यधिक सुख में अहंकार करता है और न ही दुख में टूटता है। वो हर परिस्थिति को सीख और अनुभव के रूप में स्वीकार करता है। संतुलित मन ही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है, क्योंकि सुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि भीतर की स्थितियों से जुड़ा होता है। मन को सकारात्मक दिशा देने के लिए हमें अपने जीवन में अनुशासन, संयम और कृतज्ञता को अपनाना चाहिए। सुबह उठकर कुछ समय मौन और ध्यान में बिताना, प्रकृति के साथ समय बिताना, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना और दूसरों की सेवा करना, ये सभी मन को पवित्र और शांत बनाते हैं। मन एक साधन है, स्वामी नहीं। यदि हम मन के गुलाम बन जाते हैं तो वो हमें भ्रम और दुख में डाल देता है। लेकिन यदि हम मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो वही मन हमें आत्म शांति, आनंद और मुक्ति की ओर ले जाता है। इसलिए जीवन का वास्तविक उद्देश्य मन की साधना है। उसे समझना, उसे सुधारना और उसे उच्च आदर्शों की ओर प्रेरित करना है। मन की यात्रा अंतर्मुखी यात्रा है। जब हम बाहर की दुनिया से थोड़ा हटकर अपने भीतर झांकते हैं, तब हमें अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव होता है। यही अनुभव जीवन को अर्थ, दिशा और शांति प्रदान करता है। इसलिए कहा गया है, मन को जीत लेना ही संसार को जीत लेने के समान है।
1: ये था आज का चिंतन मन। आलेख एनी हेटफील्ड और वाचक मनीष सोनी।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कार्यक्रम खेती की बातें में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं दूध और दूध का मूल्य संवर्धन।
1: किसान भयोन खे राम राम। किसान भयोन, आज खेती के बात में बात करांगा कि अपना किसान भाई होन दूध जो कि अपना पशुधन होवे है और अपना किसान भाई होन ढोर ढंकर तो पाले ही है, कोई गाय तो कोई भैंस, तो उनको जो दूध रेवे है उस दूध से कसे वे दूध को मूल्य संवर्धन करी सके है और किस प्रकार, जैसे कि भयोन आज अपन बात कर रहा दूध ने दूध का मूल्य संवर्धन की, तो जैसे दूध से पनीर, पनीर से घी बनानो, घी से मक्खन जैसी चीज़ बने ने अपन दूध का उत्पादन को मूल्य संवर्धन करी सका। हाँ, और देखो नी भयोन, दूध एक पौष्टिक और आवश्यक खाद्य पदार्थ है। इसमें उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन जैसे पायो जावे है, वसा होवे है, विटामिन होवे है और कैल्शियम और साथ ही साथ खनिज भी होवे है। मतलब दूध के संपूर्ण आहार मानियो जावे है। अगर अपना अपन कई दिन भर कई नहीं ले रहा हाँ, और अपन ने अगर एक गिलास दूध ले लियो तो वो अपना संपूर्ण आहार हो ही सके है। इका सारू जो दूध है वो पौष्टिक भी होवे है और आवश्यक खाद्य पदार्थ भी है। दूध को मूल्य संवर्धन से तात्पर्य यो है कि जो कच्चो दूध है उसके उबाली ने, उसके मतलब उबाली ने अधिक से अधिक ओखे अगर अपना खे लाभ में लेनो है या लंबे समय तक ओखे अपना खे चलानो है तो उसका उत्पाद के अपना खे बदलनो है। जैसे कि दूध के अपन ने खूब अच्छी तरह से उबाल लियो और में जरा सो नींबू को रस डाल दियो तो वो फटी जावेगो। फटने का बाद वो दूध से जो फटियो दूध है ओको पानी पानी अपन अलग करी देवांगा और जो फेदरो बचेगो ओका से अपन पनीर बने सका। हाँ, वैसे ही दूध के गरम करी ने उबाली ने थोड़ो कुन कुनो करी के ओ में अगर अपन थोड़ो सो दही नाकी के रात भर राखी देवांगा तो सुबह अपना के अच्छो सो दही मिली जावेगो। और दही के जद अपन छेना वाला मतलब बारीक कपड़ा में बांधी के रात भर टांगी ने रखांगा तो ओको पानी पानी नितरी जावेगो और ओको जो फेदरो बचेगो वो अपना खे चक्का का रूप में मिलेगो। उन्हें चक्का में कदी अपन ने शक्कर मिलाई दी और उसके अच्छी तरह से फेटी लियो तो वो अपना खे श्रीखंड का लिए काम में आएगो। मतलब ये दूध का उत्पादन के बदलनो और दूध के बदलनो और ओका से अपना के उत्पाद बदलनो यही दूध को मूल्य संवर्धन है। इसमें किसानों किसान भाइयों अपनी आय के कई गुना बढ़े सकता है और को मतलब जो चाहे उन तरीका से अपनो मतलब वे उन्हीं चीज़ों के बने के मिठाई भी बने सके है और बहुत सारी चीज़ों बने के अपनी आय के बढ़े सके है। तरल उत्पाद जैसे कि अब दूध का प्रमुख मूल्य संवर्धन उत्पादों में कई कई शामिल हो सके है तो तरल उत्पाद जैसे पाश्चरीकृत दूध जैसे दही, लस्सी, छाछ, श्रीखंड बनेने ओके अपन ने ओको उत्पादन के बढ़ाई लियो। वसा पे आधारित उत्पाद में अगर अपन चावा तो अपन मक्खन बने सका हाँ, घी बने सका हाँ, क्रीम बने सका हाँ। जल संक्षेपण उत्पाद में खोयो बने लो, मावो बने लो, रबड़ी बने लो, कलाकत बने लो और अपना चमचम बने लो, मतलब अपन बहुत सारी चीज़ें बने सका हाँ। स्कंदन उत्पाद में पनीर और छेनो, फ्रोजन उत्पाद में अपन आइसक्रीम और कुल्फी बने इना दूध को उपयोग करी सका हाँ। और उपयोग करने का साथ साथ अपन एक हमें आय भी बढ़ ही सका हाँ, जैसे कि अपन चाहो तो इसको व्यवसाय करीने इखे आगे बढ़ ही सका हाँ। मूल्य संवर्धन से महत्व अपन महत्व की बात करा तो लाभ में वृद्धि, जैसे पनीर या घी की बिक्री से तरल दूध की तुलना में और अधिक मुनाफा मिले है। दूध जल्दी खराब हुई जावे है लेकिन इका उत्पादन जैसे कि घी या पनीर लंबे घना लंबा समय तक सुरक्षित रहे है। बर्बादी कम होवे, अतिरिक्त दूध को जो बची जावे है तो अगर अपन चावा तो ओको पाउडर बने सकता हाँ या फिर अन्य उत्पादन बने के अपन ओको उपयोग लाभ लेने घना सारा कार्य करी सके हैं। तो आज अपना किसान बहन से इतना ही कहना था, राम राम।
0: कार्यक्रम खेती की बातें में आपने सुना दूध और दूध का मूल्य संवर्धन। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान।

शिव का वरण करने के पार्वती के निश्चय की परीक्षा लेने के उद्देश्य से सप्तर्षियों ने हर प्रकार से उन्हें शिव से विमुख करने का प्रयत्न किया, किंतु शैल कुमारी शैल की भांति ही दृढ़ थीं। कहा, मैं महर्षि नारद के वचन की अनसुनी नहीं करूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिल गए होते तो मैं आपका उपदेश सिर आंखों पर रखकर मान लेती, परंतु अब तो शिव जी के लिए मैं अपना जन्म हार चुकी हूँ, फिर उनके गुण दोष का विचार कैसा। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक ये हठ रहेगा कि या तो मैं शिव जी को वरूंगी या फिर कुंवारी रहूंगी। शिव जी के लिए पार्वती की ऐसी प्रीति देखकर ज्ञानी मुनिगण उनकी जय जयकार कर उठे। बोले, हे माते, आप माया हैं और शिव कल्याणकारी भगवान। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ऋषिगण ने हिमवान के पास जाकर उन्हें पार्वती के पास भेजा, जो विनती करके उन्हें घर ले आए। उधर भगवान शंकर के पास जाकर ऋषियों ने पार्वती की दृढ़ प्रतिज्ञा का वर्णन सुनाया, जिससे भगवान शिव आनंद मग्न हो गए।

आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। वक्त है कार्यक्रम विवरण का, तो आइए आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में बता दें।

सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुनहरे पल, 8:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम खेल पत्रिका, सुबह 9 सुनिए प्रभुलाल मालवी के गाए लोकगीत, 9:15 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं आबिदा परवीन के गाए गीत, 9:30 पर सुनिए विदुषी जरीन दारूवाला का सरोद पर बजाया राग भटियार। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे जिले की चिट्ठी 10:00। फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन आप सुन सकते हैं 10:05 पर। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे फोन इन प्रोग्राम बात आपकी गीत हमारे 11:00, फिल्म संगीत 12:00, 2:00 और 2:30 पर, संग्रहालय से 12:30 पर, महिला कार्यक्रम 1:00, लोक संगीत 1:30 पर और सुगम संगीत 1:45 पर। रोजाना शाम 5:00 हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम युववाणी, NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम होगा शाम 6:00। 6:30 पर आप सुनेंगे आबिदा परवीन के गाए गीत, 6:45 पर आपको सुनवाएंगे प्रभुलाल मालवीय के गाए लोकगीत, 7:20 पर होगा कार्यक्रम खेती गृहस्थी जिसके अंतर्गत डॉक्टर नीलम बुनकर से सुनिए भेंटवार्ता, विषय है खेत तालाब, खेती का वरदान और पानी की बचत। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे सुर्खियों में रात 8:00, दिल ने फिर याद किया आप सुन सकते हैं 8:15 पर। चित्रगीत का समय है 9:15 पर। 9:30 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे कार्यक्रम कहकशां। 10:00 श्रोता अपने फरमाइशी पत्रों पर आधारित कार्यक्रम सुनेंगे मन भावन। रात 10:30 पर कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत GR बेहरे का गाया राग शुद्ध कल्याण आप सुन सकते हैं। ये थी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी।

0: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की 1 बात है सही। सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
1: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
2: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता से सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की और सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। भारत और मोरक्को के बीच आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण तथा बेहतर कार्यप्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। यह पोर्टल नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि यह पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों तथा हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई थी और 9 अन्य घायल हो गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। महिला सिंगल्स में भारत के 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

श्रोताओ, हम आपको याद दिला दें कि सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुनहरे पल। 8:30 पर होगा खेल पत्रिका। सुबह 9 प्रभुलाल मालवीय के गाए लोकगीत आप सुन सकते हैं। और 9:15 पर आप सुनेंगे आबिदा परवीन के गाए गीत। कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे विदुषी जरीन दारूवाला का सरोद पर बजाया राग भटियार। 9:30 पर

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार के लिए आइए आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र बस कुछ ही पलों में।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से विकसित हो रही भरोसेमंद अर्थव्यवस्था वाला देश बना। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रभारी मंत्रियों को दिए निर्देश, स्वतंत्रता दिवस पर जिला मुख्यालयों पर विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दें। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आज से शुरू होगा विशेष पखवाड़ा, प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे विभिन्न कार्यक्रम। और राज्य में मॉनसून के 25 जून के बाद प्रवेश के आसार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से विकसित हो रही भरोसेमंद अर्थव्यवस्था विश्वसनीय शक्ति है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि पिछले दशक में भारत की उपलब्धियां राष्ट्र प्रथम की भावना से निर्देशित रही हैं। प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में अपनी हाल की भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के प्रति भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है, उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की चेतना में सदियों से सहेजी गई स्मृतियां जीवंत हैं। वर्तमान में उठाए गए कदम अगले हजार वर्षों के लिए भविष्य को आकार देंगे।
1: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है। ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है, हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे। और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस पर जिला मुख्यालयों पर होने वाले कार्यक्रमों में जिलों के प्रभारी मंत्री जिलों में हुए विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों से जुड़ी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करेंगे। समारोह स्थल पर विकास कार्यों और योजनाओं को जन सामान्य के सामने रखने के लिए प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल मंत्रालय में योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिला विकास समितियों का राजधानी भोपाल में सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला विकास समितियां विकास गतिविधियों के लिए शासकीय योजनाओं में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन आज देवास जिले के कन्नौज तहसील के डोकाकोई गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान डॉ. मुरुगन सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत स्वीकृत विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कल भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से सौजन्य भेंट की। इस दौरान प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों ने कल भोपाल में राज्य स्तरीय बैठक में व्यक्तियों, संस्थाओं, शासकीय विभागों, राजनीतिक दल, धर्मगुरुओं सहित विभिन्न आयोगों के प्रतिनिधियों की राय जानी। इस अवसर पर उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने प्रमुख रूप से विवाह, विवाह विच्छेद, संतान, दत्तक नियम जैसे विभिन्न विषयों पर राय दी। इस उच्च स्तरीय समिति में सदस्य और उत्तराखंड के सेवानिवृत्त मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिन्हा, शिक्षाविद गोपाल शर्मा और डॉ. शोभा पेथनकर, वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप नायर, समाजसेवी बुद्ध पाल सिंह ने सुझाव रखे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश

0: से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि आज से उनकी जयंती 6 जुलाई तक विशेष पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल महापौर और नगर पालिका अध्यक्षों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ मुखर्जी का मानना था कि युवा राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने युवाओं को नेतृत्व, शिक्षा और सामाजिक दायित्व के लिए प्रेरित किया। इस पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि पखवाड़े के दौरान युवा सम्मेलन, निबंध प्रतियोगिता और संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएं। इससे नई पीढ़ी को राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज भोपाल आचारपुरा में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान मध्य प्रदेश और वन्या जनजाति कार्य विभाग द्वारा आयोजित आदिरंग शिल्पकार महोत्सव 2026 का समापन समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ यादव महोत्सव के दौरान जनजातीय शिल्पकारों द्वारा विकसित नवाचारपूर्ण उत्पादों, डिजाइन हस्तशिल्पों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। साथ ही शिल्पकारों, डिजाइन विशेषज्ञों और प्रतिभागियों से वो संवाद करेंगे। नरसिंहपुर पुलिस द्वारा शुरू की गई गोल्डन आवर हीरो अभिनव पहल ने जिले में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिणाम दिए हैं। इस अभियान के प्रभाव से जनवरी से मई 2026 की अवधि में सड़क दुर्घटनाओं में 33%, मृत्युदर में 23% और तथा गंभीर घायलों की संख्या में 52% की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। पुलिस मुख्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सड़क दुर्घटना के बाद का पहला आधा घंटा गोल्डन आवर घायल व्यक्ति के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए नरसिंहपुर पुलिस द्वारा राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के किनारे स्थित ढाबों, पेट्रोल पंप संचालकों, स्थानीय ग्रामीणों को चिन्हित कर उन्हें CPR और प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उज्जैन में अगले वर्ष 2028 में आयोजित होने वाले सिंहस्थ महापर्व को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में सागर पुलिस लाइन सभागार में पुलिस कर्मियों के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के चौथे बैच का कल शुभारंभ किया गया। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। 2024 में चीन ने हुलुनबुइर में आयोजित एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ये भारत और पाकिस्तान के बीच पहला मुकाबला है। 2024 में हुए मुकाबले में भारत ने 2-1 से जीत हासिल की थी। प्रदेश में मॉनसून के 25 जून के बाद प्रवेश करने के आसार हैं। मौसम विभाग ने आज जबलपुर, मंडला, दमोह, उमरिया में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। वहीं ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, बालाघाट, सिवनी, भोपाल, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, इंदौर, धार, बड़वानी, आलीराजपुर और झाबुआ जिले में तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर जिले में रबी मौसम में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली और एक सिला एक उत्पाद में चयनित इंदौर के मालवी आलू को अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान मिल गई है। खंडवा में आगामी मुहर्रम पर्व के दौरान कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन तथा पुलिस विभाग की पूरी टीम मुस्तैद है। तंबाकू नियंत्रण और तंबाकू मुक्त युवा अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर आगरमालवा में कल कार्यशाला हुई, जिसमें तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों पर चर्चा हुई। झाबुआ कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने संभागीय चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से बामनिया क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया। कटनी में राज्य सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता पर आम नागरिकों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें कटनी के 17,000 नागरिकों ने ऑनलाइन लिखित रूप से अपने सुझाव शासन को प्रेषित किए। निंडौरी में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले में जल संचय और जन भागीदारी के माध्यम से किए गए कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: दुनिया को जिन्होंने अहिंसा का मंत्र दिया वो थे महात्मा गांधी।
1: ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको

लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत था फिल्म भाभी की चूड़ियाँ से। शब्द पंडित नरेंद्र शर्मा के और इसमें संगीत दिया सुधीर फड़के ने।

सुमन कल्याणपुर और कमल बारोद की आवाज़ में ये गीत आपने सुना फिल्म बरसात की रात से। संगीत था रोशन का और शब्द थे साहिर लुधियानवी के।

आशा भोसले और किशोर कुमार के युगल स्वरों में ये गीत था फिल्म महल से। शब्द थे आनंद बख्शी के और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

मदन मोहन का संगीतबद्ध किया ये गीत आपने सुना फिल्म आखिरी दाव से। आवाज थी मोहम्मद रफी की और शब्द मजरूह सुल्तानपुरी के।

0: वाले माँ।
1: अरे जा जा जा जा।
0: अरे सुन सुन सुन सुन।
2: फिल्म आर पार से ये गीत था, गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। शब्द थे मजरूह सुल्तानपुरी के और इसमें संगीत दिया था ओ पी नैयर ने।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत था फिल्म आ पाए बहार आई से। शब्द आनंद बख्शी के और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

किशोर कुमार की आवाज में ये गीत आप सुन रहे हैं फिल्म मशाल से। ये संगीत है हृदयनाथ मंगेशकर का और शब्द जावेद अख्तर के।

किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत आपने सुना फिल्म मशाल से। शब्द थे जावेद अख्तर के और संगीत हृदयनाथ मंगेशकर का।

अभिजीत की आवाज़ में ये गीत था फिल्म खिलाड़ी से। शब्द अनवर सागर के और संगीत जतिन ललित का। इसी गीत के साथ कार्यक्रम सुनहरे पल को अब यहीं विराम देते हैं। इजाज़त दीजिए अमृता को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल। थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 और आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक ले जा रहे 4 जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान एलएनजी

0: विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
1: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
1: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य

0: विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
2: मैदाब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
1: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने BNS और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT का गठन किया गया है, जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। SIT में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश की कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 बजे के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
5: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदांबी श्रीकांत

0: अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 बजे से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
1: मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक रिसॉर्ट में घंटों चली वार्ता। बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई, जेडी वेंस ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमरीका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। ये शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान किया। बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले 6ठे व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए SIT गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से सीख ली गई होगी, लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अधिकरण कांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा, द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज प्रिंसिपल ऑफ नेशन फर्स्ट has been driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. President Draupadi Murmu to confer Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. Uttar Pradesh government suspends 4 officials in connection with Lucknow fire incident. 4 accused arrested. 4 ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirmed death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, the Prime Minister said the country's achievements of the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
4: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी दो तीन दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
3: Referring to his recent participation in the G7 summit, Mr. Modi said, world leaders recognized India's unwavering commitment to putting national interests first, a philosophy that continues to shape the country's policies and development agenda. Highlighting the government's 12 years in office, the Prime Minister said initiatives such as Swachh Bharat, Make in India, promotion of Khadi and support for local products succeeded because citizens embraced the spirit of nation building.
4: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं।
3: Mr. Modi said nearly 25 crore people had moved out of poverty in recent years, leading to the emergence of a large new middle class and boosting economic activity.
4: 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, न्यू मिडिल क्लास में आए हैं, तो इसका फायदा केवल उन परिवारों तक नहीं रहता बल्कि मिडिल क्लास का भी इतना फायदा होता है क्योंकि ये नया कंज्यूमर है जो इकोनॉमी को ड्राइव करता है, उसे अल्टीमेटली मिडिल क्लास के लिए अवसर बनते हैं। यानी गरीबी कम होना केवल वेलफेयर का ही विषय नहीं है, यह अवसरों के विस्तार की गाथा है, नई एस्पिरेशन की प्रेरणा है।
3: President Draupadi Murmu will present the Padma Awards during the second civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. The President will confer 65 Padma Awards today. A report.
5: This year, the government has announced a total of 131 Padma Awards. These include 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. Among the awardees, 19 are women, while 16 individuals will be awarded posthumously. The Padma Awards, namely Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri, are among the highest civilian awards of the country. Tennis legend Vijay Amritraj, actor Mamuti, playback singer Alka Yagnik and cricketer Rohit Sharma are among 65 prominent personalities who will receive the Padma Awards from the President. Today. Instituted in 1954, these awards are announced on the occasion of the Republic Day every year. The award seeks to recognize work of distinction and is given for distinguished and exceptional achievements in various fields and disciplines, including art, literature, education, sports, medicine, social work, science and engineering, public affairs and trade and industry. Soumya Sharan, Akashwani News, Delhi.
3: New Services Division of Akashwani is broadcasting special programs as part of our series People's Padma on Akashwani. Through these episodes, we bring insights into the lives and contributions of Padma awardees.
6: Finally, idea for human milk bank, and I started then the first human milk bank in Asia.
7: I designed many equipment for measurement of materials such as

नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम खेल पत्रिका में मैं अमृता आपका स्वागत करती हूं। जून का महीना खेल प्रेमियों के लिए काफी दिलचस्प रहा है। क्रिकेट से लेकर एथलेटिक्स और शतरंज तक कई ऐसी खबरें सामने आई जिन्होंने खेल जगत का ध्यान अपनी ओर खींचा है। सबसे पहले बात एथलेटिक्स की। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने हाल ही में दोहा डायमंड लीग में अपने 2026 सीजन की शुरुआत की। चोट से वापसी कर रहे थे नीरज, फिर भी उन्होंने 85.69 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया। हालांकि वे पदक से चूक गए और चौथे स्थान पर रहे, लेकिन इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफिकेशन हासिल कर ली। और जब अब बात करते हैं भारतीय एथलेटिक्स की ही एक और खुशखबरी की, नई दिल्ली में आयोजित एशियन रिले चैंपियनशिप में भारत की महिला 4x100 मीटर रिले टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारतीय टीम ने चीन को पीछे छोड़ते हुए सीजन का सर्वश्रेष्ठ समय दर्ज किया है। खेल के मैदान में हर खिलाड़ी कभी न कभी ऐसे दौर से तो गुजरता ही है जब वो परिणाम उसकी उम्मीदों के अनुरूप नहीं होते। ऐसे में प्रतिभा से अधिक काम आती है जिद, धैर्य और दोबारा उठ खड़े होने की क्षमता। ऐसा ही एक गीत सुन लेते हैं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इंदौर से कार्यक्रम खेल पत्रिका। अब रुख करते हैं क्रिकेट की ओर। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट श्रृंखला में दूसरे टेस्ट मुकाबले में न्यूजीलैंड ने शानदार वापसी करते हुए इंग्लैंड को 253 रन से पराजित किया। इस हार के बाद इंग्लैंड को एक और झटका तब लगा जब धीमी ओवर गति के कारण विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में उसके 12 अंक काट लिए गए। उधर युवा क्रिकेट प्रतिभाओं की बात करें तो वैभव सूर्यवंशी लगातार चर्चा में हैं। हाल ही में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल में उन्होंने केवल 29 गेंदों पर 94 रन का विस्फोटक बारी खेलकर जो सबको प्रभावित किया है, क्योंकि ऐसे जानदार क्रिकेट टीम जो है हमारी इंडिया की जो है वो अपनी शानदार झलक जो है वो दिखाई है। क्रिकेट की बात चली है तो एक और बात याद आती है कि खेल कोई भी हो, आखिरकार जीत केवल किसी एक खिलाड़ी की नहीं होती, उसके पीछे पूरी टीम का योगदान होता है। यही टीम भावना भारतीय खेलों की सबसे बड़ी ताकत है। ऐसी ही भावना से ओतप्रोत ये अगला गीत।

श्रोताओ, क्रिकेट की दुनिया से अब रुख करते हैं फुटबॉल की ओर। इन दिनों फीफा विश्व कप का रोमांच जो है वो अपने पूरे शबाब पर है। दुनिया भर की निगाहें अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेले जा रहे मुकाबलों पर टिकी हुई है। लेकिन इस बार चर्चा केवल बड़ी टीमों की नहीं हो रही, बल्कि उन टीमों की भी हो रही है जिन्होंने अपने खेल से जो है वो सबको चौंका दिया है। हाल ही में केप वर्डे ने दो बार की विश्व चैंपियन टीम उरुग्वे को 2-2 की बराबरी पर रोक कर फुटबॉल जगत का ध्यान अपनी ओर खींचा। वहीं कांगो ने भी मजबूत पुर्तगाल के खिलाफ ड्रॉ खेलकर यह साबित कर दिया कि विश्व कप जैसे मंच पर किसी भी टीम को हल्के में लेना ठीक नहीं है। और बात अगर पुर्तगाल की हो रही हो तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी एक नया इतिहास रच दिया है। वे फीफा विश्व कप में 6 संस्करण खेलने वाले दुनिया के केवल दूसरे पुरुष फुटबॉलर बने हैं। यह उपलब्धि उनके लंबे और शानदार करियर की एक और यादगार कड़ी बन गई है। फुटबॉल की सबसे बड़ी खूबी शायद यही है, यहाँ नाम से नहीं प्रदर्शन से पहचान बनती है। कभी कोई युवा खिलाड़ी दुनिया को चौंका देता है तो कभी कोई छोटी टीम करोड़ों लोगों की के लिए जो है वो प्रेरणा बन जाती है। और जब उम्मीद आखिरी मिनट तक जिंदा रहे ना तो खेल और भी खूबसूरत हो जाता है। सुनते हैं ये गाना।

अब बात उस खेल की जिसमें भारत ने पिछले कुछ वर्षों में पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है, शतरंज। विश्व चैंपियन डी गुकेश इन दिनों अपने अगले बड़े मुकाबले की तैयारी में जुटे हैं। अनुभवी ग्रैंड मास्टर कृष्णन शशिकिरण ने हाल ही में उन्हें सलाह दी है कि वे अपने गणना की गति जो है वो तेज करें। यह बात बताती है कि विश्व चैंपियन बनने के बाद भी सीखने और सुधार की प्रक्रिया जो है वो कभी समाप्त नहीं होती। दरअसल खेल हमें यही सिखाते हैं, जीत मंजिल नहीं बल्कि अगली यात्रा की शुरुआत है। जो खिलाड़ी सीखना बंद कर देता है उसकी प्रगति वहीं रुक जाती है। आगे बढ़ने का हौसला बनाए रखना ही असली जीत है।

श्रोताओ, चलते चलते एक छोटी सी बात। खेलों की दुनिया हमें रोज याद दिलाती है कि रिकॉर्ड टूटते हैं, ट्रॉफियां बदलती हैं, रैंकिंग ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन मेहनत, अनुशासन और टीम स्पिरिट का कोई विकल्प नहीं होता। शायद यही वजह है कि मैदान चाहे गांव का हो, स्कूल का हो या ओलंपिक का, खेल हमेशा इंसान को बेहतर बनाते हैं। आज हमने बात की नीरज चोपड़ा की वापसी की, भारतीय महिला रिले टीम की उपलब्धि की, क्रिकेट के नए उभरते सितारे की, फीफा विश्व कप के रोमांच की और शतरंज के दुनिया की, जहां सीखने का सफर कभी समाप्त नहीं होता। श्रोताओं, खेलों की दुनिया हमें यह भरोसा देती है कि आज का प्रयास कल की उपलब्धि बन सकता है। हर नया मैच, हर नई प्रतियोगिता, हर नई सुबह अपने साथ एक नई संभावना लेकर आती है। लक्ष्य बड़ा हो, राह कठिन हो, लेकिन कदम रुकने नहीं चाहिए। ऐसे ही विचार वाला एक गीत सुना जाए।

अभी आपने सुना कार्यक्रम खेल पत्रिका, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं प्रभुलाल मालवी के गाए लोक गीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं प्रभुलाल मालवीय और साथियों के गाए लोक गीत। आइए सुनते हैं इन्हीं की आवाज में ये अगला गीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने सुना प्रभुलाल मालवीय और साथियों के गाए लोक गीत। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आबिदा परवीन के गाए गीत।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने सुना आबिदा परवीन के गाए गीत। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं विदुषी जरीन दारूवाला का सरोद पर बजाया राग भटियार।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने सुना विदुषी जरीन दारूवाला का सरोद पर बजाया राग भटियार। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में कार्यक्रम जिले की चिट्ठी हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: बैठे कुछ ही देर में।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है श्योपुर जिले की चिट्ठी, आलेख अश्विनी बालोठिया, वाचन स्वर दीपा सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल कुनू नेशनल उद्यान के चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का अवलोकन किया। इस अवसर पर लगाई गई चीता प्रदर्शनी के दौरान राष्ट्रपति ने अवगत कराया कि 49 चीते कुनू में मौजूद हैं। 3 चीते गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर भेजे गए हैं। उन्हें बोत्सवाना से लाए गए चीतों की गतिविधियों की भी जानकारी दी गई। गौरतलब है कि राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा अपनी बोत्सवाना यात्रा के दौरान 8 चीते रिसीव किए गए थे, जिन्हें कुनू लाया गया है। चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के अवलोकन के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू को चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग प्रक्रिया के संबंध में भी जानकारी प्रदान की गई। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने 2 दिवसीय कुनू प्रवास के दौरान चीता मित्रों से संवाद कर चीता संरक्षण के प्रयासों की जानकारी ली। राष्ट्रपति ने चीता मित्रों से चर्चा करते हुए उनके द्वारा चीतों की सुरक्षा और आमजन के बीच चीतों के व्यवहार को लेकर किए जा रहे जन जागरूकता के प्रयासों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की। राष्ट्रपति मुर्मू को चीता मित्रों ने बताया कि कुनू नेशनल पार्क से लगे सभी गांवों में चीता मित्र मौजूद हैं, जिनके द्वारा चीतों की सुरक्षा के संबंध में ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। गौरतलब है कि कुनू नेशनल पार्क में चीतों की पुनर्स्थापना योजना को लगभग 3.5 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। नेशनल पार्क में नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से चीतों को लाया गया है। जिले में इस साल 1 जून से अभी तक कुल 8 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। गत वर्ष इस अवधि तक 336.2 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई थी। जिले की औसत वर्षा 822 मिलीमीटर है। जिला प्रशासन द्वारा बारिश को ध्यान में रखते हुए जिले भर के पिकनिक स्थलों पर लोगों को पानी से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सुरक्षा के भी उचित प्रबंध किए गए हैं। इसके तहत एसडीआरएफ के जवानों को सभी पिकनिक स्थलों पर तैनात किया गया है। जलगंगा संवर्धन अभियान इस साल सभी शासकीय भवनों में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का कार्य किया जा रहा है।

12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम नगर पालिका के शिवपुरी रोड स्थित ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री तथा प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला उपस्थित थे। जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में पश्चिम बंगाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा सागर जिले के देवरी में आयोजित राज्य स्तरीय लाडली बहना योजना कार्यक्रम के माध्यम से 37वीं किस्त के रूप में प्रदेश की 1.25 करोड़ लाडली बहनों को 1835 करोड़ राशि का अंतरण किया गया। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति की सदस्य डॉ. शोभा पैठणकर ने कहा है कि अनेकता में एकता भारत की पहचान है। किसी भी बड़े नीतिगत परिवर्तन के लिए जन समर्थन अनिवार्य है। समिति प्रदेश के सभी जिलों में भ्रमण कर नागरिकों से संवाद कर रही है। प्राप्त सुझावों के आधार पर ही अंतिम प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। नागरिकों को अपने महत्वपूर्ण सुझाव आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज कराए जा सकते हैं। कानूनों में सुधार पर विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप जैसे विषयों पर अपने सुझाव दिए जा सकते हैं। श्योपुर जिले के विजयपुर में पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन श्योपुर द्वारा की गई पहल पर मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की टीम श्योपुर जिले के दो दिवसीय भ्रमण पर पहुंची, जहां विभिन्न पर्यटन स्थलों का अवलोकन कर पर्यटन गतिविधियों की संभावनाएं तलाशी। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी, श्योपुर जिले की चिट्ठी अभी आपने सुनी। आलेख था अश्विनी बालोठिया का और वाचन स्वर था दीपा सिंह का। ये प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया गया।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम MH हॉटलाइन।
2: हेलो MH हॉटलाइन।

0: कार्यक्रम सुनने वालों को अमृता का नमस्कार। आपके कॉल का इंतजार है। फोन नंबर याद है ना आपको? नंबर है 2710223 और 2710224, इंदौर का एसटीडी कोड 0731। तो आइए अब हम देखते हैं हमारे पहले कॉलर, पहले श्रोता कौन है। हेलो हेलो,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: विजय भाटिया बोलता हूँ, इंदौर से।
0: विजय भाटिया जी,
1: हाँ
0: कहिए, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे विजय जी आप?
1: हम आपके कौन,
0: हम आपके हैं कौन का कौन सा गीत?
1: माही रे माही बोल रहा है कागा।
0: अच्छा, कहिए क्या करते हैं विजय जी आप?
1: मैं रिटायर्ड हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ।
0: हाँ, और रेडियो से खास लगाव है आपको?
1: जी हाँ।
0: ये गाना बहुत पसंद है?
1: हाँ।
0: कुछ खास वजह?
1: नहीं, ऐसे ही।
0: अच्छा, बहुत खूब। और बताइए, आप अपने काम के बारे में बताइए, कहाँ से रिटायर्ड हैं आप?
1: एमवाई से रिटायर्ड हुआ था मैं, क्लास 4 में था।
0: अच्छा, वाह, तो सेवा वाला की भावना वाला आपका जॉब रहा।
1: जी हाँ।
0: बहुत अच्छे। तो आप जब काम पे जाते थे तो भी रेडियो से जुड़े थे आप?
1: हाँ जी हाँ।
0: अच्छा, और MH हॉटलाइन के अलावा और क्या सुनते हैं?
1: सब प्रोग्राम सुनते हैं।
0: अच्छा, इंदौर के?
1: जी हाँ।
0: अच्छा, चलिए ठीक है
1: जी।
0: आपका गाना बिल्कुल रेडी है, आप सुनिए अपनी पसंद का ये गीत
1: जी।

0: हमारे अगले कॉलर का कॉल लग चुका है, आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो
1: हेलो
0: हाँ Hello? कौन बोल रहे हैं?
1: मैं कारूंडा छोटी साड़ी राजस्थान से बोल रहा हूँ मैं।
0: अच्छा राजस्थान से बोल रहे हैं, कौन आप अपना नाम बताएं?
1: पास में है हमारा गांव, 15 किलोमीटर दूर नीमच से अटैच है।
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ
0: मतलब मध्य प्रदेश के भी करीब हैं और राजस्थान में हैं।
1: हाँ हाँ सीमा ही तो हमारे 5-6 किलोमीटर दूर ही है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल। नाम अपना एक बार फिर से बताएं।
1: रतनलाल सुथार।
0: रतनलाल जी कहिए कैसे हैं रतनलाल जी आप?
1: बढ़िया है, आप कैसे हो?
0: एकदम बढ़िया। और आप कॉल करते रहते हैं कार्यक्रम में यहाँ?
1: हाँ कॉल करता हूँ ना।
0: अच्छा
1: मैं तो जैसे प्रोग्राम शुरू हो गया तो मोबाइल लेके बैठता हूँ तो कभी कभार लगता है मेरा।
0: अच्छा
1: और मैं पुराना सुनता हूँ बहुत, जब उस जमाने में रेडियो के लाइसेंस बनते थे।
0: हाँ हाँ चलिए आप गीत कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: गीत है फिल्म आई मिलन की बेला का।
0: आई मिलन की बेला का कौन सा गीत?
1: ये शुरू इसी से होगा।
0: अच्छा टाइटल सॉन्ग सुनना चाहते हैं आप?
1: जी जी
0: ठीक है। और बताइए घर में क्या है और आपके शौक क्या हैं जब तक हम आपका गीत लगाएं?
1: सबसे ज्यादा शौक तो मेरा रेडियो का ही, बचपना से।
0: क्या बात।

0: बहुत खूब। मतलब रेडियो आपका साथी रहा है बचपन से?
1: बिल्कुल बिल्कुल, अभी मेरी 76 की उम्र हो गई है सुनते सुनते।
0: अच्छा, क्या बात है। और आकाशवाणी ने भी अपने 90 साल पूरे किए हैं।
1: तो आकाशवाणी ने 90 साल पूरे किए, इसके लिए भी आपको, अनाउंसरों को और सभी समस्त स्टाफ को, भारत के समस्त आकाशवाणी स्टाफ को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं जो हमारे तक हमारी आवाज पहुंचाते हैं वापस।
0: क्या बात है, और हम सब की तरफ से आप सभी श्रोताओं को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए अब आपका गीत।
1: हाँ
0: जरूर जरूर।
1: हमारे बच्चे हैं भारती सुतार नया गांव के सिरपुरा, हमारा भांजा है हिमांशु, उसके पापा है पंकज जी सुतार, मनोज जी सुतार, और नारगढ़ में है हमारे मंदसौर जिले में हमारी एक बच्ची आशा सुतार और अमन सुतार।
0: अच्छा,
1: उसके कार का ऑटो गैरेज है।
0: अच्छा अच्छा ओके, तो चलिए पूरे सुतार परिवार को हम आपकी पसंद का ये गीत सुनाते हैं, आप सब मिलकर सुनिए।
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद।

0: हेलो,
1: गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम।
0: वेरी गुड मॉर्निंग। कौन बोल रही हैं आप?
1: मैं रानू गुप्ता बात कर रही हूँ देवास से।
0: रानू जी, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, और आपके क्या हाल चाल?
0: एकदम बढ़िया। और बताइए, देवास में मौसम कैसा है?
1: देवास में ठीक है, मतलब गर्मी से तो राहत मिल गई है, और कल हल्की सी बारिश हुई थी। और आजकल तो ऐसा है कि अगर इस एरिया में बारिश हो रही तो सामने एरिया मतलब धूप निकली, आजकल ऐसा भी हो गया।
0: बिल्कुल बिल्कुल। मैं कई बार ऐसा होता है, स्टूडियो आने में उधर से भीग के निकले और इधर तो बिल्कुल ही धूप है।
1: हाँ,
0: तो
1: ऐसा हो नहीं सका आजकल तो।
0: बिल्कुल। तो कहिए, कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप?
1: आज मुझे एक पुराना सॉन्ग सुनना है। मूवी का नाम है सत्ते पे सत्ता, और क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है तो वही सॉन्ग सुनूंगी, मौसम
0: मस्ताना।
1: डेडिकेशन आपको रहेगा और सभी को रहेगा।
0: ओहो, क्या बात है, तो आज तो हमारा दिन बन गया सचमुच। यहाँ मस्ताना मौसम हो रहा है अभी तो।
1: आप पता है बात इतनी अच्छी कर रही हो तो मतलब अपने आप ही दिल बोल गया कि आपको डेडिकेट कर देती हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और बताइए, करती हैं आप कुछ? करती हैं
1: मैं ना, मैम शादी से पहले तो जॉब करती थी, और फिलहाल मेरे यहाँ प्लाय फर्नीचर हार्डवेयर प्लस किराने की शॉप है।
0: अच्छा।
1: तो हस्बैंड के साथ मैनेजमेंट वगैरह जो भी है सब दोनों मतलब मिलजुल कर एडजस्ट करते हैं।
0: बहुत खूब, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और दोनों जिस चीज में हाथ लगे वो गृहस्थी भी बहुत खुशनुमा और वो काम भी बहुत अच्छा लगता है करने
1: क्योंकि
0: में।
1: मेरी पोस्टिंग थी ना वो भोपाल में थी, और मेरी ससुराल जो देवास में, तो फिर पॉसिबल नहीं हो रहा था, तो फिर उन्होंने मना कर दिया कि फिर एक कर सकते हैं काम हम, मतलब ऐसा।
0: चलिए रानू जी, आपका बेहद खूबसूरत गीत मस्ताना, मौसम मस्ताना मिल चुका है, आइए हम सुनते
1: अच्छा
0: हैं।
1: लगा मुझे आपसे बात करके।
0: मुझे भी बहुत अच्छा लगा, फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं आपका गाना।
1: धन्यवाद।

0: तो रानू जी की पसंद पे हमने सुना ये गीत। आइए अब देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो,
1: हेलो
0: कौन बोल रहे हैं?
1: जी, अमिता जी को नमस्कार। मैं अरविंद अग्रवाल, टेकनगर जिला महोबा से।
0: अरविंद जी, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कहिए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे, तब तक आप बताइए।
1: जी धन्यवाद स्वागत के लिए। फिल्म का नाम रहेगा हिना,
0: हिना। हिना का कौन सा गीत?
1: देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए।
0: अच्छा, बढ़िया। और बताइए क्या करते हैं आप?
1: जी मैं किराने की दुकान है मेरी, वहीं बैठ के आपको सुनता रहता हूँ।
0: बहुत खूब, तो सारे कार्यक्रम सुनते होंगे।
1: नहीं केवल फोन है, वो खास तौर पे लाइव रिकॉर्डिंग वाली भी नहीं। जी
0: अच्छा, बहुत खूब। और आपके फेवरेट कौन है, गायक गायिका में फेवरेट कौन से हैं आपके?
1: जी मेरे फेवरेट हैं नितिन मुकेश और लता मंगेशकर।
0: क्या बात है, ये नितिन मुकेश बिल्कुल नए, इधर नए में कह लेंगे, और लता जी बिल्कुल, और पुराने जमाने में जो गायक लोग थे उनमें कौन पसंद है?
1: जी, नितिन मुकेश काफी पुराने हैं, 80 के दशक से
0: हाँ,
1: गा रहे
0: अस्सी
1: हैं। हाँ,
0: अस्सी तक तो गाए हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही।
1: जो जी मुकेश पसंद है उनके पिताजी,
0: मुकेश, हाँ बिल्कुल, बेहद,
1: और किशोर कुमार हैं, ऑलराउंडर कलाकार अमिताभ बच्चन की तरह, बगैर गुरु के ज्ञान है उनके पास, उनका कोई गुरु नहीं है। और
0: हाँ, किशोर जी का ना,
1: कॉपी क्या
0: हाँ
1: जी, और वो अदाकारी भी करते, गाते भी हैं, लिखते भी हैं, संगीत
0: बिल्कुल,
1: भी देते, वो तो बहुत ब्रिलियंट
0: हाँ
1: कलाकार है।
0: हाँ ईश्वर ने ही उन्हें बिल्कुल कलाकार,
1: जी
0: कला से ओतप्रोत करके ही भेजा है। आपका
1: जी
0: गाना जो है वो बिल्कुल तैयार है, आप सुनने को तैयार हैं।
1: वैसे भी अमिताभ बच्चन है, चाहे कुछ भी कपड़े पहना दो वो जचते हैं,
0: हाँ
1: हर रोल में फिट बैठते हैं।
0: हाँ बिल्कुल।
1: जी
0: लीजिए, तो सुने आपका गीत। चलिए, फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं
1: आपको
0: आपके।
1: धन्यवाद फोन लेने के लिए।
0: हाँ, धन्यवाद। ओके।

0: हेलो हेलो,
1: दीदी नमस्कार।
0: नमस्कार। कौन बोल रहे हैं?
1: मैं पंचीराम शर्मा बोल रहा हूँ, जम्मू कश्मीर, जिला डोडा, तहसील ठाठरी, गांव कंठी से। एक बार फिर से मेरा आपको और सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार, और आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं इतना अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। कहिए, गाना कौन सा सुनना चाहेंगे आप?
1: जी आज पहली बार आपके कार्यक्रम में भाग ले

0: रहा हूँ और मैं माता रानी के चरणों की कृपा से ही फोन लगता है, तो मैं माता रानी की भेंट सुनूंगा सुहाग फिल्म से।
1: अच्छा, सुहाग फिल्म का सुनना चाहते हैं?
0: जी जी जी जी।
1: गाने के बोल ओ शेर वाली।
0: हाँ, वो शेर वाली, सबसे बड़ा है तेरा नाम।
1: क्या बात है, तो आप शेर वाली के भक्त हैं।
0: मेरे परिवार जन भी सुन रहे हैं प्रोग्राम, मेरे घर में रिंकू देवी, पुष्कर नाथ जी।
1: हाँ हाँ, तो आप
0: सभी हम मिलके परिवारिक प्रोग्राम सुन रहे हैं अभी।
1: तो आपके पूरे परिवार का स्वागत है आकाशवाणी इंदौर से, हम सब आपको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। और वहाँ मौसम कैसा है?
0: दीदी अभी मौसम थोड़ी धूप खिली हुई है और ठंडी हवाएं चल रही है, मैं पेड़ के नीचे बैठ के आपका कार्यक्रम जो है तो मैं कॉल भी लगा रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ।
1: अच्छा, तो वहाँ तो वादियाँ बड़ी खूबसूरत हुआ करती हैं वहाँ तो,
0: जी जी
1: है ना? तो
0: हाँ
1: चलिए।
0: जी बिल्कुल, और हाँ, राजमा की जो फसल है अभी लगाई जा रही है और लोग खेतों में काम कर रहे हैं।
1: अच्छा, राजमा की फसल लग रही है?
0: जी जी,
1: अच्छा, बहुत खूब।
0: मतलब कि गेहूं की कटाई करके उनको रख दिया है और राजमा लगा रहे हैं उन खेतों में।
1: अच्छा, बढ़िया,
0: जी जी
1: बहुत बहुत खूब। तो लीजिए, आपका गीत मिल गया है और बेहद अच्छा गीत। आपके साथ हम सब भी इस गीत का आनंद लेते हैं और आपको ढेर
0: बहुत
1: सारी
0: बहुत
1: शुभकामनाएं।
0: धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी,
1: जय माता दी।

0: परम आदरणीय दीदी साधन नमस्कार।
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप?
0: दीदी मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति वार्तालाप कर रहा हूँ।
1: शारदा प्रसाद प्रजापति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी इंदौर में। और कहाँ से बोल रहे हैं, एक बार फिर से बताएं।
0: मैं मथुरा वृंदावन से।
1: मथुरा वृंदावन से, वाह
0: जी जी। भगवान कृष्ण की अवतार कृष्ण है, लीला स्त्री है, क्रीड़ा स्थली है।
1: हाँ।
0: और इनके अनेकों देवालय बने हुए हैं उनके प्रतीक चिन्ह के रूप में।
1: हाँ।
0: और लाखों लाख पर्यटक श्रद्धालु भक्त आते हैं।
1: हाँ।
0: दर्शन करने हैं, अभिभूत होते हैं, बहुत ही आनंद के अनुभूत करते हैं।
1: बहुत खूब, आप अपना गाना बताएंगे।
0: दीदी आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है प्रेम गीत और राज बब्बर पर फिल्माया गया गीत है।
1: हेलो, हेलो, हेलो, शारदा प्रसाद प्रजापति जी, आपका गीत हमें मिल चुका है। हेलो, तो हम आपकी फरमाइश जो है वो पूरी करते हैं, आइए सुनते हैं।

0: तो मथुरा से हमारे श्रोता शारदा प्रसाद प्रजापति जी ने इस गीत की फरमाइश हमें भेजी थी, हमसे की। और अच्छी बात यह है कि देखिए आज राज बब्बर साहब का जन्मदिन है और उन्होंने उनका गीत सुनवाया हमें, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं यहाँ राजा राम नगर देवास से राजेश अग्रवाल बोलता हूँ।
0: हाँ राजेश जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है दीदी, कार्यक्रम सुन रहे हैं आपका और फोन लगाने की कोशिश कर रहे थे। लग गया।
0: बहुत खूब। तो पहले तो स्वागत है और फिर इस बात की बधाई है कि आपका कॉल लग गया। और गाना बताएं, कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: गीत जो महान संगीतकार है उनका जीवन का,
0: मदन मोहन साहब का 25। हाँ
1: महान सुनाए, बढ़िया बढ़िया बनाए हैं।
0: हाँ
1: और उनके
0: थोड़ा सा रेडियो सेट से दूर हो जाए, आपकी आवाज़।

0: गूंज रही है।
1: बंद है, बंद है, रेडियो बंद ही कर दिया है।
0: हाँ, अब बोलिए।
1: हाँ, चिराग फिल्म का गीत है या आई बरसा बहार?
0: हाँ,
1: फुहार ऐसा गीत है।
0: हाँ, बिल्कुल मिल गया है, बिल्कुल ये गाना बजने को तैयार है। और बताइए, आप अपने बारे में कुछ बताइए।
1: मैं तो ये प्रिंटिंग प्रेस का कार्य और अभी रेडियो पे कार्यक्रम सुन रहा हूँ, मतलब रेडियो तो है।
0: हाँ,
1: और दो है, जैसे कंगार में रेडियो
0: बहुत खूब,
1: और उसको रिपेयरिंग करा के सुनता हूँ।
0: बहुत खूब। तो देखिए, मदन मोहन साहब का जन्मदिन आ रहा है और आपने फरमाइश की है उनके, बेहद सुंदर सक
1: भी है तो बारिश के हिसाब से गीत भी हो जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपका ये गीत सुनकर शायद बारिश जो है जल्दी आ जाए हमारे इंदौर में, देवास में। तो
1: कल गिर गया जोरदार।
0: बिल्कुल, तो आइए सुनते हैं ये गीत। धन्यवाद।

0: वाह, बेहद खूबसूरत सा गीत। अगला कॉल, हेलो।
1: हेलो नमस्ते अमृता जी,
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं अनिल भंडारे सुदामा नगर से बोल रहा हूँ।
0: सुदामा नगर इंदौर से हमारे श्रोता हैं अनिल भंडारे जी, कहिए कैसे हैं अनिल जी
1: आपके
0: आप?
1: बस आपका प्रोग्राम सुनते हैं, आनंद लेते हैं क्या?
0: बहुत खूब।
1: आप
0: गीत कौन सा सुनना चाहेंगे पहले ये बता दे।
1: सारे आठ से दो गाना कार्यक्रम पक्ष किया है,
0: हाँ हाँ
1: बहुत अच्छा लगा।
0: ओहो,
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद
1: आपको।
0: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और आज फिल्म हम पुरानी फिल्म बारादरी का गीत सजाएंगे।
0: बारादरी,
1: हाँ
0: हाँ, उसका कौन
1: बोला
0: सा?
1: नहीं देना जी, बोला नहीं देना, जमाना खराब है, दगा नहीं देना,
0: बिल्कुल।
1: दगा नहीं। ठीक है ना, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी ने गाया है, संगीतकार नौशाद, गीतकार कुमार जारा बाराबंकी,
0: बिल्कुल
1: और ये गानों को फिल्म में अजीत और गीता बाली पे फिल्माए गए हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: उस जमाने के बहुत मशहूर कलाकार से ही है,
0: हाँ, और
1: और ये
0: बेहद
1: पिक्चर
0: अच्छा पिक्चराइजेशन है इसमें दोनों का
1: बहुत
0: जो।
1: जोरदार,
0: हाँ
1: बहुत
0: बिल्कुल,
1: जोरदार। और ये फिल्म है ना एक थिएटर में
0: हाँ
1: 20 हफ्ते चली थी,
0: हाँ और
1: लेकिन
0: रंगोली
1: उन्नीस
0: में
1: सौ
0: भी ये गाना रंगोली में भी बहुत आता था।
1: हाँ 1960 में ये फिल्म आई थी, बहुत चली थी इंदौर में।
0: बहुत खूब।
1: और आज किसके गाने आज भी लोग को, तीन चार गाने और इसमें
0: हाँ,
1: आपको याद होगा, तस्वीर बनाता हूँ तस्वीर
0: तस्वीर
1: नहीं
0: नहीं
1: बनती,
0: बनती।
1: गलत
0: हाँ
1: फिल्म का गाना है,
0: हाँ
1: बहुत फेमस
0: बिल्कुल।
1: गाने, सभी गाने फेमस है इसमें।
0: तो चलिए, आपकी पसंद पे हम सुनते हैं ये गीत।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद
0: बहुत बहुत
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: ठीक है, ओके।

0: हमारे श्रोता अनिल भंडारे जी ने इस गीत की फरमाइश भेजी हमसे की और हमने ये गीत सुना। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो जिनका कॉल लगा उन्हें धन्यवाद, और जिनका कॉल नहीं लग पाया और वो प्रयत्नशील रहे उन्हें भी हमारा ढेर सारा धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में आपका कॉल शामिल हो यही कामना है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इजाज़त दीजिए अमृता को। नमस्कार।
1: हेलो MH हॉटलाइन।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम MH हॉटलाइन, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। संगीत रवि के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी का लिखा यह गीत है, मोहम्मद रफी ने गाया है। फिल्म का नाम आज और कल।

फूल बने अंगारे फिल्म का ये गीत था, मुकेश ने गाया था। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। कार्यक्रम में अगला गीत बम्बई का बाबू फिल्म से आशा भोसले ने गाया है। गीत लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने, तर्ज एस डी बर्मन की।

आरजू फिल्म का ये गीत था, मोहम्मद रफ़ी ने गाया था, हसद जयपुरी ने गीत लिखा था, शंकर जयकिशन की धुन थी। और अब असली नकली फिल्म का ये गीत है, लता मंगेशकर ने इसे गाया है, शंकर जयकिशन ने धुन बनाई है, हसद जयपुरी के बोल।

हसरत जयपुरी का लिखा गीत सुनवाते हैं आपको, बेटी बेटे फिल्म का गीत। मोहम्मद लफ़ी और सुमन कल्याणपुर ने इसे गाया है, धुन शंकर जयकिशन की।

टेरेक्स इन बॉम्बे फिल्म का यह गीत था। आनंद बख्शी ने गीत लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन थी। नीला आकाश फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं, मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया हुआ। मदन मोहन ने धुन बनाई है और बोल लिखे हैं राजा मेहंदी अली खान ने।

कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर का गाया फिल्म गीत का ये गीत था और हसन जयपुरी ने बोल लिखे थे। परिवार फिल्म का ये गीत है, महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर का गाया हुआ, गुलशन बावरा ने बोल लिखे हैं और तर्ज कल्याण जी आनंद जी की।

0: सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में राजेंद्र किशन का लिखा यह गीत था। लता मंगेशकर और चितलकर की आवाज़ थी। फिल्म थी आज़ाद। इसके साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल के आचारपुरा में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान मध्य प्रदेश और वन्य जनजाति कार्य विभाग द्वारा आयोजित आदिरंग शिल्पकार महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे। उज्जैन में अगले वर्ष में आयोजित होने वाले सिंहस्थ महापर्व को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों ने कल भोपाल में राज्य स्तरीय बैठक में व्यक्तियों, संस्थाओं, शासकीय विभागों, राजनीतिक दल, धर्म गुरुओं सहित विभिन्न आयोगों के प्रतिनिधियों से राय जानी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर प्रदेश भाजपा कार्यालय में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। हज यात्रा पर जाने के इच्छुक लोगों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई है और प्रदेश में मानसून के 25 जून के बाद प्रवेश के आसार हैं। मौसम विभाग ने आज जबलपुर, मंडला, दमोह और उमरिया में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, आपके पत्रों द्वारा भेजी ख्वाहिश पूरी करेंगे हम इस कार्यक्रम में। पहला पत्र शामिल कर रहे हैं दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार की। डोंगर गांव, जिला रांदन गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये की। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन की। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर, राही श्रीमती सरिता गवाड़कर, सिद्धांत गवाड़कर, प्रिंस एकांश गवाड़कर की। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गवाड़कर, श्रीमती वैशाली गवाड़कर, श्वेता सुमित गवाड़कर, कुमारी ध्वनी गवाड़कर परी की। और ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, राही और महराज जहां हमें अपनी ख्वाहिश भेजते हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। वारिस फिल्म का ये गीत सुनना पसंद किया है। लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह ने इसे गाया है। वर्मा मलिक ने गीत लिखा है। उत्तम जगदीश ने धुन बनाई।

अगला अनुरोध शामिल कर रहे हैं मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा की। सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा की। महसवाड़ी तहसील मनकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीकि धाड़े, निनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े और अजय खिरोड़कर की। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि और श्रीमती शीतल राजेश की। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शुएब खान, पोतरा मुश्तबा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर की। भटिंडा पंजाब रेलवे कॉलोनी से जगपाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और डागला परिवार के सदस्य। चांद का टुकड़ा फिल्म का गीत लता मंगेशकर और विपिन सचदेव ने इसे गाया है, सावन कुमार का लिखा, महेश किशोर की धुन है।

अगली पसंद शामिल कर रहे हैं बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद माखीजा काफिर, शंकर लाल माखीजा, राहुल कुमार माखीजा, सविता माखीजा, स्वाति माखीजा और माखीजा परिवार के सदस्य। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल और आशा सपकाल की, दुगई सेलू से चंदू कुलकर्णी हेमलता और परमणी से सी आर कुलकर्णी की, शिवाजी नगर बड़ाली देश से देशमुख परिवार के सदस्य और राजेश खोबरखेड़े, शिव सागर खोबरखेड़े, इंदिराबाई और सुनैना खोबरखेड़े, खाड़वी जलगांव जामोद से राम धाड़े, दिवाली धाड़े और स्वराज धाड़े की, थिलोरी दरियापुर से सुनैना पवन और तनुज पवन भोड़े की, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जैतिक बीरक और मीका बीरक की। यस बस फिल्म का ये गीत है। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत जतिन ललित का है और गाया है अभिजीत ने।

कार्यक्रम में अगली फरमाइश शामिल कर रहे हैं नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा मीना राणा मोनिका नुपुर ऋषिका रॉबिन की, सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता पिंकेश साक्षी मनन और तानिया की, पटेल नगर मलोट पंजाब

से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप और बेबी आरजू जाजोरिया की, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित की, और साथ में है विनोद किशोरी। सुनना पसंद किया है विजयी पथ का गीत, कुमार सानू और साधना सरगम का गाया, फैज अनवर ने बोल लिखे हैं और अनु मलिक की धुन है। ये पत्र और शामिल कर रहे हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू की।

0: अनु मलिक के संगीत निर्देशन में फैज़ अनवर का लिखा यह गीत था। कुमार सानू और साधना सरगम ने गाया था। फिल्म थी विजयी पथ। इसके साथ ही आपकी फरमाइश समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है एक अंतराल का।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
3: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
2: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
3: अरे काहे का मजा।
2: क्यों, क्या हुआ?
3: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
2: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
3: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
2: ये हुई ना बात।
4: दस लाख की लॉटरी
5: मुझे, वाओ।
6: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
7: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
3: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
8: आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
9: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
10: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
11: क्या?
10: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
11: वो कैसे?
10: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
11: और सुनेंगे कैसे?
10: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो में जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

मध्य प्रदेश है। भारतीय सेना कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत लीजिए सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की पांचवी कड़ी।

0: धारावाहिक भुवन मोहिनी की अब तक की कड़ियों में आपने ये जाना कि धारा नगरी का राजकुमार विजय श्रवा नर्तकी भुवन मोहिनी से प्यार करने लगा था, जिससे विजय श्रवा के पिता राजा द्युम्न सेन नाराज हो गए और भुवन मोहिनी को राज्य से निकाल दिया। निर्वासित नर्तकी भुवन मोहिनी पहुंच गई इंद्रप्रस्थ और वहां के नरेश आदित्य सेन से पा लिया आश्रय। परंतु कुछ ही महीनों बाद राजमाता के तानों से नाराज होकर श्रेष्ठी का वेश धारण कर राजकुमार भी इंद्रप्रस्थ आ पहुंचा। उधर इंद्रप्रस्थ के राजा आदित्य सेन अपनी पुत्री के विवाह के लिए चिंतित ही थे। जब उनको पता चला कि एक सुदर्शन व्यक्ति जो अपने आप को श्रेष्ठी बताता है आश्रम में ठहरा हुआ है, तो उन्हें संदेह हुआ कि कहीं वो धारा नगरी का राजकुमार तो नहीं। असलियत का पता लगाने के लिए आदित्य सेन ने भुवन मोहिनी को आश्रम भेजा। भुवन मोहिनी राजकुमार को वहां देखकर प्रसन्न तो हुई, परंतु असमंजस में पड़ गई कि राजकुमार किससे मिलने आए हैं, उससे या राजकुमारी चंद्रहासिनी से। भुवन मोहिनी ने जब राजा आदित्य सेन को विजय श्रवा के बारे में बताया तो वे राजकुमार को राजकीय अतिथि बनाने के लिए बुलाने आए और उसके सम्मान में एक समारोह रखा। सम्मान समारोह से लौटते समय राजकुमार और राजकुमारी चंद्रहासिनी की मुलाकात हुई। अब आगे सुनते हैं धारावाहिक भुवन मोहिनी की पांचवी कड़ी।
1: आरण्यक महोदय, अब हमें लौटना होगा।
2: क्यों?
1: देखो, राजकुमार जी और हमारी सखी दोनों एक दूसरे का हाथ थामे रथों की ओर जा रहे हैं।

0: हाँ, परंतु मणिहार का क्या होगा?
1: उसने अपना मूल्य तो चुका दिया
0: है?
1: ना भी मिले तो क्या है।
0: अच्छा ऐसा है, तो फिर चलो। अरे भाई सारथी मित्रों, अपने अपने रथों को आगे बढ़ाओ।
1: मुझे पुरस्कार चाहिए, मुझे पुरस्कार चाहिए। मैंने राजकुमारी का हृदय हार खोज लिया
0: है? कहाँ था?
1: यहाँ गिरा था।
2: राजकुमारी जी को बधाई।
3: किसके लिए?
2: मणिहार के लिए।
3: इतनी तुच्छ वस्तु के लिए क्या बधाई? मुझे तो आज संसार की संपूर्ण निधि प्राप्त हो गई। लग रहा है मानो मैं वायु में उड़ रही हूं।
2: विदा, अब अपने रथ पर सवार होइए।
0: चलो भाई, रथों को आगे बढ़ाओ। बस यहीं से हमारे रथों के मार्ग अलग अलग हो जाएंगे।
1: आरण्यक महोदय, अपने मित्र से कहिएगा कि शीघ्र ही पुनः दर्शन दें।
0: अवश्य अवश्य।
4: राजकुमारी जी, क्या मैं आपके कक्ष के भीतर आ सकती हूँ?
3: अरे आओ आओ भुवन मोहिनी, मैं तो कब से तुमसे मिलना चाह रही थी।
4: तो फिर बुलवाया क्यों नहीं? आपकी दासी हूँ। अरे ये मणिमाल आपके गले में क्यों?
3: अच्छा नहीं लग रहा है।

0: क्या तुमसे भावी सम्राट का अतीत में कोई एकांत मिलन हुआ था?
1: मुझसे? मुझसे क्यों? कहां भावी सम्राट और कहां भ्रष्ट दलित एक क्षुद्र नर्तकी।
0: अरे भाई, राजकुमार तुम्हारे अनन्य उपासक हैं, इसलिए पूछ रही हूँ।
1: कौन कहता है?
0: मैं कहती हूँ।
1: अच्छा, इसका प्रमाण?
0: तुम्हारा चित्र उनके एकांत पर्ण कुटी में लगा हुआ, जिसे राजकुमार ने अपनी तूलिका से स्वयं चित्रित किया है।
1: ये झूठी बात है।
0: मैंने स्वयं देखा है तुम्हारे सौंदर्य सौष्ठव का वह महान चित्र, राजकुमार की महान कृति, अपनी आंखों से देखा।
1: तो क्या राजकुमारी से भावी सम्राट का एकांत मिलन संभव हो सका?
0: नहीं, मैं उनके शून्य पर्णशाला में उस समय पहुंची जब राजकुमार कहीं पर्यटन में निकल गए थे।
1: विश्वास नहीं हो रहा। क्या सचमुच राजकुमार के एकांतवास स्थल में मेरा चित्र है?
0: हाँ हाँ सखे, बिल्कुल सच है। मेरी नेत्र तुम्हारे चित्र को प्रथम दृष्टि में ही पहचान गए। किंतु मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इस सूचना में ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें इतना उद्विग्न कर दिया?
1: बात तो सचमुच कुछ भी नहीं है राजकुमारी जी, और ना ही किसी प्रकार की उद्विग्नता ही है। हाँ, कौतूहल इस बात का अवश्य है कि इतने महान व्यक्ति को मुझ तुच्छ नारी का चित्र रखने की कैसी लालसा उत्पन्न हुई।
0: तुम सदा अपने को तुच्छ क्यों समझती हो भुवन मोहिनी? क्या तुम वास्तव में इतनी भोली हो कि अपने सौंदर्य से स्वयं अपरिचित हो? कम से कम मुझे तो विश्वास नहीं होता। जब स्त्री जाति तुम्हारे अनन्य स्वरूप का दर्शन करके अपने को धन्य मान लेती है, तब विजयश्रवा तुम्हारे स्वरूप पर क्यों न पसीजे? माना कि वे भावी सम्राट हैं, सत्ता अधिकार वैभव और राजलक्ष्मी उनकी चेरी हैं, किंतु अपने पुरुष हृदय को वो कहाँ फेंकते? हाय भुवन मोहिनी, जब स्त्री जाति तुम पर अनुरक्त है, तब तुम्हें निश्चय पूर्वक मान लेना चाहिए कि कोई भी पुरुष तुम्हारे रति से सुंदर स्वरूप पर सहज ही मोहित हो जाएगा। अरे भुवन मोहिनी, ये भी संभव है कि अब तक जितनी नारियां राजकुमार की दृष्टि से गुजरी हो, उनमें सर्वश्रेष्ठ सुंदरी तुम ही रही हो। हो सकता है इसी कारण से राजकुमार ने तुम्हारा चित्र अंकित कर डाला हो। इतनी व्यग्र क्यों हो?
1: जो कुछ भी हो, किंतु एक महान व्यक्ति के पास एक नर्तकी का चित्र कभी भी उचित नहीं कहा जा सकता।
0: ओ रूप की जादूगरनी, तुझे ज्ञात नहीं है कि तेरे मधुर स्पर्श में अमूल्य आसव किसी उत्तेजना और विस्मृति भरी पड़ी है। तेरी रूप माधुरी का सुखद स्पर्श जब मुझे विस्मय विमुक्त और विह्वल कर देता है, तब भला धारा नगरी की राजकुमार को क्यों ना करेगा? क्यों न वो तेरी वासना में सिहर कर तेरा चित्रांकन करें, तेरी मानसिक पूजा करें।
1: बस बस राजकुमारी, बहुत न बनाइए मुझे। इन व्यर्थ की आडंबरपूर्ण प्रशंसाओं से मैं नहीं फंसने वाली। हाँ, ये कहिए कि राजकुमार ने अब अपनी प्रेयसी को खोज निकाला है और प्रथम प्रेमोपहार में ही आपको कृतकृत्य कर दिया है। अब मैं साहस पूर्वक राजकुमार से निवेदन करूंगी कि राजकुमारी चंद्रहासिनी मणिमाल के स्थान पर स्वयं को राजकुमार के हृदय का हार बनाना चाह रही हैं।
0: नहीं सखी, ना जाने कौन हृदय से कह उठता है कि वो मुझे अपना न सकेंगे।
1: ऐसा मत कहिए राजकुमारी, ये तो निश्चित है कि राजकुमार भारत के भावी सम्राट हैं, उनके ऊपर महान दायित्व है। ऐसे में हो सकता है आपके प्रेम सिक्त हृदय की रिक्ति अधूरी रह जाए।

0: हो सकता है कि आपको अपने पवित्र प्रेम का न जाने कितना मूल्य भी चुकाना पड़ जाए, परंतु
1: सखी, मैंने तो उन्हें प्रथम दर्शन में ही अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। इन नेत्रों पर अब कोई मेरा अधिकार नहीं रहा। भारतीय नारी तो उत्सर्गमयी है, उसका प्रेम सर्वस्व समर्पण रहा है। मैं इसी परंपरा का पालन करूंगी। पहले ही जिन्हें मैंने फूल सा कोमल समझा था, वो प्रस्तर की भांति कठोर निकले। अब और कोई चारा ही क्या है? आप चाहे जैसे भी दे, मुझे तो उनके प्रेम की अलग जगानी ही पड़ेगी। वो मुझे भाई थी, उनकी रूप माधुरी में निष्ठुरता की छाया मुझे नहीं दिखी थी और न ही मैंने देखी कोई हृदयहीनता। मुझे तो जैसे उनके नेत्रों ने एक मौन आमंत्रण दिया था, बस मैंने उसे स्वीकार किया। मैं कहाँ जानती थी कि उनकी इस देवोपम सरलता के चारों ओर महान दायित्वों की कठोर श्रृंखलाएं बंधी हुई हैं।
0: विजय श्रवा के संबंध में सब कुछ जानते हुए भी मैंने उनके प्रेम से तुम्हें विजय श्रवा के संबंध में सब कुछ जानते हुए भी मैं उनके प्रेम से तुम्हें परान्मुख ना कर सकी राजकुमारी। मुझे जिन कड़वे परिणामों को प्रेम के नाम पर भोगना पड़ रहा है, संभवतः वो सब अग्नि की लपटों के दृढ़ालिंगन से कहीं अधिक हैं। जीवन में प्रलयंकर हाहाकार है, संताप है, रुदन है।
2: राजकुमारी जी, युवराज विजय श्रवा का भृत्य आरण्यक भुवन मोहिनी को बुलाने आया है। उसे स्वयं राजकुमार ने बुलवाया है।
0: मुझे?
1: जा, तू उस भृत्य से कह दे कि अभी वो राजकुमारी के पास है, अवकाश पाते ही युवराज की सेवा में उपस्थित होगी।
2: जो आज्ञा।
1: सखी, आज मैं तुमसे एक याचना कर रही हूं, क्षमा करो। अपने अंतर से इस भाव को हटा दो कि तुम एक साधारण नर्तकी हो और मैं राजपुत्री हूं। मैं देख रही हूं कि तुम एक असाधारण नारी हो। मैंने तुम्हारी विनम्र शिष्या बनकर तुमसे संगीत का ज्ञान और उसकी सिद्धि प्राप्त की है। मैं धन्य भाव से तुम्हारी कृतज्ञ हूं।
0: इन सब के लिए हमारी तुम्हारे बीच कृतज्ञता प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है राजकुमारी। कृतज्ञता तो मैं प्रकट करती हूं प्रत्येक दिवस, प्रत्येक क्षण। विधि विधान ने मुझे महाराज आदित्य सेन की शरण में ला पटका और उन्होंने साहसपूर्वक अभयदान प्रदान किया। अन्यथा भारत सम्राट द्वारा निर्वासित किए जाने पर मुझे निश्चय हो गया था कि मेरा समग्र जीवन विपत्तियों की गाथा बन जाएगा। मेरी सहायता करने का कोई भी साहस न करेगा। महाराज ने मुझ पर जो दया प्रकट की है, उसकी सराहना मैं किस मुख से करूं?
1: सखी, ये भी तुम्हारी महानता है जो सदैव पिताजी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती हो। अन्यथा राष्ट्र की कुशल और सर्वश्रेष्ठ गायिका होने के नाते तुम जहां भी जाती, वहीं लुब्ध मधुब की भांति मानव सागर को उद्वेलित करती। तुम्हें प्रत्येक स्थान पर आदर और पुरस्कार प्राप्त होता। क्या तुम जानती हो कि युवराज के बुलाने पर भी मैंने तुम्हें क्यों रोक लिया?
0: नहीं।
1: तो सुनो सखी, मैं तुमसे जो कहने जा रही थी वो ये कि हम तुम दोनों एक ही पद की कामनी है। मैं भली भांति समझ गई हूं कि युवराज तुम्हें सर्वांतःकरण से प्यार करते हैं। जो कुछ अपनी ओर से वे तुम्हें प्रदान कर चुके हैं, उसे वो किसी मूल्य पर लौटा न सकेंगे। और

0: वही चाह रही हूं जो तुम्हें युवराज से प्राप्त हो चुका है, वो है प्रेम, जो एक बार में एक ही को दिया जा सकता है। मैं समझती हूं कि युवराज द्वारा वो प्रेम भी तुम्हें प्राप्त हो चुका है। यदि मुझे अपने प्रेम से युवराज पुरस्कृत भी करना चाहे तो वो एक बार समर्पित किया हुआ होगा। भुवन मोहिनी, तुम स्वयं एक नारी हो, तुम्हें ज्ञात है कि नारी हृदय रहस्य और गोपनीयता की परिधि के भीतर रहकर अपने निश्चल प्रेम की ज्योति जलाता है। वो प्रीतम की मधुमेह मोहिनी मूर्ति अपने हृदय मंदिर में आसीन कर बड़ी गोपनीयता के साथ उस प्रेम देवता की आराधना में लीन हो जाता है। वह आवरण में नारी हृदय ज्यों का त्यों कौतूहलहीन रहता है, परंतु अंदर ही अंदर प्रेमानुभूतियों के उत्तप्त आंसुओं से रोता है, सुलगता है। अवश्य अश्रुओं की धारा में नारी हृदय चलते हुए भी शांति का अनुभव करता है। उत्पीड़ित और प्रताड़ित होकर भी वो बाहर से मुस्कुराता है। सखी, तुम्हें भी ये सब ज्ञात है। अस्तु, राजपुत्री होकर भी भिकारिणी की भांति तुमसे तुम्हारे प्रियतम की भीख मांगती हूं। बोलो बोलो, मुझे निराश तो ना करोगी?
1: नहीं राजकुमारी, यदि वे तुम्हें स्नेह और आदर प्रदान कर सकें तो मैं अपने को धन्य समझूंगी और चाहूंगी कि वो तुम्हें अपने नेत्रों की पुतली बनाकर तुम्हारी दृष्टि से देखें, तुम्हारे कानों से सुने, तुम्हारी हृदय से बात करें। तुम्हारे अस्तित्व में उनके प्रेम की लय हो और वो पूरी तरह से तुममय हो जाएं। मैं अपने को भाग्यशालिनी समझूंगी। भारत साम्राज्ञी का गौरवमय पद तुम्हारे प्रतिष्ठित होने पर ही उज्जवल रहेगा, अन्यथा मुझ नर्तकी की छाया परंपरागत महानता की सीमा का अतिक्रमण कर उसे तुच्छ बना देगी।
0: ओह भुवन मोहिनी,
1: जाइए राजकुमारी। राजकुमार विजय श्रवा की गौरवमयी प्रेसी और जीवन संगनी बनिए। मैं आप दोनों के प्रेम संबंधों में कभी भी ईर्ष्या का विष सम्मिलित नहीं करूंगी। मैं भूल जाऊंगी कि इस अभागिनी नर्तकी ने भी कभी भावी सम्राट की प्रेमिका होने का गौरव प्राप्त किया था। मैं अपना अहोभाग्य यही समझूंगी कि विजय श्रवा की जीवन संगनी खोजने के श्रेय का एक अंश मुझे भी प्राप्त हुआ था। राजकुमारी, जिस दिन सम्राट द्युमत सेन ने मुझे धारानगरी से निर्वासित किया था, उसी समय मैंने निश्चित किया था कि मैं राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी राजकन्या का परिणय विजय श्रवा से कराऊंगी और अपनी खोज में लगी हुई ही इंद्रप्रस्थ नगरी में आई थी। इसके पूर्व भी अनेक बार मुझे नरेशों से ज्ञात हुआ था कि महाराज आदित्य सेन की एकमात्र कन्या ही राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है। इसीलिए मेरी रानी, अपने विजय श्रवा के लिए मैंने आपको चुना है। मुझसे भय मत खाइएगा, मैं आपकी अमृत प्रेम प्याली में अपने द्वेष की विषैली घृणा कभी नहीं भरूंगी।
0: इसी विश्वास और इसी पवित्र देन के कारण तुम मुझसे बहुत ऊंची हो। मैं आज तुम्हारे प्रदान किए हुए प्रेम और प्रीतम द्वारा अपने स्नेह का संसार बसाने का कौतूहल में स्वप्न देख रही हूं। देखो देखो, कभी मुझे भी पुरस्कृत करेगा या नहीं मेरे रूप का देवता?
1: तो चलिए,
0: कहाँ?
1: राजकुमार विजय श्रवा से मिलने।
0: लेकिन उन्होंने तुम्हें बुलाया है, मुझे नहीं।
1: तो क्या हुआ, क्या अभी भी आपको मुझ पर शंका है?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा,

0: अच्छा ठीक है, मैं भी चलती हूँ, क्योंकि मैं उनकी दर्शन की बेचैनी को कुछ पलों के लिए शांत करना चाहती हूँ।
1: ये मेरे लिए भी सुखद होगा राजकुमारी।

0: मित्र विजय शर्मा से मिलने भुवन मोहिनी देवी अभी तक नहीं आई। अब मुझे तो भय लग रहा है कि उन्हें बुलाने के लिए युवराज मुझे कहीं फिर से ना भेज दें। अरे ये क्या, लगता है कि भुवन मोहिनी आ गई परंतु राजसी रथ में। आए, प्रतीत हो रहा है कि भुवन मोहिनी के संग राजकुमारी भी पधार गई। अब क्या होगा? आइए आइए, राजकुमारी जी को अरण्यक का अंजुलिबद्ध सादर प्रणाम।
1: शुभ हो अरण्यक, जाओ देव से निवेदन करो कि भुवन मोहिनी के साथ राजकन्या चंद्रहासिनी भी दर्शन के लिए उपस्थित हैं।
0: अवश्य देवी। अरे मित्र मित्र मित्र, अचंभा हो गया।
2: क्या हुआ अरण्यक?
0: भुवन मोहिनी आ गई हैं।
2: इसमें अचंभा क्या, उन्हें तो हमने ही बुलवाया था।
0: उनके साथ राजकुमारी जी भी हैं।
2: क्या?
0: हाँ।
2: चलो उनकी अगवानी के लिए चलता हूँ।
0: यही उचित भी होगा। आइए ये देखिए।
3: शुभ स्वागत है राजकुमारी और भुवन मोहिनी का। देवी कुटिया के अंदर पधारिए। मैं अतिथि सेवा द्वारा अपने को सौभाग्यशाली और कृतार्थ समझूंगा। ओह भुवन मोहिनी, हम लोग दीर्घ वियोग के पश्चात आज मिले हैं। तुम्हारे साथ राजपुत्री चंद्रहासिनी भी हैं। बोलो इस शुभागमन के अवसर पर मुझे किस प्रकार अतिथि पूजा और सत्कार करनी चाहिए?
1: सर्वप्रथम भावी सम्राट को वचनबद्ध होना पड़ेगा कि मैं जिस प्रकार चाहूंगी वो पालन करेंगे।
3: एवमस्तु।
1: तो सुनिए देव, राजकुमारी चंद्रहासिनी आपका आतिथ्य ग्रहण करने से पूर्व ये जानना चाहती हैं कि आपके जीवन में उन्हें कोई स्थान प्राप्त होगा या नहीं।

संग्रहालय से इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे थे धारावाहिक भुवन मोहिनी की 5वीं कड़ी। ये प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया जा रहा है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल अचारपुरा में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान मध्य प्रदेश और वन्य जनजाति कार्य विभाग द्वारा आयोजित आदिरंग शिल्पकार महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे। उज्जैन में अगले वर्ष आयोजित होने वाले सिंहस्थ महापर्व को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों ने कल भोपाल में राज्य स्तरीय बैठक में व्यक्तियों, संस्थाओं, शासकीय विभागों, राजनीतिक दल और धर्मगुरुओं सहित विभिन्न आयोगों के प्रतिनिधियों की राय जानी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। हज यात्रा पर जाने के इच्छुक लोगों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई है। प्रदेश में मानसून के 25 जून के बाद प्रवेश करने के आसार हैं। मौसम विभाग ने आज जबलपुर, मंडला, दमोह और उमरिया में हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया है। और FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। भारतीय टीम ने कल FIH प्रो लीग के रॉटरडैम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया था। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोता बहनों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला सभा। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की।

हौसलों के पंख तैरते हैं खुली उड़ान में, आज की नारी कम नहीं किसी आसमान में। समेटे है खुद में वो हर रंग कायनात का, वजूद उसका गूंज रहा पूरे जहान में। इन खूबसूरत पंक्तियों के साथ आगाज करते हैं आज के महिला सभा कार्यक्रम का। आज आपके साथ हूँ मैं शालिनी सोनी, स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार। सखियो, ये महिला सभा सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक सुकून है, एक रिश्ता है हमारा और आपका। एहसास है हमारी ताकत का, हमारी ममता का, हमारी समझ सूझबूझ का और हमारे हौसले का, जिससे हम हर रोज अपने घर और समाज को संवारती हैं। सखियो, कहा गया है ना

जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ खुशियाँ खुद ब खुद चली आती हैं और हम सभी के खिलखिलाते मुस्कुराते चेहरे इस बात का गवाह हैं कि जब हम सब एक साथ मिलती हैं तो सकारात्मकता की एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। आज की इस महिला सभा में हम खुलकर बातें करेंगे, मुस्कुराएंगे, कुछ नया सीखेंगे और जिंदगी के सफर को और हसीन बनाने के लिए संकल्प लेंगे, क्योंकि कार्यक्रम है हमारा और आपका। सखियों, ये बात एकदम सही है कि किसी भी देश का विकास उसकी इमारतों से नहीं बल्कि वहाँ के नागरिकों की सेवा में लगे कर्मचारियों से होता है। इसी सेवा भाव को दर्शाता है हमारा आज का विशेष दिन। जी हाँ सखियों, आज हम मना रहे हैं संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। आज का ये दिन सखियों उन अनगिनत लोक सेवकों को समर्पित है जो बिना थके पर्दे के पीछे रहकर समाज के हर व्यक्ति तक विकास और न्याय पहुंचाने का काम करते हैं। इस दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य केवल एकमात्र यही है सखियों, समाज के लोक सेवकों को पहचानना और युवाओं को इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना। सखियों, संयुक्त लोक सेवा दिवस पर हम सब मिलकर अपने लोक सेवकों के निस्वार्थ योगदान को सलाम करें, उनका सम्मान करें और एक बेहतर समाज के निर्माण में उनका सहयोग करें, क्योंकि उनकी सेवा में ही छुपा है हमारा सुरक्षित कल। सखियों, किसी ने सच ही कहा है कि जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अकेले चलना है। आज 23 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस सिर्फ कैलेंडर में एक तारीख नहीं, यह एक दिन है उन करोड़ों महिलाओं के संघर्ष को पहचानने का जिन्होंने अपने जीवन साथी को खो दिया। जब एक घर का मुखिया चला जाता है ना, तो पीछे छूट जाती है एक महिला। समाज अक्सर उसे सहानुभूति तो देता है लेकिन अधिकार नहीं। ताने, आर्थिक तंगी और अकेलेपन के साए में वह अपने और अपने बच्चों की जिंदगी संवारने के लिए जूझती रहती है। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ दर्द की नहीं है, कहानी है हौसलों की भी। हमारे समाज में कई ऐसी प्रेरणादायक महिलाएं हैं जिन्होंने रूढ़ियों को तोड़ा, पति के जाने के बाद न केवल खुद को संभाला बल्कि अपने बच्चों को भी पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस का यही असल मकसद है सखियों, कि इन महिलाओं को दया की नजरों से नहीं देखना है बल्कि उन्हें सम्मान और समानता देनी है। उन्हें शिक्षा, रोजगार और संपत्ति के अधिकार मिलने चाहिए। आज के इस विशेष दिन पर आइए हम सब मिलकर एक वादा करें, अपने आसपास, हमारे परिवार में या पड़ोस में अगर कोई ऐसी बहन या माँ है तो उनका संबल बने, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ें, उन्हें यह एहसास दिलाएं कि वे अकेली नहीं हैं। सरकार की कई कल्याणकारी योजनाएं उन तक पहुंचाएं और उनकी मदद करें, क्योंकि जब एक महिला सशक्त होती है पूरा परिवार, समाज मजबूत होता है। चलिए आज से रूढ़िवादिता को पीछे छोड़ते हैं और सम्मान की एक नई शुरुआत करते हैं।

के बाद न केवल खुद को संभाला बल्कि अपने बच्चों को भी पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस का यही असल मकसद है सखियों, कि इन महिलाओं को दया की नजरों से नहीं देखना है बल्कि उन्हें सम्मान और समानता देनी है। उन्हें शिक्षा, रोजगार

तक देश के सभी गरीबों और बेघरों को पक्का घर प्रदान करना है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1,30,000 तक की सहायता और शहरी क्षेत्रों में लगभग 2,75,000 की ब्याज सब्सिडी शामिल है। सखियों, इसके लिए जो भी आवेदक हैं उनका भारत में कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए, साथ ही वो गरीबी रेखा के नीचे हों। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं ना सखियों, तो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना बहनों न केवल छत प्रदान कर रही है बल्कि हमारा जीवन स्तर भी सुधार रही है। सामाजिक सुरक्षा और महिलाओं को सशक्त बनाकर सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान कर रही है। सचमुच सखियो, ये योजना सभी के लिए आवास के सपने को साकार करने का एक मील का पत्थर है। तो सखियो, अगर आपका सपना भी है अपना घर बनाने का, तो जरूर जुड़िए प्रधानमंत्री आवास योजना से और इस योजना का लाभ लेकर इसे सफल बनाइए। सखियो, अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, क्रम मेरी उड़ान के साथ। आज क्रम मेरी उड़ान में है हमारे साथ गेम्स टीचर, खेल शिक्षिका अन्नू झारिया। आइए जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी, क्रम मेरी उड़ान में।

0: सखियों, आज के क्रम मेरी उड़ान में मेरे साथ हैं खेल प्रशिक्षिका या कहूँ गेम्स टीचर अनु झारिया। ये एक प्रतिष्ठित संस्थान में बच्चों को विभिन्न प्रकार के खेलों का प्रशिक्षण देती हैं। बतौर गेम्स टीचर सफल और आत्मनिर्भर हैं। आइए मिलते हैं अनु झारिया से और जानते हैं उनसे उन्हीं के बारे में। अनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम मेरी उड़ान में। सबसे पहले अनु जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका रुझान इस फील्ड में कैसे आया।
1: धन्यवाद शालिनी जी, मुझे आपने मेरे बारे में बताने का मौका दिया। जैसे कि बच्चे बूढ़े सभी को ही खेलों में इंटरेस्ट होता है, उसी प्रकार मुझे भी खेलों में बहुत इंटरेस्ट था, इसीलिए मैंने गेम्स में जाने का फैसला किया। और मैं 8 साल की एज से जिमनास्टिक खेलने लगी थी। मेरे सर है जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उनकी वजह से आज मैं एक स्पोर्ट टीचर भी बनी हूँ और एक अच्छा प्लेयर बनी हूँ।
0: अनु जी, आप हमारी सखियों को ये बताइए कि आप किस प्रकार के खेल में आप माहिर हैं और आपका पसंदीदा खेल कौन सा है।
1: मेरा फेवरेट गेम जिमनास्टिक है, जिसमें मैंने बहुत नेशनल भी खेला है, स्टेट लेवल चैंपियन रह चुकी हूँ। मैं 8 साल की एज से इस गेम

0: बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कब कहाँ कैसे मूव करना है।
1: बहुत सही बात कही अनु जी। देखिए, जब हम अपने शरीर में तालमेल बिठाना सीख जाएंगे तो स्वाभाविक है कि वो काम बहुत ही अच्छा होगा। बहुत अच्छी बात बोल रही हैं आप। और भी हम जानना चाहेंगे कि अगर हमारी कोई सखी आपकी तरह गेम्स टीचर या ट्रेनर बनना चाहती है तो उसे क्या करना होगा?
0: सबसे पहले तो शालिनी जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इस फील्ड में बहुत मेहनत है और साथ ही साथ आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब तक खुद से इंटरेस्टेड नहीं होगे तो आप कुछ भी काम नहीं कर सकते
1: बिल्कुल
0: हो।
1: सही।
0: इसीलिए मतलब जैसे इसको आपने जैसे पहले कभी कोई गेम में आपका इंटरेस्ट हो, या फिर आपने कुछ गेम खेल रखे हो, या जिस गेम के बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज हो, जानकारियाँ हो, तो उस गेम में आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे बीपीएड होता है, बीपीएड कोर्स है जिसको करने से आपको है ना तो स्पोर्ट्स के हर गेम के बारे में नॉलेज मिलती है। मेन गेम जैसे आपका कुछ भी हुआ, खो खो हुआ, कबड्डी हुआ, जिम्नास्टिक क्यों ना हुआ।
1: बहुत बढ़िया अनु जी, आपने हमारी सखियों को इतने सारे कोर्सेज के बारे में बताया जिनकी वजह से वो आगे चलकर एक अच्छी ट्रेनर या गेम्स टीचर बन सकती हैं। अब मैं आगे आपसे ये जानना चाहती हूँ कि गेम्स की फील्ड में अगर हम आगे बढ़ रहे हैं या हम कुछ कर रहे हैं तो क्या हम अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं?
0: क्यों नहीं शालिनी जी, छोटे से लेवल से भी आप इस चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं। और हम सब मिलकर एक छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर खोलते हैं, उसमें छोटे छोटे बच्चे आते हैं, थोड़े बहुत बच्चों से स्टार्टिंग होती है, भले से 4 बच्चे आ रहे, 2 बच्चे आ रहे, धीरे धीरे वो चीज़ चल के बढ़ती है
1: बिल्कुल।
0: और धीरे धीरे आपको रिजल्ट भी मिलेगा, आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। जैसे कि हर स्कूलों में स्पोर्ट टीचर की डिमांड, सभी को मतलब खेलों में अब रुचि आने लगी है, बच्चों का इंटरेस्ट भी ज़्यादा खेलों की तरफ बढ़ रहा है, जिससे कि आपकी धीरे धीरे करके अर्निंग शुरू होने लग जाएगी और आप इसमें माहिर हो जाएंगे।
1: तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि खेल हमें स्वस्थ तो रखते ही हैं, साथ ही साथ हमारी जेब को भी हरा भरा रखते हैं ना? आखिर में आप हमारी सखियों के लिए क्या कहना चाहेंगे?
0: अब मैं सखियों से यह कहना चाहूंगी कि अब वो समय नहीं रहा है जब कहा जाता था खेलोगे कूदोगे होंगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे होंगे नवाब। अब वह समय है, जितना महत्व पढ़ाई का है उतना महत्व खेलों का भी है। अब आप भी चुप मत रहिए, अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा को निखारिए, और आप भी अगर किसी गेम में रुचि रखती है या इंटरेस्टेड है तो आगे बढ़िए।
1: बहुत अच्छी बातें कही अनु जी ने हमारी सखियों से। हम भी चाहेंगे कि सखियां अपने अरमानों को, अपने सपनों को पूरा करें, चाहे तो गेम्स टीचर के रूप में। अनु जी, आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

सखियों, अब बात रूप लावण्य की। व्यस्त जीवन शैली में अक्सर अपने पैरों की देखभाल करना हम भूल जाते हैं, जबकि वे दिन भर हमारे शरीर का भार सहते हैं और बाहरी परिस्थितियां से लड़ते रहते हैं। पैरों का प्राकृतिक स्थान उन्हें आराम देता है सखियों, थकान कम करता है और स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। तो आज जानेंगे रूप लावण्य में पैरों को सुकून देने वाले फुटबाथ। सखियों, नेचुरोपैथी और आयुर्वेद के अनुसार तलवों में अनेक तरह की नाड़ियों का जाल होता है जो शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़ी होती हैं, और यही कारण होता है कि पैरों के माध्यम से बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनका अवशोषण हो पाता है। सही देखभाल से रक्तचाप सुचारू रहता है, तनाव भी कम होता है और हाँ, शरीर को आराम मिलता है। अगर आप थकान दूर करना चाहते हैं ना सखियो, तो टब में 2 बड़े चम्मच ग्रीन टी या टी बैग ले सकते हैं और गुनगुने पानी में उन्हें 5 से 10 मिनट डालकर छोड़ दें ताकि उनके पोषक तत्व उसमें घुल जाएं। अब इसमें आप 1/2 कप नमक डालें और 1/4 कप बेकिंग सोडा डालें, 5 बूंद पेपरमेंट ऑयल की डालें और पैरों को 15 से 20 मिनट तक इसमें डुबा कर रखें। और अगर आप चाहते हैं कि आपका रक्त संचार सुचारू हो, तो गुनगुने पानी में 1/2 कप समुद्री नमक, 1/4 कप बेकिंग सोडा, 5 बूंद पेपरमेंट ऑयल और थोड़ी सी कद्दूकस की हुई अदरक मिला लें और पैरों को लगभग 15 मिनट तक इसमें भिगो कर रखें। और अगर मकसद हो क्लींजिंग का, कि आप पैरों को साफ करना चाहते हैं, तो गुनगुने पानी में 1 कप सेब वाला सिरका लें, 1/2 कप समुद्री नमक डालें, 1 बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा डालें और 5 बूंद किसी भी तेल की डाल सकते हैं। अब पैरों को 15 से 20 मिनट तक इसमें भिगो कर रखें। इसके नियमित इस्तेमाल से रक्त संचार तो बेहतर होगा ही सखियो, शरीर के जो विभिन्न अंग हैं उन तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति सुधरेगी, साथ ही तनाव कम होगा, अनिद्रा और मानसिक थकान

भी राहत मिलेगी। लेकिन ध्यान रखें सखियों, यदि पैरों में कोई खुला हुआ घाव या संक्रमण है तो फुटबाथ बिल्कुल ना करें और अधिक गर्म पानी का उपयोग भी ना करें। मधुमेह के जो मरीज हैं वे चिकित्सक की सलाह लेकर इसका उपयोग कर सकते हैं। और हाँ, किसी भी तेल या सामग्री से एलर्जी हो तो उसे भी शामिल ना करें। सखियों, अगर आप फुटबाथ लेती हैं तो फिर देखिए कि कैसे आपके पैर कोमल, मुलायम, खूबसूरत तो दिखेंगे ही, साथ ही साथ आपको चुस्त दुरुस्त भी रखेंगे।

और अब रुख करते हैं फूड जोन की तरफ। फूड जोन में आज हम बात करेंगे बच्चों और बड़ों की पसंदीदा चटनी, सेजवान चटनी की। जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं होममेड सेजवान चटनी। सखियो, इसके लिए आपको चाहिए सूखी लाल मिर्च 15 से 20, आप चाहें तो कश्मीरी और तीखी मिर्च मिली जुली ले सकते हैं, बारीक कटा हुआ लहसुन 1/2 कप, बारीक कटा हुआ अदरक 1/4 कप, तेल 1/2 कप, सोया सॉस 2 बड़े चम्मच, सफेद सिरका 1 चम्मच, शक्कर 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार और हाँ, काली मिर्च का पाउडर 1 छोटा चम्मच। अब सबसे पहले सखियो, दोनों तरह की लाल मिर्च को आधे घंटे के लिए गर्म पानी में भिगोकर रख दें ताकि वे नरम हो जाएं। अब इन्हें पीसकर पेस्ट बना लें। कढ़ाई में तेल गर्म करके लहसुन और अदरक को गुलाबी होने तक भून लें। इसमें मिर्च पेस्ट मिलाएं और धीमी आंच पर तेल अलग होने तक चलाते हुए पकाएं। सोया सॉस, सिरका, शक्कर और नमक डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। 2 से 3 मिनट तक पकाएं और अंत में काली मिर्च पाउडर डालकर मिलाएं। अब इस चटनी को ठंडा करें और ठंडा करके जार में भर के फ्रिज में रख दीजिए। आप चाहें तो इस चटनी को 1 महीने तक लगभग स्टोर कर सकते हैं।

रह सके हो। आयरन शरीर के लिए एक अत्यंत आवश्यक खनिज है जो मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है सखियो, और ये फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। पर्याप्त आयरन होने पर शरीर में ऊर्जा का स्तर बना रहता है, दिमागी कार्य क्षमता बेहतर होती है और हाँ, प्रतिरक्षा प्रणाली भी मजबूत होती है। वहीं अगर इसकी कमी हो जाती है ना सखियो, तो कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभार कुछ सामान्य से कारण जैसे संतुलित आहार का अभाव, आयरन युक्त खाद्य पदार्थों की कमी, या इसके अलावा महिलाओं में अत्यधिक मासिक स्त्राव, गर्भावस्था के दौरान बढ़ी हुई जरूरत, बार बार खून की कमी या पेट की समस्या के कारण भी आयरन का सही अवशोषण नहीं हो पाता। और सखियो, कुछ लोगों को ये समस्या अनुवांशिक या लंबे समय तक चलने वाली बीमारी के कारण भी हो सकती है। सांस फूलने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, धड़कनें तेज होती हैं, इसके अलावा जो मानसिक एकाग्रता है वो भी कम होने लगती है, सिर दर्द होता है, त्वचा पीली पड़ने लगती है, बाल झड़ने लगते हैं और भी कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं। आयरन की कमी से हम सभी जानते हैं कि एनीमिया भी हो सकता है सखियो। ऐसा ना हो सकियो, इसलिए हमें अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा। खान पान में अगर आप मांसाहारी हैं तो रेड मीट, कलेजी, मछली व अंडे अच्छे स्रोत होते हैं आयरन के, और अगर आप शाकाहारी हैं तो चना, राजमा, लोबिया, सोयाबीन, तिल, दाल, हरी सब्जी, कद्दू के बीज, गुड़, खजूर व किशमिश ले सकते हैं। और हाँ, रोज सुबह नाश्ते में गुड़ या सूखे मेवे जरूर शामिल करें, सलाद में नींबू डालकर खाएं और प्रोस्टेट फूड से दूरी बनाकर रखें। आयरन का सही अवशोषण जितना महत्वपूर्ण है उतना ही जरूरी है विटामिन सी। तो सखियो, काम की ये बातें जरूर याद रखिएगा, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। फिलहाल चलने का समय हो रहा है, तो बता दें आपको कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थी डॉक्टर प्रीति छड़ीदार, और अब दें अनुमति अपनी सखी शालिनी सोनी को। नमस्कार।

0: श्रोता बहनें अभी सुन रही थी उनका अपना कार्यक्रम महिला सभा। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
2: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
3: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
2: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
3: अरे काहे का मजा।
2: क्यों, क्या हुआ?
3: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
2: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
3: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
2: ये हुई ना बात।
4: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
5: इस समय आप है हमारे साथ।
6: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।

ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। प्रस्तुत है लोक संगीत, कलाकार है कालू सिंह चोपड़ा और साथी।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम का अगला लोकगीत।
1: हे जी गगन मंडल से उतरे और सतगुरु

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आपने कालू सिंह चोपड़ा और साथियों के गाए लोकगीत सुने। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की थी। ये प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया जा रहा है। प्रस्तुत है सुगम संगीत कलाकार।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आपने श्रुति कलवे के गाए कुछ भक्ति गीत सुने। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की थी। ये प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया जा रहा है।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
3: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
2: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
3: अरे काहे का मजा।
2: क्यों, क्या हुआ?
3: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
2: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
3: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
2: ये हुई ना बात।
4: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
5: इस समय आप है हमारे साथ।
6: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है फिल्म संगीत। आरंभ कर रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए गुलजार के लिखे गीत से। संगीत खयाम का है और फिल्म है थोड़ी सी बेवफाई।

और अब पेश है कार्यक्रम का ये गीत, फिल्म है मुकद्दर का सिकंदर। लता मंगेशकर के गाए इस गीत को लिखा है अनजान ने और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 65 पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इनमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में केंद्रीय मंत्री शिबू सोरेन, टेनिस स्टार विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और गायिका अलका याग्निक का नाम शामिल है। शाम 5 बजे शुरू होने वाले इस समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत भारत के तेजी से विकसित और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था बनने में प्रेरक बल रहा है। कल नई दिल्ली में एक मीडिया सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के प्रति प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में जो भी सिद्धियां देश की रही हैं, उनके मूल में राष्ट्रप्रथम की भावना ही केंद्र में है।
2: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही हैं, उनके मूल में हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने विभिन्न योजनाओं के लिए 5,365 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। बैठक में किसानों को राहत देने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने से जुड़े फैसले भी लिए गए। इसके साथ ही भोपाल मेट्रो परियोजना की लागत को बढ़ाकर 10,033 करोड़ रुपए करने की भी मंजूरी दी गई, जो पहले 6,941 करोड़ रुपए थी। जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आज प्रदेश सहित पूरे देश में

भाजपा द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने डॉक्टर मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का सपना एक देश एक प्रधान और एक विधान था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धारा 370 हटाकर साकार किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य सरकार आगामी मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिसके लिए प्रदेश भर से 10 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अल नीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में कम वर्षा की स्थिति में जरूरी तैयारियों, वैकल्पिक फसल योजनाओं और किसानों के हितों की रक्षा पर चर्चा हुई। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन 20 जुलाई की रात तक लिए जा सकेंगे। मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने इच्छुक मुस्लिम समुदाय के लोगों से समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है। आवेदक हज कमेटी की वेबसाइट या हज सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जुलाई के अंतिम सप्ताह में डिजिटल रैंडम चयन प्रक्रिया में चयनित यात्रियों को 10 अगस्त तक 1,52,300 रुपये की अग्रिम राशि जमा करनी होगी। प्रदेश में राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जो कि 25 जून को भोपाल में आयोजित की जाएगी। इसमें राज्य शिक्षा केंद्र के अधिकारी और सभी जिलों के नोडल अधिकारी शामिल होंगे। उन्हें छात्रवृत्ति चयन प्रक्रिया और पंजीयन से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को हर साल 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में मानसून प्रदेश में दस्तक दे सकता है। विभाग ने आज जबलपुर, मंडला, दमोह और उमरिया जिलों में हीट वेव यानी लू का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा कलेक्टर ने जिला पोषण समिति की बैठक में गर्भवती महिलाओं का 100% पंजीयन करने के निर्देश दिए। छिंदवाड़ा में परिवहन विभाग ने निजी स्कूलों में अवैध गैसकेट और अनफिट वाहनों के संचालन पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं और शिवपुरी में मोहर्रम पर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सद्भावना समिति की बैठक में सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा हुई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: News. नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, हुर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। अर्जेंटीना की टीम नॉकआउट में पहुंची। और लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूति, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
2: नैराब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है। तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सीख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी दस्ते को फिर से उजागर करने को बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
0: ये कार्यक्रम आज FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
4: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का साथ, और मूट जैसे एक सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
0: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
4: कश्मीर का
5: राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
0: इस अवसर पर गृह मंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
5: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
0: नाफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा यह संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
5: नाफेड ने एक प्रकार से नाफिक्स.इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये 4 पहलों की शुरुआत की, तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा

0: सलाहकार अजय डोभाल ने कहा है कि होर्मुज डरम रोमध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रेर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमेरिका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश

0: संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: घटनास्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। एसआईटी के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनेनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनेनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में आज लगातार 3rd दिन भी बारिश हो रही है।
2: मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। आज पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के घाट इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई इस बारिश से नागरिकों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश होने से किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। एफआईएच प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, होर्मुज जलडमरु मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है आपकी फरमाइश।

आपकी फरमाइश का आरंभ कर रहे हैं फिल्म राजनीति के गीत से। इस गीत को लिखा है समीर ने, संगीत आदेश श्रीवास्तव का है और आवाज आदेश श्रीवास्तव, रोसेली और शशि।

फिल्म राजनीति का ये गीत सुनवाने की फरमाइश हमें लिख भेजी थी अनिल कवचाले, सुषमा, आरती, सबीहा, रूपाली, श्वेता, पूजा, सीमा और उनके सभी साथियों ने गुमाश्ता नगर इंदौर से। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन की भी यही फरमाइश थी। लक्ष्मण रैकवार, विनीता रैकवार, वैशाली, अनरत, हल्ले, लल्लू, ऋषि और रैकवार परिवार के सभी सदस्यों ने अपनी फरमाइश बंडा बेलई सागर से भेजी थी। और अब पेश है कार्यक्रम का अगला गीत जिसे सुनवाने की फरमाइश की है गोला बाजार बक्सर से जीत प्रसाद, आशीष कुमार, सतीश कुमार, आयुष और आयुषी ने। गोला बाजार बक्सर से ही श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित ने। पटेल नगर मलौट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी, गगनदीप और बेबी आरजू। तो पेश है आप सबकी पसंद पर राहत फतेह अली खां और तुलसी कुमार के स्वर में इरशाद कामिल का लिखा गीत। संगीत प्रीतम का है और फिल्म है वंस अपॉन अ टाइम इन।

शफकत अमानत अली की आवाज़ में आप सुन रहे थे निरंजन आयंगर का लिखा गीत। इस गीत को संगीत से संवारा था शंकर एहसान लॉय ने और फिल्म थी माय नेम इज खान। फरमाइश करने वाले श्रोता थे अंबेडकर चौक खुरई से परमानंद आर्य, सौरभ गौरव, एलपी रोहित, लल्लूराम, पूरन रोहित, छोटू डुंडुन और उनका पूरा परिवार। हनुमानगढ़ राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और उनके सभी साथी। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसू और तासु, मयंक शुक्ला, राशि शुक्ला, पंकज शर्मा, साधना शर्मा और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने कोला रोड भोपाल से अपनी फरमाइश हमें भेजी। तो आप सबकी पसंद के इस गीत के बाद बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर और सुनते हैं शंकर महादेवन और अलीशा मेंडोसा की आवाज़ में जावेद अख्तर का लिखा गीत। संगीत एक बार फिर शंकर एहसान लॉय का है, फिल्म है कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। इस गीत को सुनवाने की फरमाइश हमें लिख भेजी है मनमोहन राजावत, राज मधुर, राशि रक्षित, चित्रंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने। खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार और मोहम्मद हसनैन। ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराड़े। जिला खंडवा ग्राम छेंगा से अशोक कुमार वाघे, वंदना वाघे, भूपेंद्र, झवर, तनुश्री, आरोही और कान्हा ने इस गीत की फरमाइश की है। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहते हैं यादव मोहल्ला सनावत से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मुस्कान और जितेंद्र धर्मेंद्र मालाकार। बिलहरी बड़खेरा से संतोष सिंह ठाकुर, अवधेश कुमार दुबे, सुमेर पटेल, सुदामा सेन, बारीलाल, मुन्ना खां, सुमित, सुनील और उनके सभी साथी। तो पेश है आप सबकी पसंद पर ये गीत।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश का आखिरी गीत अब आप सुनेंगे राहत फतेह अली खां और साथियों की आवाज में। विशाल ददलानी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है विशाल शेखर ने। फिल्म है अनजाना अनजानी और इस गीत को सुनवाने की फरमाइश हमें लिख भेजी है भाटापारा दतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और छविंद्र कुमार वर्मा ने। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल, जयवीर, अमनदीप से ने मोहाली चंडीगढ़ से, कालका से शुभ चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल की फरमाइश हमारे पास आई है। राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतना, रोशनी, बेबी प्रियांशी ने शाहू नगर यवतमाल से फरमाइश भेजी है। बलिया नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय की फरमाइश है। गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी, प्रांजल और गाजीपुर के शेरपुर कला से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय भी यही गीत सुनना चाहते हैं। इसी गीत को सुनना चाहा है राजेश सावले पाटिल, राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश ने छत्रपति संभाजी नगर से। तो सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

0: राहत फतेह अली खां और साथियों की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म अनजाना अनजानी का गीत। इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में 2026 वर्ष के लिए 65 पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था बनने में प्रेरक बल रहा है। कल नई दिल्ली में एक मीडिया सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के प्रति प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने विभिन्न योजनाओं के लिए 5,365 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। बैठक में किसानों को राहत देने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने से जुड़े फैसले भी लिए गए। जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आज प्रदेश सहित पूरे देश में भाजपा द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने डॉ. मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अल नीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए बैठक की। इस बैठक में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों ने भाग लिया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेपर्स सभा समाप्त करने से पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं सांध्यकालीन सभा के मुख्य कार्यक्रमों की। आज के इन मुख्य कार्यक्रमों में शाम 5 बजे से आप सुनेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान करने हेतु नागरिक अलंकरण समारोह के आयोजन का सजीव प्रसारण। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीआरटी शाम 6 बजे आप सुनेंगे। 7:21 का समय ग्राम सभा कार्यक्रम का रहेगा। इसके अंतर्गत सतत कृषि के विकास में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन की भूमिका विषय पर आप सुन सकेंगे भेंट वार्ता। बुंदेली समाचार, गीत संगीत और चर्चा शामिल होगी। सुर्खियों में कार्यक्रम रात 8 बजे प्रसारित किया जाएगा। 8:15 पर फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे। उर्दू कार्यक्रम कहकशा होगा रात 9:30 पर। अपनी पसंद के फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुना जा सकेगा रात 10 बजे और 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। इसके अंतर्गत सलीम अल्लाह वाले का तबला वादन सुना जा सकेगा। ये थे सांध्यकालीन सभा के कुछ मुख्य आकर्षण। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़। साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। दिन के 3:01 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा यही समाप्त होती है। शाम 5 बजे अपने कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव पर हम पुनः उपस्थित होंगे। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा।

0: नमस्कार। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजने को हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा की शुरुआत करते हैं श्रोताओं युवा साथियों के पसंदीदा प्रोग्राम युववाणी से।
1: नमस्कार,

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा रेडियो प्रोग्राम विवाणी। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राज।
1: और मैं हूं श्रद्धा।
0: दोस्तों, गर्मी की तपती दोपहरी उछल चिल्लाती धूप के बाद अब समय आने वाला है जिसका इंतजार सभी को होता है, बारिश। जी हाँ, मानसून दस्तक दे रहा है और बारिश का सुहाना मौसम हमारे दहलीज पर खड़ा हुआ है।
1: धरती की प्यास बुझाने, किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने और प्रकृति को हरियाली की चादर से सजाने वाला मानसून अपने साथ नई ऊर्जा, नया उत्साह और नई उम्मीदें लेकर आता है।
0: बिल्कुल साथियों, तो आइए आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करते हैं मानसून की, बारिश की फुहारों की और उससे जुड़े कुछ रोचक तत्वों के बारे में।
1: भारत में मानसून केवल एक मौसम नहीं बल्कि जीवन का आधार है। देश की कृषि का एक बड़ा हिस्सा मानसून पर निर्भर करता है। जब काले बादल आसमान में छा जाते हैं और पहली बारिश की बूंदें धरती पर गिरती है, तब मिट्टी से उठने वाली वो सौंधी सौंधी सी खुशबू हर किसी का मन मोह लेती है।
0: साथियों, किसानों के लिए मानसून किसी वरदान से कम नहीं होता। अच्छी वर्षा होने पर फसलें लहलाती हैं और देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत मिलती है।
1: मानसून का आगमन दक्षिण पश्चिम दिशा से होता है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी भरी हवाएं पूरे देश में वर्षा करती है। सामान्यतः जून से सितंबर तक मानसून का मौसम रहता है।
0: साथियों, बारिश का मौसम युवाओं के लिए भी खास ज्यादा ही कुछ होता है। कहीं चाय और पकौड़ों का आनंद, तो कहीं दोस्तों के साथ बारिश में भीगने की मस्ती, तो कहीं प्रकृति की खूबसूरती के कैमरे में कैद करने का एक जुनून अपने आप में ही अलग होता है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन बारिश के मौसम में कुछ सावधानियां भी बहुत जरूरी है। बारिश में अनावश्यक रूप से जल भराव वाले क्षेत्रों में जाने से बचें।
0: और साथियों, बिजली चमकने के दौरान खुले मैदानों या पेड़ों के नीचे कतई खड़े हो। साफ और उबला पानी बिल्कुल पिए।
1: और हाँ, मच्छरों से बचाव के लिए आसपास पानी जमा न होने दे। सड़क पर वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरते। और हाँ, ये याद रखिए कि थोड़ी सी सतर्कता हमें सुरक्षित रख सकती है।
0: बिल्कुल ठीक। दोस्तों, मानसून हमें पर्यावरण संरक्षण का संदेश तो देता ही है। जिस तरह बारिश धरती को जीवन देती है, उसी तरह हमें प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आइए इस मानसून में संकल्प लें कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, वर्षा जल संचय को बढ़ावा देंगे और जल की एक एक बूंद का महत्व समझेंगे। क्योंकि साथियों, इस साल हम सभी ने जल संकट को काफी नजदीक से देखा है। साथियों, तो प्रदेश में अलग अलग जिलों में और कई गांवों भी जल की बिल्कुल कमी सी हो गई थी। तो अब वो समय है कि हम पेड़ लगाएं, प्रकृति के प्रति ध्यान दें और पानी का अधिक से अधिक संचय करें।
1: बिल्कुल, और साथ ही पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखने में अपना योगदान दें। दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं हम आज के दो प्रश्नों के साथ। तो आज का पहला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है।
0: साथियों, आज का दूसरा प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है। हम एक बार पुनः दोहराते थे साथियों।
1: दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है।
0: दोस्तों, आज का दूसरा प्रश्न है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है। उम्मीद है इन दोनों प्रश्नों को आप अंत तक खोज ही लेंगे। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: दोस्तों, खेल केवल मनोरंजन का साधन कतई नहीं है, बल्कि यह व्यक्तित्व निर्माण, अनुशासन, आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गौरव के महत्व आधार का भी एक अहम हिस्सा है। खेल हमें सिखाते हैं कि सफलता और असफलता दोनों को समान भाव से स्वीकार करते हुए निरंतर आगे बढ़ना ही जीवन का असली वास्तविक मंत्र है।
1: इन्हीं आदर्शों को विश्व भर में स्थापित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। आज के इस विशेष अंक में हम जानेंगे कि ओलंपिक दिवस का इतिहास, इसका महत्व, भारत की उपलब्धियां और युवाओं के लिए इसका संदेश क्या है।
0: दोस्तों, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत का श्रेय फ्रांस के महान शिक्षाविद और खेल प्रेमी फ्रांसीसी शिक्षाविद बैरिन पियरो डी कार्बेटिन को जाता है। उन्होंने यह विचार रखा कि खेलों के माध्यम से विश्व के देशों के बीच शांति, भाईचारा और सहयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है।
1: उनके प्रयासों से 23 जून 1894 को पेरिस में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई। इसी ऐतिहासिक घटना की याद में वर्ष 1948 से हर साल 23 जून को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाने लगा।
0: बिल्कुल साथियों, ओलंपिक दिवस का उद्देश्य केवल खेल प्रतियोगिताओं का उत्सव मनाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि लोगों को खेलों के प्रति जागरूक करना, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना और खेल भावना को बढ़ावा देना भी है।
1: दोस्तों, ओलंपिक आंदोलन का मूल उद्देश्य मानवता को एक सूत्र में बांधना है। ओलंपिक हमें सिखाता है कि धर्म, भाषा, रंग, जाति और राष्ट्रीय सीमाओं से ऊपर उठकर हम सभी एक वैश्विक परिवार का हिस्सा हैं।
0: बिल्कुल ठीक। ओलंपिक का आदर्श वाक्य है सीटियस अल्टियस फोर्टियस। ये लैटिन भाषा का वाक्य है जिसका अर्थ साथियों तेज, ऊंचा, मजबूत, यानी फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। ये संदेश हमें बताता है कि केवल व्यक्तिगत सफलता ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सामूहिक प्रगति और सहयोग भी उतना ही आवश्यक है।
1: ओलंपिक का प्रतीक 5 रंगों वाले छल्ले हैं, जो विश्व के 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये छल्ले एकता, मित्रता और वैश्विक भाईचारे का संदेश देते हैं।
0: बिल्कुल ठीक। श्रोताओं, ओलंपिक खेलों में जीत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण होती है खेल भावना।
1: ओलंपिक के जनक पियरे डी कुबर्टिन कहते हैं कि ओलंपिक में सबसे महत्वपूर्ण बात जीतना नहीं होता, बल्कि भाग लेना होता है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात विजय नहीं, बल्कि संघर्ष करना है।
0: और यही कारण है साथियों कि ओलंपिक केवल पदकों की दौड़ नहीं है, बल्कि साहस, धैर्य, समर्पण और मानव क्षमता की श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति का एक खुला मंच है।
1: यदि भारत के ओलंपिक इतिहास की बात करें तो ये गौरवपूर्ण उपलब्धियों से भरा हुआ है। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में स्वर्णिम इतिहास रचा है। मेजर ध्यानचंद जैसे महान खिलाड़ियों ने भारत को विश्व में अलग पहचान दिलाई है।
0: व्यक्तिगत स्पर्धाओं में भी भारतीय खिलाड़ियों ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक 2008 में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया।
1: पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में भारत को गौरवान्वित किया। मैरी कॉम, साक्षी मलिक, मीराबाई चानू, लवलीना, रवि दहिया और अनेक खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ देश का मान बढ़ाया है।
0: साथियों, जब हम ओलंपिक की बात करते हैं तो नीरज चोपड़ा का नाम विशेष रूप से याद आ जाता है। उन्होंने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर भारतीय एथलेटिक्स को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।
1: इन खिलाड़ियों की सफलता ये प्रमाणित करती है कि कठिन परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास के बल पर कोई भी सपना साकार किया जा सकता है।
0: दोस्तों, आज के समय में मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल दुनिया में हमारे जीवन को आसान तो बना ही दिया है, लेकिन इसके कारण शारीरिक गतिविधियां भी कम सी होती जा रही हैं। ऐसे में ओलंपिक दिवस हमें याद दिलाता है कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन ही सफलता का वास्तविक एक कुंजी है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। खेल केवल खिलाड़ियों के लिए नहीं होते हैं, बल्कि हर व्यक्ति को किसी न किसी खेल, योग, दौड़, साइकिलिंग या शारीरिक गतिविधि को अपने जीवन का हिस्सा बनाना ही चाहिए।
0: खेल हमें सिखाते हैं कि अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, टीम भावना और समय प्रबंधन, आत्मविश्वास, सकारात्मकता, सोच, ये सभी गुण जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक हैं।
1: अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी जीत पदकों में नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास, संघर्ष और उत्कृष्टता की खोज में होती है।
0: तो आइए साथियों, इस अवसर पर हम संकल्प लें कि हम नियमित रूप से खेलों और शारीरिक गतिविधियों को अपनाएंगे, स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देंगे और खेल भावना को अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बनाएंगे। क्योंकि साथियों, एक स्वस्थ युवा ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकता है।

0: दोस्तों, आज यानी 23 जून है और आज का दिन विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिवस उन लाखों लोक सेवकों को समर्पित है जो समाज और राष्ट्र के विकास के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करते रहते हैं।
1: श्रोताओं, आज हम जानेंगे कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस क्या है और इसका महत्व क्या है। साथ ही हम युवाओं की इसमें क्या भूमिका हो सकती है, इस पर भी चर्चा करेंगे।
0: प्रिय श्रोताओं, किसी भी देश की प्रगति केवल उसकी आर्थिक शक्ति या फिर प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उस देश की प्रशासनिक व्यवस्था और लोक सेवाओं की गुणवत्ता पर भी निर्भर होती है।
1: चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, परिवहन हो, जल आपूर्ति हो या फिर आपदा प्रबंधन, हर क्षेत्र में लोक सेवक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
0: साथियों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2002 में यह निर्णय लिया कि प्रत्येक वर्ष 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं के महत्व को पहचान देना और लोक सेवकों के योगदान को सम्मानित करना भी अहम है।
1: लोक सेवा का अर्थ केवल सरकारी नौकरी नहीं है, इसका वास्तविक अर्थ है जनहित में कार्य करना, लोगों की समस्याओं को समझना और उनके समाधान के लिए समर्पित रहना।
0: श्रोताओं, एक शिक्षक जो विद्यार्थियों का भविष्य संवारता है, एक डॉक्टर जो मरीजों की सेवा करता रहता है, एक पुलिसकर्मी जो सुरक्षा सुनिश्चित करता है, एक सफाईकर्मी जो शहर को स्वच्छ बना ही रखता है, ये सभी लोक सेवा की भावना के एक छोटे से उदाहरण हैं।
1: आज के समय में लोक सेवाओं का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। डिजिटल तकनीक के माध्यम से सरकारी नागरिकों तक सेवाएं अधिक सरल और पारदर्शी तरीके से पहुंचा रही हैं।
0: और श्रद्धा, भारत में भी अनेक डिजिटल पहल जैसे ऑनलाइन सेवाएं, डिजिटल भुगतान, जनधन योजना, आधार डिजी लॉकर और ई गवर्नेंस कार्यक्रम में आम नागरिकों को जीवन को कितना सरल सा बना दिया है, तुमने देखा ही होगा। और इन प्रयासों का उद्देश्य भी है कि सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ और पारदर्शी प्रभावी बनाया जाए।
1: और साथ ही श्रोताओं, युवाओं की भूमिका किसी भी राष्ट्र के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि युवा वर्ग ईमानदारी, जिम्मेदारी और सेवा की भावनाओं को अपनाए ना, तो देश की प्रशासनिक व्यवस्था और भी ज्यादा मजबूत हो सकती है।
0: बिल्कुल ठीक कहा तुमने। आज अनेक युवा संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में जाकर समाज सेवा का सपना पूरा कर रहे हैं। लोक सेवा केवल एक करियर नहीं है साथियों, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व निभाने का एक सुनहरा अवसर है।
1: संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस हमें ये संदेश देता है कि अच्छी शासन व्यवस्था तभी संभव है जब लोक सेवाएं निष्पक्ष, जवाबदेह और नागरिक केंद्रित हो।
0: ये दिवस हमें उन अनगिनत कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रति सम्मान प्रकट करने का अवसर देता है जो प्रतिदिन जनता की भलाई के लिए कार्य करते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्यकर्मियों, पुलिसकर्मियों और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े तमाम कर्मचारियों ने जिस समर्पण और साहस का परिचय दिया है साथियों, वह लोक सेवा की भावना का उत्कृष्ट एक उदाहरण है।
1: आइए इस अवसर पर हम सभी ये संकल्प लें कि हम अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करेंगे, समाज के प्रति संवेदनशील रहेंगे और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देंगे।

0: श्रोताओं, एक ही शहर में आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं मध्य प्रदेश के उस जिले में जिसे नर्मदा की धरती, खेती की राजधानी और प्रदेश के सबसे समृद्ध कृषि क्षेत्रों में से एक माना जाता है। हम बात कर रहे हैं नरसिंहपुर की।
1: बिल्कुल ठीक साथियों, मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में स्थित नरसिंहपुर नर्मदा घाटी का एक महत्वपूर्ण जिला है। यहाँ की पहचान सबसे पहले इसकी उपजाऊ काली मिट्टी से होती है। कहा जाता है साथियों कि यह क्षेत्र एशिया की सबसे उपजाऊ कृषि भूमि में गिना जाता है। यहाँ की धरती इतनी उर्वरक है कि साल भर खेतों में हरियाली देखने को मिल ही जाती है,
0: और यही कारण है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। गेहूं, चना, मसूर, मटर, सोयाबीन और गन्ने जैसी फसलें यहाँ बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। नर्मदा और उसकी सहायक नदियों की वजह से सिंचाई की अच्छी व्यवस्था भी उपलब्ध है।
1: श्रोताओं, नरसिंहपुर की एक और खासियत है, यहाँ की उत्पादन अक्सर स्थानीय जरूरतों से भी ज़्यादा हो जाता है। आधुनिक कृषि उपकरणों के साथ साथ परंपरागत खेती की झलक यहाँ देखने को मिलती है, जो कि हमारा बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वहाँ पर अधिकतर ये सारा कार्य अधिक मात्रा में ही देखने को ज़्यादा मिल जाता है हम सभी।
0: और दोस्तों, अगर शिक्षा की बात करें तो नरसिंहपुर ने पिछले कुछ दशकों में काफ़ी प्रगति की है। जिले की साक्षरता दर लगभग 75% से अधिक है दोस्तों, जो राष्ट्रीय औसत के आसपास या उससे बेहतर

0: मानी जाती है। यहाँ सरकारी और निजी दोनों तरह के विद्यालय की बड़ी संख्या में संचालित है।
1: साथियों, उस उच्च शिक्षा के लिए यहाँ कई संस्थान मौजूद हैं, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज, महिला महाविद्यालय, गोटे गांव और गाडरवारा के कॉलेज, तथा विभिन्न तकनीकी एवं व्यावसायिक संस्थान क्षेत्र। ये विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करते हैं। हालांकि बड़ी संख्या में छात्र आज भी उच्च शिक्षा के लिए जबलपुर या फिर भोपाल, इंदौर की ओर रुख कर सकते हैं।
0: स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो जिला अस्पताल के अलावा कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और निजी अस्पताल भी लोगों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
1: और यही वजह साथियों कि नरसिंहपुर आज केवल खेती के लिए ही नहीं, बल्कि शिक्षा, सामाजिक विकास के क्षेत्र और अपनी अलग मजबूत पहचान खेती के लिए बनाता है।
0: दोस्तों, अब हम एक गीत के बाद आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे नरसिंहपुर के इतिहास, पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत के बारे में। तब तक सुनिए।

0: साथियों, जिस से पहले हम बात कर रहे थे नरसिंहपुर की विकास यात्रा के बारे में। साथियों, अब बारिश का मौसम धीरे धीरे अपने उमंग पर है और इस समय नरसिंहपुर के घाट और जबलपुर के घाट और भी ज्यादा खूबसूरत से बन जाते हैं। तो
1: बिल्कुल सही
0: साथियों,
1: कहा आपने।
0: नरसिंहपुर के इतिहास और पर्यटन के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं।
1: दोस्तों, नरसिंहपुर का नाम भगवान नरसिंह के नाम पर रखा गया है। ये प्राचीन नरसिंह मंदिर इस शहर की धार्मिक पहचान का केंद्र है और साथ ही इतिहासकार बताते हैं कि नगर का पुराना नाम छोटा गाडरवारा भी रहा है, जिसके बाद में नरसिंहपुर कहा जाने लगा।
0: साथियों, पर्यटन की दृष्टि से ये एक समृद्ध जिला है। सबसे पहले नाम आता है बर्मन घाट का। नर्मदा नदी के किनारे स्थित ये स्थान धार्मिक और प्राकृतिक दोनों दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ हर वर्ष लगने वाला मेला हजारों श्रद्धालुओं का आकर्षण का केंद्र बना रहता है।
1: दोस्तों, इसके अलावा

0: क्षोतेश्वर भी नरसिंहपुर का एक प्रमुख आकर्षण है। यहाँ स्थित त्रिपुर सुंदरी मंदिर और परमहंसी गंगा आश्रम दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। शांत वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ आने वालों को विशेष अनुभव प्रदान करते हैं।
1: डमरू घाटी, चोरागढ़ किला और नर्मदा तट के अनेक रमणीय स्थान भी जिले की पहचान है। प्रकृति प्रेमियों के लिए यहाँ की हरियाली, नदी तट और ग्रामीण जीवन किसी आकर्षण से कम नहीं है।
0: नरसिंहपुर व्यापार के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है दोस्तों। कृषि उपज मंडियां यहाँ की आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। अनाज, दलहन और तिलहन का व्यापार बड़ी मात्रा में होता है। लकड़ी और वन उत्पाद भी स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं।
1: दोस्तों, अगर यहाँ की संस्कृति की बात करें तो नर्मदा के प्रति आस्था, लोकगीत, मेले और ग्रामीण परंपराएं आज भी यहाँ के जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। आधुनिकता के साथ साथ अपनी संस्कृति जड़ों को संभाले रखना नरसिंहपुर की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक अहम स्थान है।
0: तो श्रोताओं, नरसिंहपुर केवल एक जिला नहीं बल्कि मेहनत, समृद्धि, आस्था और प्रकृति का सुंदर संगम है। एक ऐसा शहर जो अपनी मिट्टी की खुशबू, नर्मदा की धारा और लोगों के अपनत्व से हर आगंतुक को अपना बना लेता है।
1: बिल्कुल साथियों, साथियों, मध्य प्रदेश के छोटे से शहर नरसिंहपुर की यात्रा आप सभी को बेहद पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। हम अगले बार भी आपको नए शहर की ओर ले चलेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं अगले गीत की ओर।

0: दोस्तों, बारिश की पहली फुहारों के साथ धरती नई हरियाली की चादर ओढ़ने लगती है। ऐसे समय में लगाए गए पौधे जल्दी विकसित हो जाते हैं और इसी कारण से जुलाई का पहला सप्ताह वृक्षारोपण के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, जो कि अगले महीने आने वाला है।
1: लेकिन दोस्तों, वन महोत्सव सिर्फ पौधे लगाने का नाम नहीं है। ये याद दिलाता है कि पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते बल्कि हमारे जीवन का आधार है। अगर पेड़ न हो तो गर्मी कितनी बढ़ जाएगी, बारिश का संतुलन बिगड़ जाएगा और स्वच्छ हवा मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। और आज जब जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुका है, तब एक एक पेड़ का महत्व और भी बढ़ जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें योगदान देने के लिए किसी बड़े अभियान का हिस्सा बनना जरूरी नहीं है।
0: दोस्तों, आप अपने घर आंगन या फिर छत या फिर गमलों में भी पौधे लगा सकते हैं। अगर जगह हो तो नीम, पीपल, अमलतास या फिर फलदार पौधे जरूर लगाएं।
1: और हाँ, ये याद रखिए कि सिर्फ पौधा लगाना ही नहीं, उसकी देखभाल करना भी उतना ही जरूरी होता है, क्योंकि अक्सर लोग पौधे लगाकर छोड़ तो देते हैं लेकिन उनका ख्याल नहीं रख पाते और वो उगने से पहले ही उनके जो बीज होते हैं वो सड़ जाते हैं या खराब हो जाते हैं।
0: और श्रद्धा, मैंने कहीं भी पढ़ा भी था, जैसे इस मौसम में कई सारे फल आते हैं, आम आते हैं और फिर मतलब कई सारे ऐसे फल होते हैं, जामुन होते हैं, तो हम उनके गुठलियों को डस्टबिन में डाल देते हैं। तो मैंने कई बार ये सुना था कि अपन किसी सड़क किनारे जाते हैं जहाँ मिट्टी होती है या फिर थोड़ा मिट्टी वाला मैदान होता है, तो उन गुठलियों को हमको वहाँ थोड़ा दफना देना चाहिए या फिर फेंक देना चाहिए, ताकि वर्षा से जो जल होता है और भी ज़्यादा अंदर जाता है, तो नए पेड़ पौधे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं उन्हीं
1: बिल्कुल
0: गुठलियों
1: सही
0: से।
1: कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। और अक्सर ऐसे जो पौधे होते हैं ना, उन्हें पानी की भी कम जरूरत पड़ती है,
0: हाँ,
1: क्योंकि वो गर्मी में थ्राइव कर पाते हैं, वो गर्मी में अपने आप को बचा लेते हैं और कम ही पानी की आवश्यकता होती है। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसे जो पौधे हैं ना, वो बहुत दूर दूर के क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं जहाँ पर लोग रोजाना जाकर पानी नहीं डाल पाते हैं। तो अच्छी बात यह है कि आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है, आप बस गर्मी के मौसम में आपने जो भी फल फ्रूट्स खाए हैं वो अब से बचाना शुरू कर दीजिए। आपके पास एक हफ्ता है, आप अपने तरबूज है या फिर खरबूजा
0: या
1: है,
0: फिर आम
1: आम
0: के
1: है,
0: फिर बीज हुए,
1: बिल्कुल
0: गुठलियां
1: जामुन हो
0: हुई,
1: गया, इन सभी की गुठलियों को या बीजों को बचाइए, इन्हें साफ कर धूप में सुखा सकते हैं।

0: तो दोस्तों समय हो चला है आज के कार्यक्रम की शुरुआत में पूछे गए दो प्रश्नों के उत्तर देने का। दोस्तों आज का पहला प्रश्न था कि भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है, और उसका उत्तर है केरल।
1: तो साथियों आज का दूसरा प्रश्न था कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो उसका सही उत्तर है कान।
0: दोस्तों उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा, और अब हम आपसे दोबारा मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

यूथ प्रोग्राम युववाणी अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर।

फिल्म मिशन कश्मीर शंकर महादेवन, जसपिंदर नरूला, सुनिधि चौहान और साथियों की आवाजें, राहत इंदौरी के बोल और शंकर एहसान लॉय का संगीत।

फिल्म संगीत श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। और श्रोताओं, आइए अब सुनवाते हैं हम आपको प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सबदंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जोहार, जय हिंद। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं, गांव की मिट्टी में वो ताकत है जो इंसान को अपनी भाषा, संस्कृति और जड़ों से जोड़े रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का, यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे, गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी, और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे यही निवेदन रहेगा हमारा कि इसी तरह से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। स्वागत है एक बार फिर से, और आइए अब चलते हैं हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी भारत की विभिन्न झीलों के बारे में, याद है ना। हमने बात की थी मणिपुर की अनोखी झील लोकटक, हिमालय की सुरम्य वादियों में बसी मानसरोवर झील, ओडिशा की चिल्का झील और कश्मीर की डल झील की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आइए अब चलते हैं आज की चर्चा में। श्रोताओं, इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ले चलेंगे भारत के विचित्र, रहस्यमयी और अनूठी गुफाओं में। सचमुच बड़ा ज्ञानवर्धक और मनोरंजक होगा उनके बारे में जानना, है ना। लेकिन पहले आपको ये तो बता दें कि हम गुफा को भौगोलिक रूप से परिभाषित कैसे करेंगे। तो आइए सुनते हैं इसकी परिभाषा। श्रोताओं, आम बोलचाल की भाषा में हम झील, पर्वत, लगून, मानसून जैसे शब्दों को तो कह देते हैं, लेकिन सही मायनों में उसकी परिभाषा वैज्ञानिक रूप से नहीं जानते। श्रोताओं, गुफा पृथ्वी की सतह के नीचे या अंदर प्राकृतिक रूप से बनी हुई खोखली जगह को कहते हैं। अगर आप पूछें कि इसे सरल शब्दों में कैसे कहें, तो आपको बता दूं कि धरती या पर्वत या समुद्र के भीतर प्राकृतिक रूप से बनी खोखली जगह को गुफा कहते हैं। हाँ, ये कभी कभी मानव निर्मित भी हो सकती है। तो आइए अब आते हैं आज के विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अद्भुत गुफा की, जिसे हम भीम बैठका गुफा के नाम से जानते हैं। श्रोताओं, इस नाम के पीछे एक बड़ी दिलचस्प पौराणिक कथा है। ऐसा कहते हैं कि यह नाम महाभारत के भीम से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि भीम इस स्थान पर रुके थे, भीम बैठका यानी भीम के बैठने की जगह। इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। सचमुच ये बड़ी रोचक बात है, इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। तो आइए श्रोताओं, अब जानते हैं कि भीम बैठका की गुफा है कहाँ। तो आपको बता दें, ये जगह मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में है, जो राजधानी भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में पड़ती है। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं। लेकिन अब एक और प्रश्न मेरे मन में आता है, आपके मन में भी आ रहा होगा, और वो प्रश्न ये है कि भीम बैठका की गुफाओं का पता कैसे चला। तो श्रोताओं, इसके पीछे बड़ा मनोरंजक किस्सा है। वहां के स्थानीय लोग तो इन गुफाओं के बारे में जानते थे, लेकिन इसका पता विश्व को तब चला जब डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने इसके बारे में प्रामाणिक ढंग से जानकारी दी। तो आइए जानते हैं कैसे पता चला डॉक्टर विष्णु वाकणकर जी को। तो आपको बता दें कि डॉक्टर विष्णु वाकणकर एक जाने माने पुरातत्वविद रहे हैं। वर्ष था 1956। एक बार वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। ट्रेन विंध्य पर्वतमाला से होकर जा रही थी। श्रोताओं, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो डॉक्टर विष्णु वाकणकर को जरूर याद रखिएगा, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है जी। तो मैं आपको बता रहा था कि वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने ट्रेन की खिड़की से कुछ ऐसी चट्टानों और पहाड़ियों को देखा जो बड़ी कलात्मक लगी। वे दूसरी चट्टानों से भिन्न थीं। वे उन्हें अपनी फ्रांस और स्पेन की यात्रा के दौरान देखी गई प्रागैतिहासिक शैल चित्रों वाली चट्टानों जैसी लगी। तो फिर क्या था, वे उतर गए अगले स्टेशन पर और उस स्थान पर पहुंचे। बाद में उन्होंने बताया कि पहली गुफा में घुसते ही वे आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने वहां बहुत सारे शैल चित्र यानी पत्थरों पर बने चित्र देख लिए, जिन्हें हम रॉक पेंटिंग्स कहते हैं। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं में 30,000 वर्ष तक पुराने शैल चित्र हैं, जो पुरापाषाण युग से मध्यकाल तक की झांकी प्रस्तुत करते हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए डॉक्टर विष्णु वाकणकर को सन 1975 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और वर्ष 2003 जुलाई में यूनेस्को ने भीमबेटका की गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया। ये खोज पुरातत्व और मानव अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ये साबित हुआ कि भारत में मानव सभ्यता कितनी प्राचीन और निरंतर है। तो आइए श्रोताओं, आप जानते हैं कि इन गुफाओं में क्या ऐसी बात है जो इसे खास बनाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत का सबसे पुराना ज्ञात मानव आवास है, जिसमें 600 से भी अधिक शैलाश्रय या रॉक शेल्टर्स हैं। ये प्रकृति द्वारा बने आवास हैं। इन गुफाओं में शिकार, सामूहिक नृत्य, युद्ध, पशु पक्षी और प्रारंभिक मानव की रोजमर्रा की जिंदगी के चित्र हैं। श्रोताओं, इन चित्रों में गेरुआ, लाल, सफेद, पीले और हरे रंगों का इस्तेमाल हुआ है। ये रंग वनस्पति से बने हैं, इसलिए हजारों वर्षों बाद भी ये टिके हुए हैं। अगस्त 1990 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया। ये वो जगह है श्रोताओं, जहां संभवतः आदि मानव ने पहली बार पत्थरों की दीवारों को कैनवस बनाया। हम भीमबेटका की गुफाओं को भारत के इतिहास की पहली चित्र गैलरी भी कह सकते हैं। तो श्रोताओं, भीमबेटका की गुफाएं सचमुच अद्भुत हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की? 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन दोनों पतों पर हमारे प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी वसंती। श्रोताओं, ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण नेत्री वसंती के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।
3: दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है, किसने संवारी है हमारी दुनिया? माँ की गोद ने और नदियों की घाटियों ने। हजारों हजारों साल से माँ ने हमें सीने से लगाया, हमें जीवन दिया है। यही तो है नदी, जिसने हमारी सभ्यता को सींचा और हरा भरा किया है।

नदी मनुष्य के साथ रही है, उसकी हर हंसी हर आंसू में। वो हम सफर रही है मनुष्य के हर सफर में। तभी तो हर सभ्यता ने नदी को माँ कहा है।

लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस माँ के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।

0: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं। 1972 में चिपको आंदोलन की शुरुआत कर अपने जंगलों को बचाने वाली गांव की ही एक अनपढ़ 50 वर्षीय बाल विधवा गौरा देवी थी।
1: और इस बार भी कोसी की रक्षा के लिए एक महिला ही आगे आई। हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
0: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं। आइए जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को।
1: ये कहानी है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव की।

0: सन 1980 अप्रैल का एक दिन।
1: बसंती, अरे बसी, ओ बसी कहाँ है तू?
2: अरे बुआ क्यों चिल्ला रही हो? मैं यहाँ बुरांस के फूल चुन रही हूँ।
1: अरे क्या करेगी इनका तू? हाँ
2: क्या करूँगी, गमकुआ इतर बनाऊंगी। क्या तुम्हें पता नहीं कि इससे शरबत बनता है? तो शरबत बनाऊंगी।
1: अरे बसी तू बिल्कुल बावरी है। अरे चार रोज बाद तेरा ब्याह है और आज जंगल में बुरांस के फूल चुन रही है। हाँ चल खचल। अरे चल सब खोज रहे हैं तुझे। अरे चल ना जल्दी कर।
2: नहीं।

0: अभी तो उसने ठीक से अपने गुड्डे गुड़िया का भी ब्याह नहीं रचाया था, और उस छोटी सी गुड़िया का ब्याह हो गया।
1: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
0: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।

अरे बसंती, बेटी तू बर्बाद हो गई, तेरी दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई बेटी।

0: और इस तरह इससे पहले कि बसंती ब्याह के मायने समझती, वो विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में ये आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।
0: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
1: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
0: ये तो थी कहानी बसंती की, पर बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से? है ना, बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी, तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है। मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई।

0: हुआ यूं कि कोसानी जाते हुए मन्नान में बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई। मानो कह रही हो, बेटी बसंती, तू उदास मत हो, ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी। इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सको, तुम अपने जीवन दे सको, मायने दे सको।
0: बसंती घबराकर इधर उधर देखने लगी, पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
1: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े सवाल सालते, वो कोसी के किनारे चुपचाप अकेले जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।
0: साल पर साल गुजरते गए। बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही और कोसी भी अपनी जल तरंगों से घाटी को हरा भरा करती रही।

0: लेकिन लोगों की नादानी से कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगी। और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।
1: बसंती दीदी, ओ बसीदी, कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने? दीदी,
2: अरे क्या हुआ शांति? क्यों सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है? मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
1: दीदी दीदी, अभी अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी, वहाँ सरकार ने कोसी पर जगह जगह पुलिस बैठा दी है।
2: क्या?
1: सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
2: अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? कोसी हमारी है या सरकार की?
1: कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना।
2: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
1: ठीक है, चल ठीक है दीदी, चलो चलो।
3: उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई।
4: हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसका उपाय क्या है, क्या करें? हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मेरी तो ऐसा है, हम सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए।
3: कोसी नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती को सौंपी।

0: अब हम लौटते हैं लक्ष्मी आश्रम की ओर, जहां सुबह सवेरे झोला लेकर बसंती बहन गांव का रुख कर रही हैं। ऐसा करते हुए उन्हें 45 दिन हो चुके हैं। वो रोज सुबह 6 बजे बरासे घाटी के गांव की ओर चल पड़ती हैं। शुरू में कोई उनकी बात को सुनने समझने को तैयार नहीं था। एक दिन बसंती को महिलाओं का एक झुंड मिला। सभी के हाथों में रस्सी और दराती थी। वे सब बहुत तेजी से जंगल की ओर जा रहे थे। बसंती दीदी समझ गई कि ये सब लेसाल गांव की महिलाएं हैं और जंगल में लकड़ी काटने जा रही हैं। बसंती दीदी ने उन्हें पुकारा।
1: अरे कहाँ जा रही हो बहनों? क्या तुम सब लेसाल गांव की हो?
2: हाँ, हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियाँ काटने।
1: बहन जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो कच्ची लकड़ियाँ मत काटना।
3: वो भला क्यों? तुम क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो? अरे हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हाँ
1: मेरे लिए नहीं, अपने कोसी के प्राण बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए।
2: तुम्हारी बात से कोसी के प्राण का क्या रिश्ता?
3: हाँ।
2: हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
3: और क्या
2: है? आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
3: हाँ।
1: आमा मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है। गांव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं। यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूँ।
2: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा, पर कोसी को हम कैसे बचा सकते हैं?
1: आमा इसका जवाब तेरे पास है।
2: मेरे पास?
1: हाँ तेरे पास। आमा तुम इन सबको बताओ कि कोसी नदी बनी कैसे है।
2: कोसी बनी कैसे? ये कैसा सवाल है? क्या तुम नहीं जानती कि हमारे पेनाथ जंगल के बांज बुरांश के घने पेड़ प्राकृतिक जल को संचित करते हैं और उसी से कोसी का जन्म हुआ?
3: और क्या?
1: बिल्कुल ठीक। ऐसे में अगर हम जंगल काटेंगे तो कोसी में पानी घटेगा या बढ़ेगा?
3: घटेगा।
2: अब हमें तुम्हारी बात समझ में आ गई। खाली हमारे समझने से क्या होता है, हम अकेले क्या कर सके हैं?
1: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझा कर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
2: चलो इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
3: अरे चलो चलो बसंती बहन, हमारे गांव चलो
1: चलो
3: चलो
1: चलो।
3: हाँ जल्दी चलो, हम सबको बताते हैं।
0: और इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांव में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सैल, खीराकोटा, कांटली आदि गांवों में

0: अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था, और वहां के लोग अब भी जंगल काट रहे थे। तब बरारो घाटी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं।

0: बसंती बहन और गांव की संकल्प की धनी जुझारू महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लें तो सब कुछ संभव है। उत्तराखंड की धरती ऐसी ही साहसी महिलाओं की धरती रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं बसंती बहन।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: उमंग, ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आपने सुना आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर।

हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में सुनिए आबिदा परवीन के आवाज़ों में ये नगमे।

अबिदा परवीन को अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत में। सुगम संगीत का प्रसारण आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से किया गया। श्रोताओं, अब समय हो चला है लोक संगीत का। आइए आज के लोक संगीत में सुनते हैं प्रभुलाल मालवीय और साथियों के स्वर में ये लोकगीत। इनमें विवाह गीत भी है और देशभक्ति गीत की महक भी। ढोलक पर साथ दे रहे हैं महेश कुलश्रेष्ठ, मजीरा पर प्रमोद कुमार मालवीय, करताल पे हैं नानूराम मालवीय और एक तारा लेकर आए हैं प्रेम नारायण मालवीय, और सहायक कलाकारों में, सहायक गायकों में नयन सिंह चौहान। आइए सुनते हैं इनके सुरों में ये तमाम लोकगीत।

प्रभुलाल मालवीय और साथियों के स्वर में अभी आपने सुने लोकगीत लोक संगीत का ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से।

आज शाम 7:20 पर आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम खेती गृहस्थी को सुनना न भूलिए। विशेष आकर्षणों में हम आपको सुनवाएंगे भेंटवार्ता, खेत और तालाब पर आधारित खेती का वरदान और पानी की बचत, इस विषय पर डॉक्टर नीलम बुनकर की भेंटवार्ता आप सुनेंगे। साथ ही कुछ लोकगीत भी होंगे और लोक संगीत के साथ साथ मंडी भाव और मौसम की जानकारियां भी होगी। तो सुनना न भूलिए खेती गृहस्थी कार्यक्रम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से प्रतिदिन शाम 7:20 पर। आप सुन रहे हैं श्रोताओं मालवा किसान आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। इसे आप न्यूज़ ऑन AIR एंड्रॉयड एप्लीकेशन के माध्यम से भी सुन सकते हैं।

आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से श्रोताओं प्रसारित होने वाले कार्यक्रम मन भावन का आज का प्रसारण समय है रात 10 बजे। फरमाइशी फिल्मी गीतों के को लेकर हाजिर होंगे आपके पत्रों के साथ कार्यक्रम मन भावन में रात 10 बजे। प्रसारण समय याद रखिएगा श्रोताओं।

0: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में समाचारों का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से हैं। ये पुरस्कार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री की तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और पार्श्व गायिका अलका याग्निक को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किए गए। सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए काम करने का आह्वान किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2026 के स्नातक दाखिलों के परिणाम आज घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार सीयूईटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड

0: देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस साल प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार किया। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर्स के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक एलपीजी कैरियर, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजर पाएंगे। कतर में हुए धमाके पर श्री जायसवाल ने बताया कि इस घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई।
1: रास लफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारतीय नौसेना के आधुनिक स्टेल्थ युद्धपोत आईएनएस उदयगिरी और पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के दौरान कल वियतनाम के नारोंग बंदरगाह पहुंचे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच घनिष्ठ और दीर्घकालिक संबंधों तथा बढ़ती हुई समुद्री साझेदारी को दर्शाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप ए में पुर्तगाल का मुकाबला होगा उज़्बेकिस्तान से। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा और वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में कल सुबह 7:30 बजे कोलंबिया का सामना कांगो से होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। श्रोताओं लीजिए सुनिए हमारे कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

कल सुबह की सभा की शुरुआत करेंगे भक्ति संगीत के प्रातःकालीन आयोजन वंदना से। 6:05 पर 6:30 पर लेकर हाजिर होंगे चिंतन नागरिक बोध, इस विषय पर आलेख होगा किशोर श्रीवास का और वाचक स्वर मुकाम सिंह चौहान का। खेती की बातें मनीषा शर्मा से होगी, विषय होगा सोयाबीन में FIR पद्धति से बीजोपचार कैसे करें। प्रसारण समय रहेगा सुबह 6:35।

श्री रामचरित मानस गान के प्रसंग आप सुन सकते हैं सुबह 6:40 पर। आपका पत्र ये कार्यक्रम लेकर आएंगे सुबह 7:20 पर। आपके पत्रों के उत्तर के साथ हाजिर होंगे आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रमुख राजेश।

सुबह 9 बजे लोक संगीत में आप सुनेंगे विष्णु प्रसाद मालवीय और साथियों के स्वर में लोकगीत, और सुगम संगीत में सुबह 9:15 पर मोहम्मद रफी को आप सुन सकते हैं।

सुबह 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पंडित मांगीलाल नाक का गाया राग मधुवंती सुनाया जाएगा। जिले की चिट्ठी होगी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित सुबह 10 बजे। फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन का प्रसारण समय रहेगा सुबह 10:05। संग्रहालय से ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुन सकेंगे दिन में 12:30 बजे। महिला कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा दोपहर 1 बजे और शाम की सभाओं में युववाणी कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे शाम 5 बजे। विशेष आकर्षणों में सुनेंगे आप एक ही फिल्म से कुछ गीत और साथ में कुछ नई जानकारियां। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। सुगम संगीत में मोहम्मद रफी शाम 6:30 पर सुनेंगे आप, और लोक संगीत में विष्णु प्रसाद मालवीय को सुनेंगे आप शाम 6:45 पर। ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे शाम 7:20 पर। अन्य बातों के अतिरिक्त वार्ता के क्रम में आपको सुनवाई जाएंगी आकाशवाणी गांव में ये वार्ता। घरेलू व्यंजनों के बारे में बातें होंगी और घरेलू नुस्खों के साथ साथ सुनवाए जाएंगे आपको कुछ लोकगीत। दिल ने फिर याद किया ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात 8:15 पर। चित्रगीत कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे रात 9:15 पर, और रूपक रात 10 बजे आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। बहती रहे नदियां चंबल की नदियां, आलेख व्योमकेश राजपुरोहित का होगा और प्रस्तुतकर्ता बीना पी शर्मा और संजीव मालवीय रहेंगे। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचारों का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए 65 पद्म पुरस्कार। प्रदेश के भगवान दास रायकवार को मरणोपरांत और मोहन नागर को समाज सेवा के क्षेत्र में मिला पद्मश्री सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएएस प्रशिक्षु अधिकारियों को दिया नागरिक देवो भव का मंत्र। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 5,960 करोड़ रूपये की योजनाओं को मिली मंजूरी। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। बोले, धारा 370 हटाकर साकार हुआ एक विधान का सपना। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में 2026 वर्ष के लिए 65 पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इनमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण, 56 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में पूर्व केंद्रीय मंत्री शिबू सोरेन, टेनिस स्टार विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और गायिका अलका याग्निक का नाम शामिल रहा। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के समाजसेवी मोहन नागर को समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया। वहीं प्रदेश के बुंदेली मार्शल आर्ट के जनक भगवान दास रायकवार को मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान दिया गया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बधाई देते हुए कहा कि समाज सेवा एवं खेल जगत में इनके उल्लेखनीय योगदान ने न केवल मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है, बल्कि समाज और युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस 2024 बैच के 183 अधिकारी प्रशिक्षुओं से संवाद किया। उन्होंने युवा अधिकारियों से विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने के लिए राष्ट्र निर्माण में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ

0: योगदान देने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में श्री मोदी ने युवा अधिकारियों को नागरिक देवो भाव का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि हर फाइल के पीछे लाखों लोगों की आकांक्षाएं और समस्याएं जुड़ी होती हैं, इसलिए शासन को संवेदनशील, जवाबदेह और समावेशी बनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 5,960 करोड़ रूपये की योजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 वर्षों तक जारी रखने के लिए करीब 1,740 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में 225 शासकीय माध्यमिक शालाओं को हाईस्कूल और 300 हाईस्कूलों को हायर सेकेंडरी में उन्नयन करने की योजना को सैद्धांतिक स्वीकृति मिली, जिस पर 635 करोड़ 24 लाख रूपये खर्च होंगे।
1: सुजालपुर में लॉ कॉलेज के लिए एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित करना तथा उसके लिए पदों की स्वीकृति दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग में अगले 3 वर्षों में 315 स्कूलों को हाईस्कूल में उन्नत करना तथा 214 हायर सेकेंडरी के नए स्कूलों को उन्नत करने का कार्यक्रम डिसाइड हुआ है, जो 3 वर्षों के अंदर इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा।
0: इसके अलावा किसानों को 0% ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण देने की नई शर्तों को मंजूरी दी गई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभावों से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। उन्होंने बताया कि देश में अब तक लगभग 43% कम बारिश हुई है और लगभग 315 जिले सामान्य से कम बारिश से प्रभावित हो सकते हैं, जिनमें 111 जिले उच्च प्राथमिकता वाले हैं।
2: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है 2 जुलाई तक के सप्ताह में कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। हम जो प्रभावित जिले कितने हो सकते हैं उसका आकलन भी किया गया है, और अब तक जो संभावना है 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आज प्रदेश सहित पूरे देश में भाजपा द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने डॉ मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ मुखर्जी का सपना एक देश एक प्रधान और एक विधान था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धारा 370 हटाकर साकार किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार आगामी मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिसके लिए प्रदेश भर से 10 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने प्रदेश कार्य समिति की घोषणा कर दी है, जिसमें 106 सदस्यों को शामिल किया गया है और 41 नेताओं को स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। कार्य समिति में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और डॉ वीरेंद्र कुमार के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा को जगह मिली है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के स्नातक दाखिलों के परिणाम घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के मुताबिक इस वर्ष परीक्षा में 15 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 11 लाख से ज्यादा उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। भोपाल के आचारपुरा स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में आज 5 दिवसीय आदिरंग शिल्पकार महोत्सव का समापन हुआ। समापन समारोह में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव शामिल हुए और उन्होंने जनजातीय शिल्पकारों द्वारा विकसित नवाचारपूर्ण उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन कर शिल्पकारों से संवाद किया। महोत्सव में प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए 140 से अधिक जनजातीय शिल्पकारों ने अपनी पारंपरिक कला और हस्तनिर्मित उत्पादों का प्रदर्शन किया। प्रदेश की पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने आज मंत्रालय में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। मंत्री ने निर्माण कार्यों में देरी और लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए लापरवाह ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनसुविधा से जुड़े विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन

ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के तहत कॉलेज लेवल काउंसलिंग राउंड के महाविद्यालय आवंटन जारी कर दिए हैं। इस राउंड में प्रदेश के 1,29,265 विद्यार्थियों को विभिन्न महाविद्यालयों में सीट आवंटित की गई है, जिनमें 94,703 स्नातक और 34,562 स्नातकोत्तर विद्यार्थी शामिल हैं। विभाग ने विद्यार्थियों से 30 जून तक प्रवेश शुल्क जमा करने का आग्रह किया है। भोपाल में अवैध कफ सिरप निर्माण और सप्लाई नेटवर्क के मुख्य मास्टरमाइंड राहुल कुशवाहा उर्फ सलमान को एसटीएफ ने तिरुवनंतपुरम से गिरफ्तार किया है। लंबे समय से फरार आरोपी वहां पहचान छिपाकर रह रहा था, जिसे तकनीकी निगरानी और खुफिया इनपुट के आधार पर पकड़ा गया। भोपाल लाकर विशेष न्यायाधीश डॉ मुकेश मालिक की अदालत में पेश किए जाने पर उसे 27 जून तक रिमांड पर भेजा गया है। अब बात करते हैं मौसम की। मानसून की रफ्तार धीमी होने से प्रदेश में सामान्य से 52% कम बारिश दर्ज की गई। हालांकि आज बड़वानी, खरगोन, नर्मदापुरम और धार जिले में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने जबलपुर, मंडला, दमोह और उमरिया में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश के अनेक जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी के कृषि विज्ञान केंद्र में खरीफ 2026 वर्ष के तहत सोयाबीन की उन्नत खेती पर प्रशिक्षण सह संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सागर की पुलिस प्रशिक्षणशाला पीटीएस में नवारक्षकों के बुनियादी प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ हुआ। राजगढ़ के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में आईटीआई और 12वीं उत्तीर्ण छात्रों के लिए द्वितीय वर्ष में सीधे प्रवेश के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। कटनी कलेक्टर ने अस्पतालों में पर्याप्त एंटीवेनम इंजेक्शन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अपील की है कि सांप काटने पर झाड़फूंक के बजाय अस्पतालों में इलाज कराएं। अशोकनगर में जनसुनवाई में कलेक्टर साकेत मालवीय ने आम जनता की समस्याओं और शिकायतों के निराकरण के निर्देश दिए। नर्मदापुरम की ग्राम पंचायत उमरिया में आयोजित जन कल्याण शिविर में विधायक प्रेम शंकर वर्मा ने ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण कराया। और किसान कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत मुख्यमंत्री किसान कल्याण डैशबोर्ड की मई 2026 की रैंकिंग में झाबुआ जिला प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए 65 पद्म पुरस्कार। प्रदेश के भगवान दास रायकवार को मरणोपरांत और मोहन नागर को समाज सेवा के क्षेत्र में मिला पद्मश्री सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएएस प्रशिक्षु अधिकारियों को दिया नागरिक देवो भव का मंत्र। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 5,960 करोड़ की योजनाओं को मिली मंजूरी और डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाला सगला किसान भाई बहनों के स्मिता की राम राम। जब भी मनक प्रकृति का साथ है कई खिलवाड़ करे तो प्रकृति उकी सजा जरूर देवे है। मनक ना ज्यादा कमाई अन अपना फायदा करना का साथ की सोचे अन बिना सोचे समझे कोई भी काम करी दे उ कुछ परिणाम है कि आज हमारे यहाँ कहीं तो पानी नहीं पड़ी रियो है और कहीं पड़ी रियो है तो इतरो पड़े कि बाढ़ ही जाए और मनक ना के नुकसान ही रियो है। इना कामना में भी यो भी आवे कि हम हमारी जमीन को ख्याल रखे बिना रासायनिक उर्वरक ना को उपयोग करा हाँ, कीटनाशक ना खा हाँ, जिससे कि जमीन फसल अन मनक सगला सभी के नुकसान होए। तो भाई बहन और इन सब से बचाव का सारू आज अपन बात करा जैविक खेती की या कृषि की वा विधि है जिका में रासायनिक उर्वरक कीटनाशक अन कीटनाशक ना को इस्तेमाल नहीं करे बिल्कुल भी नहीं करे और इकी जगह भूमि की उपजाऊ क्षमता बनाए रखना का सारू प्राकृतिक खाद जैसे कि गोबर है नहीं कंपोस्ट खाद है हरी खाद है जैविक कीटनाशक है इन सब को प्रयोग करे है जिका से कि हमारी जो जमीन है वह उपजाऊ बनी रहे। भाई बहनों जैविक खेती जो है उको मुख्य उद्देश्य फसल चक्र अन जैविक कचरा को पुनर्चक्रण है और इका द्वारा ये मिट्टी की उर्वरता के प्राकृतिक रूप से बढ़ावे है। हानिकारक रसायन ना जो रेवे उनकी बजाय नीम को अर्क या फिर गोमूत्र अणमित्र कीटनाशक मतलब कीटना ऐसा कीटना जो कि दूसरा कीटना खाई के और हमारी भूमि के उपजाऊ करे है उको इस्तेमाल करी ने और उससे भी हम कीटना को बचाव करी सका हाँ। बहनों और या पर्यावरण के दूषित करे बिना अपन दीर्घकालीन अन स्थिर उत्पादन हासिल करना का सारू जैविक खेती पे जोर देनो घणो जरूरी है। कभी भी हम देखा कि इससे जो फसल को उत्पादन होए है वो भी बहुत अच्छो स्वादिष्ट भी रहे खाद्य पदार्थ रसायन मुक्त भी रहे और मानव अन पशु ना का स्वास्थ्य का सारू भी अत्यधिक फायदेमंद रहे। तो हम सोच ही रहा होगा पशु ना का तो भाई अपन चरी भी तो खिलावा और उकावे भी कभी रासायनिक खाद रासायनिक कीटनाशक रहे तो हमारा पशु ना भी कभी उक पे फर्क पड़े है नहीं। तो यह चीज ना बहुत कभी हम जैविक खेती को प्रयोग करा तो उससे हम कोसो दूर रह सका हाँ और साथ महंगा हम भी महंगा रसायन जो बाहर का डालता था कीटनाशक डालता था इन सब से पे हमारी निर्भरता खत्म हो जाएगी। जैविक खेती में हम हमारा घर में हमारा जो पशुधन का पाला हाँ उससे बनी हुई खाद है नहीं झाड़ पेड़ से पैदाना से बनी हो वो रासायनिक कीटनाशक की जगह झाड़ पेड़ पौधाना से बने हो कीटनाशक ये सब डालेंगा तो हम एक ही बाहर पे वाली पे निर्भर नहीं रहेंगा और उका से हमारे लागत में भी कमी आवेगी और जब लागत में कमी आवेगी तो स्वाभाविक है कि हमारो लाभ बढ़ेगा। तो भाई बहन और जैविक खेती ऐसो नहीं है कि हमारे शरीर के नुकसान करे और फायदों करवाए साथ वह हमारे धन के भी हमारी कमाई में भी फायदों करे है और हमारे नुकसान से बचावे है। तब से अपन बात अपन और भी करांगा अभी अपन जैसे कि भई शादी ब्याहना शुरू हो गया है तो क्यों नहीं अपन सुना सीमा मिश्रा को गायो भात गीत।

0: भेण और हमने यो भात गीत सुनियो जी के गायो तो सीमा मिश्रा अना साथीना ने। अब इका साथे ज अपन एक नई नई जानकारी ना नई नई अपन ऐसी बात ना करा हाँ और बात सुना भी हाँ जी का में हमारा खेती से संबंधित नरा सारी हमारे फायदों भी हुए हैं। तो आज अपन जाना कि खेत तालाब खेती को वरदान और पानी की बचत या इका बारा में हमारे जानकारी दी रही है डॉक्टर नीलम बुनकर सहायक प्राध्यापक राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर से और उनसे बात कर रही है तुलसा। तो चलो सुनाया भेंटवार्ता।
1: किसान भाई नोनी राम राम। किसान भाई नोनी देखो पानी की जरूरत हम सबको पड़े न, बिना पानी को तो कोई भी काम नहीं हो सकते न हमारी खेती बाड़ी को काम हो चाहे घर गृहस्थी का काम हो, सभी काम में हमको पानी की बहुत जरूरत पड़े। तो हमारी खेती में हम तालाब कसा बढ़ी सका, खेती को वरदान रहे तालाब में पानी की बचत कैसे करी सका, इना सब बारा में जानकारी देने के लिए आज हमारा साथ छे डॉक्टर नीलम बुनकर सहायक प्राध्यापक कृषि महाविद्यालय इंदौर राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर से। तो डॉक्टर नीलम बुनकर जी आपको कार्यक्रम में स्वागत छे। राम राम।
2: राम राम मैडम।
1: डॉक्टर नीलम जी जसो की अभी हमने बात करी कि खेती में खेती को चाहे कहीं पर भी पानी तो बहुत जरूरी छे, तो खेत को तालाब किस प्रकार से बनाई सका, नौका पानी की बचत किस प्रकार से करी सका, तो सबसे पहले तो आप हमारे किसान भाई ने ये बताओ कि खेत तालाब से काई मतलब छे, यानी खेत तालाब काई हो।
2: मैं किसान भाइयों का पहले तो स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। मैडम जैसे आपने पूछा कि जल संचयन होता क्या है, खेत तालाब से तात्पर्य क्या है।
1: हाँ हाँ।
2: खेत तालाब ये जल संचयन की प्रक्रिया है, इसको हम फार्म पॉन्ड भी कहते हैं। फार्म पॉन्ड का मतलब है अपने ही खेत के निचले हिस्से में छोटा तालाब बनाना।
1: हाँ हाँ।
2: जो कि नियंत्रित कर सके ताकि जो रवि की फसलें आती हैं उसमें ये उपयोगी तरीके से फसलों को उपयोगिता पहुंचा सके। इसके कुछ महत्वपूर्ण उपयोग बताना चाहूंगी। इसके तीन बड़े फायदे हैं। पहला फायदा कि सूखे से बचाव, यानी कि जुलाई अगस्त में जब बारिश कम होती है तब फसल सूख जाती है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि भूजल का रिचार्ज करना। भूजल स्तर जो आज हम सुनते आ रहे हैं विश्व स्तर पर या भारत स्तर पर कि भूजल स्तर घट रहा है, उसको भी ये बढ़ाने में मदद करता है। तीसरा सबसे बड़ा फायदा है ये अतिरिक्त कमाई भी देता है। जो हमारा खेत तालाब है उसमें मछली पालन, बतख का पालन, कुछ सब्जियां भी लगाकर अतिरिक्त कमाई किसान भाई कर सकते हैं।
1: अच्छा, जैसा कि खेत तालाब के बारे में आपने जानकारी दी कि अपन पानी की बचत करी सकान, तो अभी जो पानी नहीं आएगा तो उस समय अपन ये पानी को उपयोग करी सकान। तो खेत तालाब बनाते समय हमका किन किन बातों को ध्यान रखनी चाहिए?
2: मैम सबसे पहले बताना चाहूंगी कि फार्म पॉन्ड बनाते वक्त या खेत तालाब बनाते वक्त हम कुछ बहुमूल्य बिंदुओं का ध्यान रखते हैं। उसमें सबसे पहले हम जगह का चयन करते वक्त खेत का सबसे निचला कोना चुनिए, जहां बरसात का पानी ढलान की वजह से आता हो। उसमें किसी भी तरीके की अतिरिक्त हमें और भी जरूरतों का इस्तेमाल हम कर सके। दूसरा है मिट्टी किस प्रकार की है, क्योंकि जिस तरीके की मिट्टी होगी उसी से उसका इन्फिल्ट्रेशन बढ़ता और घटता रहता है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका ढलान। किनारों को लगभग 1:1 में अनुपात में हम ढाल देते हैं, नहीं तो मिट्टी धस जाती है और पानी भरने और निकलने के लिए हम इनपुट और आउटपुट पाइप भी जरूर लगाएं। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखने वाला है कि इसका साइज क्या होना चाहिए। लगभग

0: एक एकड़ खेत के लिए 30 लंबाई, 30 चौड़ाई और 10 गहराई, 10 फीट गहराई का हम फार्म पॉन्ड बना सकते हैं, जिसमें कि करीब 2 लाख लीटर पानी जमा होगा। अगर हम क्षेत्र की बात करें, तो अगर हम इंदौर की बात करते हैं, तो इंदौर की जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है, जिसमें कि सिल्ट का डिपोजिशन हो जाता है, कि मिट्टी बार बार कट कट के आती है और वहां पे आके जमा हो जाती है। तो ये सबसे बड़ी परेशानी देखी गई है इसमें। तो इसके लिए हमें जो कुछ मुख्य बिंदु है वो ध्यान देने पड़ेंगे बनाते वक्त। पहला कि इनलेट, जो जहां से पानी सबसे पहले अंदर आ रहा है फार्म पॉन्ड में, उस जगह पे हम सिल्ट ट्रैप बनवा दें, ताकि जो क्योंकि मालवा में बरसात बहुत ज्यादा होती है, और जब बारिश बहुत ज्यादा होती है तो सबसे पहले जो उपयोगी स्तर की मिट्टी होती है वो बहकर चली आती है और फार्म पॉन्ड में भरने लग जाती है। इसीलिए सबसे जो शुरू वाला, जो फार्म पॉन्ड के पहले वाला जो स्ट्रक्चर कहलाता है, उसमें हम 6 बाय 6 का छोटा सा गड्ढा बना दें, ताकि ऊपर की जो मिट्टी बहकर आ रही है वो वहीं पे रुक जाए। दूसरी, ये मालवा क्षेत्र के लिए मैं बता रही हूँ, दूसरी चीजें हैं कि ढलान को पक्की कर दें,
1: अच्छा
0: किनारों को लगभग 1.5 1:1 की ढाल दे दें, ताकि या फिर किनारे में आप खस या नेपियर घास भी लगा सकते हैं, जो कि मिट्टी के कटाव को रोकती है।
1: अच्छा, ये तो आपने बताया कि खेत तालाब बनाते समय हमको किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे आपने कहा कि मालवा क्षेत्र का लिए, तो सिर्फ मालवा में कि निमाड़ में भी अपन उसको खेत तालाब बनी सकान कि ओका लिए कोई अलग बिंदु छे कहीं?
0: नहीं, ये बिंदु मैंने इसलिए मैम हाईलाइट किया, या फिर मैंने बहुत ज्यादा इसको फोकस किया है कि यहाँ की जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है। वो क्या करती है, वो बहुत रुकती नहीं है, जल्दी ही बह के आ जाती। की भी मिट्टी, जो हमारे मध्य प्रदेश की जो मिट्टी है वो ज्यादातर एरिया में काली मिट्टी होती है। तो हम
1: अच्छा
0: ये जो डिजाइन, ये जो भी मैं आपको मुख्य बिंदु बता रही हूँ, या ढलान के जो भी अनुपात बता रही है, हम हर जगह लगा सकते हैं।
1: अच्छा तो ये जैसे खेत तालाब बनाना में खर्चो कितो लगा, न सरकार द्वारा भी कोई अनुदान मिला जी काम खेत तालाब बनाना में?
0: जी बिल्कुल मैम, मिलता है लगभग 20 से 25 हजार रुपए, जब हम जेसीबी से हम फार्म पॉन्ड की खुदाई करवाते हैं उसमें लगता है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार की बलराम तालाब योजना में 40 हजार से 1 लाख तक का अनुदान मिल जाता है। और अगर हम मैं थोड़ा सा बलराम तालाब योजना को और भी संक्षिप्त में थोड़ा बताना, कि इसमें बताया जाता है कि जो लंबाई होती है वो 30, चौड़ाई 30 और गहराई 12 फीट से लेकर 100 फीट, 100 फीट लंबाई, 100 फीट चौड़ाई और 10 फीट गहराई तक का साइज बनाया जा सकता है। ये बलराम तालाब योजना की योजना में आता है कि इतने साइज का हम फार्म पॉन्ड बना सकते हैं। और इसकी पात्रता के लिए, लेकिन जो शर्तें सरकार ने रखी हैं, वो पहली शर्त ये है कि किसान भाइयों की खुद की जमीन होना चाहिए, और लगभग वो 1 हेक्टेयर तक तो होना ही चाहिए, इससे कम होगी तो उनको अनुदान नहीं मिलेगा। दूसरी
1: मतलब
0: शर्त,
1: जैसो जो भी किसान भाई का अपना खेत में तालाब बनाऊ तो ओका लिए
0: जी
1: ओका पास खुद की जमीन होनी चाहिए, ये बात
0: बिल्कुल,
1: ध्यान रखना पड़ेगा।
0: ये बात ध्यान रखने लायक है।
1: अच्छा
0: दूसरा दूसरा इसका महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि पहले उन्होंने कभी लाभ ना लिया हो। किसान को एक ही तालाब पर अनुदान मिलता है, दूसरे
1: अच्छा
0: तालाब अगर उसको बनाना है तो अनुदान नहीं मिलेगा। तीसरी तीसरे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उनको जगह, जो वो सिलेक्ट कर रहे हैं, वो जगह कहाँ है, तो खेत का निचला हिस्सा जहाँ बरसात का पानी आता हो,
1: हाँ हाँ
0: और वो लगभग 50 मीटर दूर हो जहाँ पे हमें बनाना है खेत तालाब। इस योजना को मध्य प्रदेश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। ये
1: अच्छा
0: बहुत ही लोकप्रिय जल संरक्षण योजना है, जो कि 2007 में शुरू की गई थी।
1: तो ये तो आपने बताया कि कितो खर्चो लगा, न सरकार द्वारा अनुदान भी मिला, न
0: जी
1: जैसो कई अपना जो भी किसान भाई से उनका अपना खेत में ही तालाब बनानु, तो एका
0: जी
1: लिए अपना जो किसान भाई से वो आवेदन कहाँ करी सकज?
0: आवेदन के लिए किसान ग्राम पंचायत, ब्लॉक या उद्यानिकी विभाग कार्यालय, या फिर एमपी ऑनलाइन कियोस्क में फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो जानकारी मैं देना चाहूंगी, इसमें कागज जो कभी कभी किसान भाइयों के पास नहीं मिलते हैं,
1: हाँ
0: वो
1: हाँ
0: ये है कि उनको उनको रखना पड़ेगा, अगर वो अगर इसमें हम आवेदन करने जा रहे हैं वो, तो उनको खसरा खतौनी बुक रखना पड़ेगा। दूसरा, आधार कार्ड भी चाहिए, बैंक की पासबुक चाहिए, पासपोर्ट फोटो और शपथ पत्र भी लगेगा। इसके लिए सरकार द्वारा कुछ प्रक्रिया की जाती है, जैसे कि किसान जैसे ही फार्म जमा करते हैं तो सबसे पहले पटवारी और उद्यानिकी अधिकारी खेत का निरीक्षण करते हैं कि किसान का ही खेत है वो कि नहीं है, उनके दस्तावेज जो है वो पूरे हैं कि नहीं है। ये सारे के सारे निरीक्षण जब पटवारी और उद्यानिकी अधिकारी कर लेता है, फिर स्वीकृत होने के बाद 50% की जो राशि है, जो अनुदान सरकार देती है, वो उनके खाते में आएगी। दूसरा, जब खुदाई पूरी हो जाती है तो उनको जियो टैग फोटो लेनी पड़ेगी और वो देनी पड़ेगी ताकि उनकी आगे की जो प्रक्रिया है वो चालू रहे, और बचा हुआ जो भी राशि है वो उनके अकाउंट में चला जाएगा। इसके लिए समय की अवधि का उनको ध्यान देना पड़ेगा कि मानसून से पहले वो फॉर्म को जमा कर दे ताकि मई जून में वो पूरा जो भी उनका जितनी भी प्रक्रिया चलती है वो हो जाए और जुलाई में फार्म की खुदाई हो जाए और पहली बारिश के पहले वो पानी को रोक सके। तो ये एक पूरी प्रक्रिया चलती है कि इतने तक हमें रोकना है तो बारिश के पहले तक वो बन के तैयार हो जाना चाहिए।
1: जैसा कि आपने बताया कि आवेदन हमारा कौन कौन सा कागज होना चाहिए, किस प्रकार से आवेदन करी सकल न
0: जी
1: खेत तालाब को मुख्य उद्देश्य का ही रह जाएगा मई सब बात का पीछे।
0: मैम, सबसे जो कहना चाहिए इसका जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि ये जीवनदायी सिंचाई देता है। मतलब मानसून में पानी जमा कर लेते हैं और सूखे वाले क्षेत्र में जब भी फसल को जरूरत होती है उसकी जरूरत के हिसाब से पानी सिंचाई के लिए दे दिया जाता है। कम से कम 1 से 2 ये जीवनदायी सिंचाई दे सकता है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण बिंदु ये है, इसका उद्देश्य ये है कि ये भूजल रिचार्ज भी करता है, जो मैंने पहले भी बताया। का पानी धीरे धीरे जमीन में जाता है, रिस रिस कर जाता है और वहां जाके वो संचयन हो जाता है उसका, और जो हमारा वाटर का स्तर है वो भी बढ़ता चला जाता है। तीसरा है, सतही वाटर को रोकता है ये, तो जो खेत में जो उपजाऊ मिट्टी रहती है वो बहकर ना जाए, क्योंकि पानी का बहाव जैसे ही बढ़ेगा खेत की मिट्टी बहती चली जाएगी, इसीलिए सतही बहाव को भी रोकता है, तो खेत की उपजाऊ मिट्टी वहीं की वहीं बनी रहती है और खेत भी हमारे उपजाऊ रहते हैं। चौथा है कि अतिरिक्त आमदनी हम इससे कर सकते हैं, मछली पालन हो गया, सिंघाड़ा का उत्पादन हो गया, बतख पालन है और इत्यादि उपयोग हम इससे कर सकते हैं। हमने वो अपने खेत में रोक लिया, हम इसको आसपास के घरों के पास भी बना सकते, छोटे खेत तालाब भी बनाया जा सकता है, पर हम खेत तालाब कह रहे हैं तो खेतों के लिए ज्यादा उपयोगी होता है ये। पांचवा है कि पशु या घरेलू उपयोग में भी ले सकते, उनकी जरूरत के हिसाब से है वो हमारा, और पहले से ही संचयन हो चुका है उसकी, जब भी जरूरत है तो हम पशुओं और घरेलू उपयोग के लिए भी ले सकते। जो महत्वपूर्ण बिंदु मैं यहाँ पे आपको बार फोकस करना चाहती वो है पर्यावरण का संरक्षण। पर्यावरण का संरक्षण क्योंकि मिट्टी का कटाव कम होता है, जैसे ही हम खेत तालाब बनाते हैं तो भूमि की उर्वरता बनी रहती है, और भूमि की उर्वरता बनी रहेगी तो मिट्टी और जल संरक्षण भी बना ही रहेगा।
1: बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि किस प्रकार हमारा किसान भाई अपना खेत में तालाब बनाड़ी न पानी को संचय कर सकल न आगे पानी को उपयोग कर सकल। तो डॉक्टर नीलम बुनकर, आपने हमारा कार्यक्रम का माध्यम से किसान भाई ने कितनी अच्छी जानकारी दी न, जो हमारा किसान भाई छे इन्हीं चर्चा को लाभ जरूर लेगा। तो इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
2: हमने यह भेंट वार्ता सुनी जी का, मैं खेत तालाब कैसे बनानो, उका सारू हमारे सरकार कैसे सहयोग करे है और उके कितरी कितरो बड़ोपन बनाई सका हाँ, या सगली जानकारी हमारे घनी अच्छी तरीके से डॉक्टर नीलम बुनकर सहायक प्राध्यापक कृषि महाविद्यालय इंदौर और राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विद्यालय विश्वविद्यालय ग्वालियर इनने हमारे दी और उनसे बात करी दी थी तुलसा। अब बातचीत करता करता कदी हम मनोरंजन भी करता जावा तो घणो अच्छो लगे, पर आज है मंगलवार को दंड तो हमारे राम जी के तो भजनोच पड़े और भजा झा, तो चलो राम जी को भजन सुना कालू राम बामनिया अन मंडली को गायो।

0: हमने कालू राम बामनिया को गायो यो राम भजन सुनियो। अब राममय पूरो माहौल तो हुई गयो है। अब इका साथे ज हमारी जो सरकार है वह जो श्रम रोजगार मंत्रालय जो है भी ये सब कहीं ना कहीं जो हमारा मजदूर ना है मजदूर वर्ग का हमारा भाई बहन और है उनका सारू नरी सारी छात्रवृत्ति की योजना उनका बच्चा ना का सारू और ऐसी नरी सारा ऐसा काम करे है पर कभी कभी कहीं होए कि हमारे इनकी जानकारी नहीं होवे और हम इको लाभ नहीं ली सका। हाँ तो आज अपन भारत सरकार श्रम अन रोजगार मंत्रालय द्वारा बीड़ी अन खदान श्रमिक ना का बच्चा का सारू जो छात्रवृत्ति योजना है उका बारा में आज अपन जानकारी सुना श्री नवीन वैद्य कल्याण आयुक्त श्रम कल्याण संगठन मध्य प्रदेश से जिनसे की बातचीत करी रिया है कार्यक्रम प्रमुख राजेश।
1: श्रोताओं नमस्कार, आज हम चर्चा करेंगे हमारे जो मजदूर बीड़ी उद्योग से जुड़े हुए हैं या खदान में जो जुड़े हुए हैं उनके जो बच्चे हैं उसके लिए भारत सरकार

0: श्रम रोजगार मंत्रालय, श्रम कल्याण संगठन द्वारा जो छात्रवृत्ति योजनाएं जो चलाई जा रही है, इसके बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं श्री नवीन वैद्य, कल्याण आयुक्त, श्रम कल्याण संगठन मध्य प्रदेश परिक्षेत्र। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार।
1: नमस्कार, धन्यवाद।
0: सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जिनका मैंने जिक्र किया, जो बीड़ी उद्योग से जुड़े हुए हैं, जो खादान से जुड़े हुए हैं, उनके बच्चे के लिए जो छात्रवृत्ति जो योजनाएं हैं वे क्या हैं, विस्तृत रूप से इनके जानकारी दीजिए।
1: मैं आकाशवाणी के माध्यम से सभी बीड़ी एवं खदान श्रमिक भाइयों और बहनों को नमस्कार कहना चाहता हूँ। भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम कल्याण संगठन इन श्रमिकों के लिए एक छात्रवृत्ति योजना संचालित करता है। इस योजना का उद्देश्य है कि श्रमिक परिवारों के बच्चे पढ़ाई बीच में ना छोड़ें और उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकें। इस योजना के तहत कक्षा एक से लेकर तो प्रोफेशनल कोर्सेस तक प्रतिवर्ष 1,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति बीड़ी श्रमिकों और खदान श्रमिकों के बच्चों को दी जाती है।
0: देखिए, इन बच्चों को कल्याण करने के लिए और समाज में ये भी एक उच्चतम शिखर तक पहुंच सके, हमारी सरकार जो है इस पर काफी ध्यान दे रही है।
1: जी जी,
0: हम जानना चाहेंगे कि इस योजना के तहत जो है विभिन्न कक्षा के जो विद्यार्थी हैं इनको कितना कितना मिलती है।
1: जी जी, जैसे मैंने आपको बताया है कि जो एक 1,000 से लेकर 25,000 तक की प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति योजना है, इसको यदि अपन इसको वर्गीकृत करें तो कक्षा एक से लेकर 4 तक 1,000 रुपये प्रतिवर्ष, कक्षा 5 से लेकर 8 तक 1,500 रुपये प्रतिवर्ष, कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों को 2,000 रुपये प्रतिवर्ष, कक्षा 11 और 12वीं के लिए 3,000 रुपये प्रतिवर्ष, डिप्लोमा, ITI और स्नातक में जो बच्चे अध्ययन कर रहे हैं उनको 6,000 रुपये प्रतिवर्ष, और साथ ही जैसे प्रोफेशनल कोर्स, जैसे मैंने बताया आपको कि यदि कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है या MBBS कर रहा है तो उन बच्चों को 25,000 रुपये प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति भारत सरकार प्रदान करती है,
0: ताकि बीच में पढ़ाई नहीं छोड़ पाए।
1: बिल्कुल जी जी,
0: हम आपसे जानना चाहेंगे क्या एकेडमिक ईयर जो 2026-27 में योजना के प्रावधान में कोई बदलाव आया है क्या?
1: जी, इस बार पहले यह हुआ करता था कि जो भी मेधावी छात्र बच्चों को एक ही छात्रवृत्ति मिलती थी, पर इस बार भारत सरकार ने इस योजना के प्रावधान में बदलाव किया है कि मेधावी जो छात्र हैं उनके साथ साथ उनको इस योजना के अंतर्गत जो बीड़ी श्रमिक हैं उनके बच्चों या खदान श्रमिक हैं वो अध्ययनरत कर रहे हैं तो उनको भी इस योजना की भी छात्रवृत्ति मिल सके, यानी कि मेधावी वाली छात्रवृत्ति और बीड़ी श्रमिक वाली छात्रवृत्ति, दोनों ही छात्रवृत्ति बच्चों को प्रदान की जाएगी।
0: जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आवेदन जो करने की जो प्रक्रिया है ये क्या है, इसको थोड़ा विस्तार से बताएं।
1: इसमें इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए जो भी आवेदक है उसको एक डेडिकेटेड पोर्टल है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, उस पर लॉगिन करके ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। इसके लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज हैं वो अपने उनको अपलोड करना पड़ता है, और स्कूल और कॉलेज जहाँ से वो पढ़ रहा है, जिस कॉलेज या स्कूल में वो पढ़ रहा है, वो वहाँ के जो नोडल ऑफिसर्स हैं वो उस आवेदन को सत्यापित करते हैं।
0: जी, आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू की गई है और इसकी अंतिम तिथि क्या है?
1: यह योजना ऑलरेडी चालू हो चुकी है। इस योजना में आवेदन की प्रक्रिया 1 जून 2026 से प्रारंभ हो चुकी है। कक्षा एक से लेकर तो 10 तक के विद्यार्थियों के लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 है, जबकि कक्षा 11 से उच्च शिक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है।
0: एक बार और बता दें इसे।
1: जी जी बिल्कुल, जो कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थी हैं जिसे उस योजना के अंतर्गत यदि बच्चा आवेदन करता है तो उसके लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 है, और कक्षा 11 से उच्च शिक्षा में यदि कोई बच्चा अध्ययन कर रहा है तो उसकी अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है।
0: जी, इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता क्या है?
1: इस योजना के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है जी आपका। ये सभी वैध परिचय पत्र धारक यानी बीड़ी तथा खदान श्रमिक जिनके बच्चे किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या महाविद्यालय में कक्षा 1 से उच्च शिक्षा तक अध्ययनरत है, इस योजना के लाभ लेने के लिए पात्र है।
0: जी, आवेदन के लिए किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
1: ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मैं सभी बच्चों का या जो भी इस वार्ता को सुन रहे हैं मैं उनका ध्यान इसकी ओर दिलाना चाहूंगा कि वो जब भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करें तो सबसे पहले श्रमिक का परिचय पत्र, खदान श्रमिक है यदि तो वो फॉर्म बी की रजिस्टर नंबर होता है उसको उसे अपलोड करना पड़ेगा, विद्यार्थी का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और पिछले उत्तीर्ण कक्षा की अंक सूची, ये एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है जो उसे अपने आवेदन जब वो ऑनलाइन कर रहा है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसे अपलोड करना होते हैं
0: जी। इसके अलावा यह जो छात्रवृत्ति है हर साल मिल सकती है क्या?
1: जी, यदि विद्यार्थी अगले वर्ष भी पढ़ाई जारी रखता है तो हर साल नवीनीकरण करना है, उसे पंजीयन नहीं कराना है। यदि वर्ष आज जैसे बच्चा कोई जो है छठी कक्षा में पढ़ रहा है और वो छठी की भी उसको छात्रवृत्ति मिली है और यदि वो सातवीं में अब पहुंच गया है तो उसके लिए उसको सिर्फ आवेदन का नवीनीकरण करना है, उस समय उसको पंजीयन की आवश्यकता नहीं होती है
0: जी। और योजना का लाभ जो है लाभार्थियों तक कैसे पहुंचता है?
1: जी, ये इसमें पूरी मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जो भी बच्चे हैं वो उनके बैंक खाते में DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए जो है ये छात्रवृत्ति की राशि प्रेषित की जाती है। मैं ये बताना चाहूँगा कि बच्चे जब भी अपना अकाउंट ओपन कराएं किसी बैंक में तो वो अपना नाम और अपने माता पिता के नाम से संयुक्त खाता खुलवाएं और KYC अपनी पूरी अपडेट करें और उसको आधार से जरूर लिंक कराएं, क्योंकि ये DBT जो पैसा ट्रांसफर होता है DBT के माध्यम से वो आपके ऑनलाइन डायरेक्ट आता है, तो ये उसमें अनिवार्य है कि वो उसको अपडेट रखे।
0: अगर कोई लाभार्थी आवेदन में गलती कर दे तो क्या सुधार संभव है?
1: जी जी बिल्कुल जी, स्कूल या नोडल अधिकारी के माध्यम से एक निश्चित समय सीमा के भीतर ये सुधार की सुविधा भारत सरकार ने इस पोर्टल पर दी हुई है, इस पोर्टल से सुधार हो सकता है
0: जी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों से आप क्या अपेक्षा करते हैं?
1: मैं विविध भारती के माध्यम से शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों विशेषकर जिला शिक्षा अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के सभी शिक्षण संस्थाओं में इस योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करें, जानकारी भिजवाएं, जिससे कि कोई भी पात्र विद्यार्थी इस योजना के लाभ से वंचित ना रहे। साथ ही मैं सभी विद्यालय और उच्च शिक्षक संस्थान जहाँ पे भी BD श्रमिक या खदान श्रमिक के बच्चे पढ़ रहे हैं उन संस्थाओं के प्रधान अध्यापक और प्राचार्यों से निवेदन करूँगा कि वह अपना लॉगिन ID पासवर्ड जरूर अपडेट रखें, क्योंकि दो इसमें लॉगिन ID पासवर्ड बनते हैं, एक हेड ऑफ इंस्टीट्यूट का बनता है और एक IUNO लेवल का। तो यदि कोई शिक्षक का स्थानांतरण हो गया है या नोडल ऑफिसर का स्थानांतरण हो गया है तो वह अपनी IDs जो है अपडेट करें, जिससे कि आगे सत्यापन कार्य में कोई बाधा उत्पन्न ना हो।
0: जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि विद्यालयों और महाविद्यालयों के प्राचार्यों से आपका क्या निवेदन है, आकाशवाणी के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे?
1: वो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सभी विद्यालयों महाविद्यालयों में दो स्तर के लॉगिन ID जैसे कि हेड ऑफ इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर के लॉगिन ID बनती है और साथ में विद्यालय और संस्थान का जो है पंजीकरण होता है, लॉगिन ID डाइस कोड जो है क्रिएट किया जाता है, तो वो सारी प्रक्रिया कर ले और जैसे ही उनके पास यदि आवेदन आता है तो बिना विलंब किए वो तुरंत उस आवेदन को सत्यापित करें और सत्यापन करने के बाद वह आवेदन हमारे डिपार्टमेंट के पास जो स्टेट नोडल ऑफिसर जो नियुक्त होते हैं उनके पास आ जाता है सत्यापन प्रक्रिया के लिए।
0: जी, इस योजना में आवेदन करने में कोई शुल्क लगता है क्या?
1: यह आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है।
0: जी, यदि किसी को छात्रवृत्ति योजना से संबंधित और जानकारी चाहिए तो वे कहाँ संपर्क कर सकते हैं?
1: बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा श्रम कल्याण संगठन पूरे मध्य प्रदेश कार्य करता है, इसका जो क्षेत्र है पूरा मध्य प्रदेश है और इसका श्रम कल्याण संगठन का मुख्यालय जबलपुर है जहाँ पे मैं पदस्थ हूँ और हमारे डिपार्टमेंट के 35 BD एवं खदान श्रमिक कल्याण निधि औषधालय हैं विभिन्न क्षेत्रों में पूरे मध्य प्रदेश में, तो उन औषधालयों के माध्यम से भी इस योजना की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। साथ ही हमारे मुख्यालय का दूरभाष क्रमांक है, मैं सभी श्रमिकों से बोलना चाहूंगा कि इसको नोट कर लें, 0761-403-9510, इस नंबर पर भी इस योजना की पूरी जानकारी आपको
0: एक बार और बता दें।
1: जी बिल्कुल, हमारे मुख्यालय जबलपुर का जो है दूरभाष क्रमांक है 0760761, ये कोड हुआ 403-9510, इस नंबर पर आप कॉल करें, आपको इस योजना की पूरी जानकारी दी जाएगी।
0: अंत में आप विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: ये मैं सभी विद्यार्थियों से यही आग्रह करता हूँ कि अंतिम दिनांक का इंतजार ना करें और आज ही जो हमने इस वार्ता में जो भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं वो उनके साथ जो है आज ही इस योजना में अपना आवेदन करना सुनिश्चित करें।
0: अंत में चलते चलते कुछ और विशेष महत्वपूर्ण चीज जो छूट गई है शेयर करना चाहेंगे?
1: मुझे लगता है कि मैंने इस पूरी वार्ता में सभी महत्वपूर्ण
0: सभी बिंदुओं पर
1: चर्चा हो गई है और यदि फिर भी यदि कहीं पे भी किसी श्रमिक को इस योजना के बारे में कोई भी जानकारी चाहे तो
0: बिना किसी नंबर पर संपर्क कर
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी। भारत सरकार

0: रोजगार मंत्रालय श्रम कल्याण संगठन द्वारा चलाई जा रही छात्रवृत्ति योजना के बारे में आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, और उम्मीद करते हैं कि जो लाभार्थी हैं बिल्कुल लाभ लेंगे। नवीन वैद्य जी, आप हमारे कार्यक्रम में भाग लिए, इतनी अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: हमने नवीन वैद्य और राजेश की या भेंटवार्ता सुनी। अब एका साथ घड़ी मारे इशारों करी रही है, तमसे लूँगा अनुमति। राम राम।

खेती गृहस्थी, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: सुर्खियों में
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए पद्म पुरस्कार 2026 पर विशेष रिपोर्ट।
2: कार्यक्रम सुर्खियों में के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज पाठक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इस समारोह में कुल 65 पद्म अलंकरण दिए गए। इनमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। हर वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। इस वर्ष सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार सम्मिलित हैं। इस वर्ष का पहला नागरिक अलंकरण समारोह 25 मई को आयोजित किया गया। इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 66 प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सम्मान सम्मिलित थे। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मान दिया जा रहा है। इसके अलावा कुछ पुरस्कार प्रवासी भारतीयों और विदेशी नागरिकों को भी प्रदान किए जा रहे हैं। आइए अब पद्म पुरस्कारों की शुरुआत और उनके सफर पर एक नजर डालते हैं।
3: भारत सरकार ने 1954 में भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की शुरुआत की थी। तब से ये पुरस्कार हर वर्ष प्रदान किए जाते हैं। हालांकि वर्ष 1978, 1979 और 1993 से 1997 के दौरान इन पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी। समय के साथ इन पुरस्कारों का स्वरूप विकसित हुआ और आज पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण उच्च कोटि के विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। वहीं पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में पद्म पुरस्कारों की एक विशेष पहचान बनी है। अब इन पुरस्कारों को केवल बड़े शहरों या चर्चित नामों तक ही सीमित नहीं रखा जाता। देश के दूरदराज क्षेत्रों में काम करने वाले अनेक ऐसे लोगों को भी सम्मानित किया जा रहा है, जिन्हें अक्सर अनसंग हीरोज कहा जाता है। पद्म पुरस्कारों की एक और विशेषता ये है कि इनके लिए नामांकन प्रक्रिया आम नागरिकों के लिए खुली है। कोई भी व्यक्ति किसी योग्य नागरिक का नाम प्रस्तावित कर सकता है। स्वयं नामांकन की भी व्यवस्था है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि समाज के विभिन्न वर्गों से प्रतिभाशाली और समर्पित लोगों की पहचान हो सके। प्राप्त नामांकनों पर विचार करने के लिए हर वर्ष एक पद्म पुरस्कार समिति गठित की जाती है। इस समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं। समिति में गृह सचिव, राष्ट्रपति सचिवालय के प्रतिनिधि और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं। समिति की सिफारिशों पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद अंतिम सूची जारी की जाती है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रपति

0: के हस्ताक्षर युक्त प्रशस्ति पत्र और पदक प्रदान किया जाता है। उन्हें पदक की एक छोटी प्रतिकृति भी दी जाती है जिसे वे औपचारिक अवसरों पर धारण कर सकते हैं। आमतौर पर एक वर्ष में दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों की संख्या 120 से अधिक नहीं होती। हालांकि मरणोपरांत दिए जाने वाले पुरस्कारों और विदेशी नागरिकों या प्रवासी भारतीयों को दिए गए पुरस्कारों को इस संख्या में शामिल नहीं किया जाता। ये सम्मान कला, समाज सेवा, सार्वजनिक जीवन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल तथा लोक सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा भारतीय संस्कृति के संरक्षण, मानवाधिकारों की रक्षा और वन्यजीव संरक्षण जैसे क्षेत्रों में योगदान देने वाले लोगों को भी इन पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है।
1: इस वर्ष 5 हस्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इनमें अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को मरणोपरांत कला के क्षेत्र में, पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस को लोक मामलों में, प्रसिद्ध वायलिन वादक एन राजम को कला के क्षेत्र में, वरिष्ठ पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन को मरणोपरांत लोक मामलों के क्षेत्र में पद्म विभूषण प्रदान किया गया। इस वर्ष 13 हस्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनमें प्रसिद्ध पार्श्व गायिका अलका याग्निक, अभिनेता ममूटी, उद्योगपति उदय कोटक और पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृत राज जैसे जाने माने नाम सम्मिलित हैं। इसके अलावा चिकित्सा, समाज सेवा, कला और लोक मामलों के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली कई अन्य हस्तियों को भी यह सम्मान दिया गया। इनमें डॉक्टर नूरी दत्तात्रेयडू, भगत सिंह कोश्यारी, के आर पलानी स्वामी, एस के एम मेलानंदन, शतावधिनी आर गणेश और वेलापल्ली नटेशन शामिल हैं। वहीं पीयूष पांडे, शिबू सोरेन और वीके मल्होत्रा को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इस वर्ष 113 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया। कला और संस्कृति के क्षेत्र में अभिनेता प्रोसेनजीत चटर्जी, लेखक शिव संकरी, संगीत साधक तारुण भट्टाचार्य और तृप्ति मुखर्जी को सम्मानित किया गया। वहीं विज्ञान, शिक्षा, चिकित्सा और समाज सेवा के क्षेत्र में भी अनेक व्यक्तित्वों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर की समाजसेवी डॉक्टर बुधरी ताती को समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पिछले 40 वर्षों से वे आदिवासी महिलाओं और वंचित समुदायों के उत्थान के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के सैकड़ों गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया। इसके साथ ही उन्होंने आदिवासी महिलाओं को सिलाई जैसे कौशल सिखाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आकाशवाणी समाचार ने उनसे विशेष बातचीत की, आइए सुनते हैं उसके कुछ अंश।
2: बुधरी ताती जी, आपका बचपन कैसा था और समाज सेवा की भावना आप में कब जागी, इसके बारे में हमें बताएं।
3: गांव ईरानार में ही मेरा जन्म है। यहां से 2 किलोमीटर दूरी पे तातीपारा में है और बालकाल में हमने माँ के साथ रहते रहे। हम किसान के परिवार की हूँ और गरीब घर की हूँ, तो उस समय लगभग 8-9 साल के थे। तब से माँ बाप के साथ पे माँ के साथ काम करते थे। फिर 8-9 साल की और छोटे थे तभी एक ही दिव्य जीवन संघ घुमर गुंडा, वहाँ पर पैदल पैदल जाते थे, वहाँ काम करते थे सेवा भाव पे। और बचपना में मेरा ऐसा ही आम लोग जैसा है ऐसा ही जीवन बीता है।
2: आपने बस्तर संभाग के 500 से अधिक गांवों में पैदल यात्रा करते हुए लोगों को जागरूक बनाया, अपनी इस यात्रा के अनुभव के बारे में हमें बताएं।
3: इसमें तो उनको जागरूकता लाना है तो हमने पैदल इसलिए घूमे हैं कि जब तक हम उनके पास नहीं जाएंगे, हम उनके समस्या से लेकर उनका शिक्षा से लेकर जो भी करना चाहते हैं, जब तक उनके पास नहीं जाएंगे हमको समझ में नहीं आता है। हम उनके पास जाना है, उनके साथ घूमते हुए ये सब परिस्थिति देखने के बाद बहुत कठिनाई भी आया है। तब हमको समझ में आया कि इनके बीच में काम करना है तो क्या क्या चीज हो सकता पड़ेगा, सब यात्रा में देखने को मिला है।
1: पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध संथाली साहित्यकार रविलाल टुडू को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के नुवारा गांव में जन्मे रविलाल टुडू संथाली भाषा और साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षरों में से एक थे। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से संथाली भाषा, संस्कृति और परंपराओं को नई पहचान दिलाने का काम किया। वे नाटक, कहानी और रेडियो लेखन के क्षेत्र में विशेष रूप से सक्रिय रहे और उनकी रचनाएं आम लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय रहीं। उनके योगदान को देखते हुए उन्हें वर्ष 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार,

0: और वर्ष 2022 में वंगभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। इस वर्ष उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया है। जून 2026 में उनके निधन के बाद ये सम्मान उनके लंबे साहित्यिक और सांस्कृतिक योगदान को श्रद्धांजलि के रूप में भी देखा जा रहा है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी से उनकी बातचीत के कुछ अंश।
1: आपकी एक रचना है परसी खतीर, जिसके लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। इस रचना के बारे में हमें बताएं।
2: किताब एक ड्रामा का है, परसी खतीर। परसी खतीर के लिए ही सब कुछ मिल रहा है। वो तो एक हमारा जो भाषा के लिए आंदोलन था, भाषा स्वीकृति के लिए, जो 8वां तफसील में हमारा भाषा का स्वीकृति मिला है, ये भाषा आंदोलन का जो हिस्ट्री था वही हम ड्रामा का रूप में लिखा है।
1: लेखन के प्रति आपकी रुचि कब से शुरू हुई?
2: वो तो स्कूल लाइफ से, हाई स्कूल में जब पढ़ता था उसी टाइम से हम शुरू किया है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग ड्रामा लिखा है, प्रेजेंट किया है, परफॉर्म किया है, ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए।
1: आपके अनुसार मातृभाषा में शिक्षा क्यों आवश्यक है?
2: देखिए, जिसका मातृभाषा नहीं है उसका एडुकेशन भी नहीं होता है। दूसरा भाषा लेके आप एडुकेशन कितना टूट जाएंगे, ये तो संभव नहीं है। इसलिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सबको मातृभाषा से ही होना चाहिए। यही हमारा टारगेट भी था, लड़ाई भी था, काम भी ऐसा ही हम लोग करते आए हैं।
0: डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले को जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संयुक्त रूप से पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया है। पिछले 3 दशकों से अधिक समय से वे छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के दूरदराज और आदिवासी बहुल इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने, कुपोषण से लड़ने और स्थानीय समुदायों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं।
3: डॉक्टर रामचंद्र, ये बताइए कि जब आप बस्तर पहुंचे तो आपने बारसूर में रहना शुरू किया और फिर यहाँ से गतिविधियाँ शुरू की, कितना चैलेंजिंग था आप लोगों के लिए और कैसे आप लोगों ने इन चैलेंज का सामना किया?
4: भुजबाड़ में जाना आना तो काफी कठिन ही था उस समय। हमारे साथ कुछ माड़िया आदिवासी लड़कियाँ थी, उनके साथ ही हम लोग जंगल जाते थे, उनके साथ ही अबूझमाड़ में गए थे।
3: महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर हमेशा प्रश्न रहता है, शहरी समाज में भी है, फिर आप तो अबूझमाड़ और बस्तर के दूरस्थ क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वहाँ आपने क्या देखा?
5: वो क्षेत्र ही पूरा बुनियादी सुविधाओं से वंचित था, तो हम लोग महिला चेतना शिविर जो लेते थे उसमें ये सब बातें रहते। अभी बहुत सारा है क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने के बाद बहुत कुछ माहौल बदला है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में सुधार आया है।
0: अशोक कुमार सिंह को कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के पूर्व निदेशक रहे हैं। डॉक्टर सिंह को बासमती और पूसा धान सहित धान की कई उन्नत प्रजातियों के विकास के लिए जाना जाता है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी समाचार से उनकी विशेष बातचीत के कुछ अंश।
6: इस बार आपको साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपके किस योगदान को लेकर इस सम्मान से आपको सम्मानित किया जा रहा है?
7: मुझे जो पुरस्कार दिया गया है इस बार वह विशेष रूप से बासमती चावल के उन्नत प्रजातियों के विकास के ऊपर दिया गया है। बासमती हमारे देश की एक महत्वपूर्ण धरोहर है, इसकी खेती सदियों से हमारे देश में होती आ रही है।
6: इसमें बार बार सुधार की जरूरत क्यों पड़ी?
7: जो हमारी परंपरागत किस्में थी अधिक ऊंचाई होने के कारण गिर जाती थी और उनकी पैदावार बहुत कम होती थी, तो इसको पैदावार में वृद्धि करना, ऐसी प्रजातियों का विकास करना जो अधिक उपज देने वाली हो, एक तो मुख्य लक्ष्य ये था। दूसरा, तमाम तरह की बीमारियां और कीड़े चावल में लगते हैं, तो किस प्रकार से हम रोग रोधी और कीट रोधी किस्मों का विकास करें, एक मुख्य लक्ष्य शोध का था।
6: हमारे पर्यावरण के अनुकूल जो पैदावार है उसको बढ़ाने में किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं?
7: क्लाइमेट रिजिलियंट वैरायटीज, ये एक विशेष शोध परियोजना है जिसके अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थानों में और कृषि विश्वविद्यालयों में कार्य किया जा रहा है।
0: आज का समारोह भारतीय खेल प्रेमियों के लिए भी विशेष महत्व रखता है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। रोहित शर्मा ने अपने खेल प्रदर्शन, नेतृत्व और उपलब्धियों से भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम ने 2 ICC खिताब जीते। उनकी उपलब्धियां केवल रिकॉर्ड तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को भी प्रेरित किया है। इसी तरह भारतीय महिला हॉकी टीम की अनुभवी खिलाड़ी सविता पूनिया को भी पद्मश्री प्रदान किया गया। भारतीय

0: महिला हॉकी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पद्म पुरस्कार केवल सम्मान नहीं है, बल्कि वे राष्ट्र की ओर से उन व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति हैं, जिन्होंने अपने कार्यों से समाज और देश के जीवन को बेहतर बनाने में योगदान दिया है, चाहे वह कला का क्षेत्र हो, साहित्य, शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, खेल, समाज सेवा या उद्योग जगत। पद्म पुरस्कार देश के विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पहचान देते हैं। पद्म पुरस्कारों के माध्यम से राष्ट्र ऐसे ही व्यक्तित्वों को नमन करता है और उनके योगदान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। आज के कार्यक्रम सुर्खियों में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया था हमारे सहयोगी अनिकेत ने।
1: अभी आप सुन रहे थे पद्म पुरस्कार 2026 पर विशेष रिपोर्ट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं।

शेर गोई और तरानों के साथ लेकर हाजिर हूँ मैं मनीष कुमार सोनी, आपका रेडियो दोस्त। कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। मैं था तन्हा सा किसी मोड़ पर खड़ा, फिर तू मिली तो हर रास्ता अपना सा लगा। अब कहानी में न कोई किरदार जरूरी है, बस एक मैं, एक तू और मोहब्बत मोहब्बत।

फूलों से बात हुई तो वो हंसने लगे, तेरा जिक्र छेड़ा तो और महकने लगे। पूछा हमने, इतना नूर कहाँ से लाते हो? बोले, तेरी यादों के रंग हम पर सजने लगे हैं, बस वहीं से लाते हैं।

बारिशों का मौसम आ गया है और दिल ने तुम्हें फिर याद किया। सुना ना, बारिशों का मौसम आ गया और दिल ने तुम्हें फिर याद किया। चाय की चुस्कियों के साथ ढलती शाम से जाती हुई रात तक दिल ने तुम्हें फिर याद किया। चेहरे का जादू कुछ ऐसा चला तुम्हारा कि हर एक दिल तेरी तरफ ही ढला। नजरें मिली तो वक्त ठहर सा गया, एक मुस्कान ने पूरा जहां बदल दिया। चेहरे का जादू है या कोई करिश्मा तेरी अदा का, जिसे भी देखा तुझे वो कायल हो गया वफा का।

मैं कुछ लिख रहा था। वो गीत था ना, मुकेश और लता मंगेशकर का गाया हुआ गीत, वो सुना मैंने और डायरी उठाई, लिखने लग गया। क्या लिखा बताऊं? मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, ये वादा रहा। मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा, ये वादा रहा। दूर रहकर भी दिल से तेरा नाता रहा। वक्त वक्त बदले, मौसम बदले, बदल जाए जहां, मेरी यादों में तेरा नाम हमेशा जिंदा रहे। और भी लिखा है, मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा, ये दिल की बात है। मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा, ये दिल की बात है। तू मेरी यादों में आज भी उतनी ही खास है।

कुछ चीज़ें वजह नहीं पूछती, बस अच्छी लगती है। लहरों का किनारों से रिश्ता है ना, लहरों का किनारों से रिश्ता, बस वैसा ही कुछ। और कुछ आदतें दिल को बड़ी अच्छी लगती है। कुछ चीज़ें वजह नहीं पूछती, बस अच्छी लगती है। जैसे जैसे जैसे

अब देखो देखो, बातों ही बातों में बारिश का मौसम भी आ गया और झड़ियाँ लगेंगी सावन की। आने वाले सावन में तुमने कहा था ना कि बारिश की हर बूंद में मेरा नाम सुनोगे। सावन तो आया, बादल भी खूब बरसे, पर तुम बिन ये मौसम अधूरा सा लगा। हाँ हाँ, ये बस बीते हुए साल की ही तो बात थी। अब आने वाले सावन में तुमने कहा था हम फिर मिलेंगे, ये वादा किया था। सावन तो हर साल की तरह लौट आया, लेकिन तुमने अपना वादा नहीं निभाया, तो ये वादा करोगी ना?

0: शामें बदली, कितनी ही शामें बदली, मौसम बदले, लेकिन दिल ने हमेशा तुम्हें याद किया। कार्यक्रम को अब यही संपन्न करते हैं और इजाजत मनीष कुमार सोनी को, दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। और अब वक्त हो चला है समाचार संध्या का, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारण का।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी, आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और

0: शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
1: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूडी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पत्ति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेके के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के सातवें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि ये समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक एलपीजी वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
3: रास लफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
3: ब्रिक्स एनएसए की मीटिंग चल रही है, कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहां के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे एनएसए की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फिलिस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
3: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ UNRWA के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
0: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्से सेक बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीड के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार सीयूईटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात $1.84 ट्रिलियन तक पहुंच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए।
4: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज। एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
0: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 के गोल से हरा दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रगीत। सबसे पहली रचना आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाजों में, फिल्म चलती का नाम गाड़ी से।

मजरूह सुल्तानपुरी की ये गीत रचना भी आपने सुनी। और आइए अब सुनवाते हैं आपको फिल्म चोरी चोरी से लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ें हैं, हसरत जयपुरी की गीत रचना है और शंकर जयकिशन का संगीत।

लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ों में सुनिए फिल्म श्री 420 का ये गीत। शैलेंद्र ने गीत के बोल लिखे हैं और संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ चित्रगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से आप सुन रहे थे कार्यक्रम

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम कहकशां। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: मीडियम वेव 462.9 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम मन भावन।

मन भवन कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मनीष कुमार सोनी का प्यार भरा नमस्कार। लेकर हाजिर हूं मैं आपका पसंदीदा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भवन। बहुत से खत हाथों में आते हैं, कई खत पढ़ नहीं पाते, समय की हमारे साथ बाध्यता रहती है, घड़ी की सुइयां भी कई बार इशारा कर रही होती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा आपके खत पत्र हम शामिल कर सकें, आपका वो प्यार हम आप सभी के साथ फिर से बांट सकें। तो लेते हैं पहला पत्र जो आया है हमें ब्रह्मपुरी कॉलोनी इंदौर से। लिखने वाले हैं दिनेश कुमार हारडिया, ज्योति, राहुल हारडिया, अजीत, अनुराग, कविता हारडिया और साथ ही लिखा है हेमंत ने। ग्राम बुड़गान छत्तीसगढ़ से हमें लिख भेजा है राम दुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश, चंद्रकला और शशिकांता ने। गांव लोहगढ़ ठाकरा फिरोजपुर से चिट्ठी आई है स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अभिराज सिंह, गुरमान सिंह और पोतरा गुरनूर सिंह की। दौलतबाग मुरादाबाद से भी एक पत्र आया है, लिखने वाले हैं जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी। भीगन गांव से चिट्ठी आई है संतोष सातले, चंदन सातले, सारिका सातले, रोहित सातले, शुभम, शैलेंद्र, कंचन भाई और उनके परिवार के सदस्यों की। श्री कृष्ण बाठे, संदीप, अमूल्य और वैशाली ने लिखा है हमें धांडी नादुरा महाराष्ट्र से। शाहूनगर यवतमाल से लिख भेजा है हमें राहुल मनवर, सल्ला मनवर, रोशनी, चेतन, विशाल और बेबी प्रियांशी ने। पीरानपीर रोड सनावत से लिखा है हमें माणकचंद राठौर और उनके सभी परिवार के सदस्यगणों ने। सोनाला से एक पत्र आया है संग्रामपुर से सैयद आरिफ, जुनेद बैग, नाजिम अली और मास्टर मोहित अली का। नांदेड़ महाराष्ट्र से एक और पत्र आया है नारायण गायकवाड़, दयानंद, ओमकार, साई, नरवेल और बुल्डाना से हमें लिखा है पीएस नागकर और विशाल नागकर ने। इंदौर से एक और चिट्ठी आई है, लिखने वाले हैं रवि, ईश्वरी, आदित्य, रोशनी और कीर्तिमान उर्फ चीकी। तो आप सभी की फरमाइश पर लीजिए हाजिर हैं आपकी पसंद का वो गीत जो आपने चुना है फिल्म अजनबी से। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी के बोल हैं और राहुल देव बर्मन का संगीत।

इंदु जैन के बोल हैं और राजकमल का संगीत है, यशुदास और हेमंती शुक्ला की आवाज़ें हैं। फिल्म है चश्मे बद्दूर और पसंद करने वाले हैं आप सभी। हिंगोली से पत्र आया है रामचंद्र इंगोले, सिद्धांत टिंकू, रमाबाई, मयूरी, सुरभि, मंजूषा, गौतम का। महाराष्ट्र से एक चिट्ठी आई है पार्वती, सखाराम, दीपाली, राजू, रोहित, सोनू, मोनू, ठोके की। झुमरी तलैया से लिख भेजा है देव इंगोले, छकुली इंगोले, छोटू दादा, टेलर आर डी इंगोले ने। मक्सी से दयाराम जाटव इस गीत के ख्वाहिशमंदे, साथ हैं चैन सिंह आरोल, अनुराम कंसोटिया, नंदकिशोर कंसोटिया और दीपक कंसोटिया। कंवर कॉलोनी बढ़वा से चिट्ठी आई है प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली की। खंडवा से एक चिट्ठी आई है घंटाघर चौक से, लिखने वाले हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। हिंगोली से एक और चिट्ठी है शाहजी बोड़के, नंदा बोड़के, हनुमान, सारिका, सुरेखा, आरवी और उनके परिवार के सभी सदस्य। ये चिट्ठी आई है चांदूर बिस्वा से, किशोर वानखेड़े, उषा वानखेड़े, विशाल वानखेड़े, राजूर, राहुल गवई और राजवीर गवई की। सादुल शहर से ओम प्रकाश चौहान, मन्नू प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान ख्वाहिशमंद है। खंडवा मध्य प्रदेश संजय कॉलोनी से भी एक और पत्र है अब्दुल गफार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक, अब्दुल रहमान, अब्दुल कादर, मोहम्मद हमजा और अब्दुल रशीद खत्री। राजेंद्र नगर गंजवासोदा विदिशा से हमें लिख भेजा है भागचंद साहू, राज, प्रेम भाई, करिश्मा, अजय और उनके संगी साथियों ने। एक और खत आया है इंदौर से सृष्टि उपाध्याय का, रेलवे कॉलोनी बठिंडा से लिखने वाले हैं जगमाल सिंह डगला, हैप्पी डगला, जेएस नायक और शोभा नायक। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से लिखने वाले हैं नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम। ताज मंजिल लकड़ बाजार खंडवा से लिखने वाले हैं मोहम्मद रफीद पवार, मोहम्मद साकेब, मोइन छोटू, मोहम्मद हसनैन। ग्राम दीवाल से लिखने वाले हैं शंकरलाल गंगराड़े, वनिता गंगराड़े, छोटू, पूजा, रोशनी और अजय गंगराड़े। अहमदपुर खैगांव से लिख भेजा है कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली, समर और वेदिका फूलमाली ने। आप सबकी फरमाइश पर लीजिए हाजिर है आपकी पसंद का ये गीत।

और अब लेते हैं कुछ अगले पत्र जो हमें लिख भेजे हैं सारणी जिला बैतूल से। अमित खातरकर, निहारिका, शिवपाल, यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि बाग, पंजाब राव निम्बालकर और संदीप पाटिल ने गांव बिडुल उमरखेड़ से लिखने वाले हैं। गंगाधर पोपलवाड़, सम्यक, प्रियंका और स्वरित के साथ साथ लिखा है उत्तम जमधाड़े ने। मलुट कैंप पंजाब से चिट्ठी आई है। सतीश बिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, विवान, लखविंदर सिंह, महावीर, संधु, गुरचरण गरोवर और रमेश मिगलानी की। इंदौर से हमें लिखा है मुखर्जी नगर से जगदीश चौहान, ललिता चौहान, अन्नु, विशाल, उर्वशी, आरती, सतीश, प्रियंका, प्रियवर्णी, ख्याति, लड्डू, बुलबुल, वर्णिका, शौर्य, मुन्नू, बसंती बाई, किशन लाल, महेंद्र, मालती, अर्चना चौहान, विक्की और कुमारी मधु ने हमें लिखा है। दिल्ली शहर मोरी गेट से हमें चिट्ठी आई है कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार की। द्वारकापुर इंदौर से ख्वाहिशमंद है अगले गीत के लिए जो आप सुनेंगे। राजेंद्र शर्मा, भावना शर्मा, जयदीप शर्मा, अर्पिता, हिमांशु, औशीन, अद्विका और निशिता शर्मा के साथ साथ समस्त परिवार के सदस्य। नसवाला चौक मलकापुर से लिखने वाले हैं संजय पाटिल, सौभाग्यवती उषा, प्रथमेश, निवृत्ति क्षीरसागर, जगदीश तांकट और सतीश सराफ। सुरेश नारंग और आशा नारंग ने हमें लिखा है सहारनपुर से और पंजोनिया जालून यूपी से यानी उत्तर प्रदेश से हमें चिट्ठी आई है। सत्येंद्र कुमार चंदसोलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक और उनके परिवार के सदस्यों की। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज झा ने हमें लिखा है आजहर नगर हरिद्वार से। औरंगाबाद से चिट्ठी आई है राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राजेश राशि राजेश और शीतल राजेश की। मनु ठाकुर, योगेंद्र सिसोदिया और उनके सभी परिवार के सदस्यों ने लिखा है हमें देवास से। नंदानगर सुलगांव से चिट्ठी आई है नंदराम मंशारे, हरी, रिंकी, रेखा, रीना, वर्षा, राजकुमार मंशारे और उनके परिवारजनों ने। शास्त्री नगर खंडवा से चिट्ठी आई है रमेश पंचोली, नीनू देवी, प्रकाश उर्मिला, दीपक, दीपिका पंचोली, नंदनी, निखिल और गौराज पंचोली की। एक चिट्ठी आई है दरियापुर बामड़ी महाराष्ट्र से, लिखने वाले हैं गजानन येले, नवदीप येले और साथ ही अकोला से लिखने वाले हैं बलदेव दामोदर, अरुणा दामोदर। यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से लिखने वाले हैं दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार। आप सभी ने पसंद किया है फिल्म चोरी चोरी का वो गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर और मन्ना डे ने और इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने।

अगली चिट्ठियों में आई है हमारे पास ये चिट्ठी, मुकेश कुमार वर्मा, माया अंबाराम, रतिन राज, मोहनलाल खरीवाल, विनोद कुमार शर्मा की, एमबीबी रोड ताल, जिला रतलाम से। नांदखेड़ वाशिम से लिखने वाले हैं अशोक, दिनेश, रूपेश, दिल्लाबाई, चैताली और प्रीति चांदने। गोवर्धन वाशिम महाराष्ट्र से चिट्ठी आई है, रविंद्र पवार, मीना ताई, श्रीकांत, एकनाथ काले और आशा ताई काले की। शिवाजी चौक छत्तीसगढ़ से लिखने वाले हैं अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा से चिट्ठी आई है, दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा, श्वेता देवी, सुरुचि, दिशा और लंबी लवी श्रीवास्तव की। नेपाल पैलेस सागर से चिट्ठी आई है, तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन की। शांतिनगर इंदौर से सुनना चाहते हैं खुशी खर्चे, ब्रोनो खर्चे, गणेश कार्तिक, संजना परी, ललिता नारायण, स्वाति प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी। मरवड़ बकाल से चिट्ठी आई है, नारायण हागे, कमल, दिव्या और जय की। गुरु चौक पोफाली उमरखेड़ से लिखने वाले हैं गणेश राव, विमलताई, विनायक और उनके परिवार के सभी सदस्य। विजय चौहान, तेजस्वनी, अंकिता, अनिकेत और माया चौहान ने हमें लिखा है कोल्हापुर से। साथ ही एक और चिट्ठी आई है चंदननगर सातारा से, सतीश, आतिश, स्वाति, वर्षा, श्रमण और शमीण वाघमारे की। पाठर कवड़ा से लिखने वाले हैं अनिल बुरांडे, उषा, प्राची, अनुषी, धनश्री, विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशील, नीलम, बी के, कैलाशपुरी, रामापुरी और आर एस पुरी ने हमें लिखा है लुधियाना पंजाब से। डब्बाली हरियाणा से ख्वाहिशमंद है जे के बोकोला, सुनीता, संजय और मीनू। जामरून से चिट्ठी आई है दुर्गादास जोशी, गंगाधर, गजानन, संजय जोशी, आशीष, पृथ्वीराज और साध्वी के साथ साथ लिखा है परभणी हुण से गणेश हरगांवकर ने। सुधीर नूतन, मीनाक्षी तिवारी और सुनीता शर्मा ने हमें लिखा है करनाल से। लावरिया भेरू इंदौर से लिखने वाले हैं अनिल बामनिया, प्रमीला बामनिया, नंदनी, मुस्कान, नीलम, सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक और करनाल केतन के साथ साथ उनके परिवार के सभी सदस्य। और इस गीत के लिए ये एक आखिरी चिट्ठी है जो हमें लिखा है महाराष्ट्र से बसंत हजारे, प्रमोद, महेश, आदित्य और मितांशु हजारे ने। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म माय लव का ये गीत जिसे गाया है आशा भोसले और दान सिंह ने।

तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ अब संपन्न होता है कार्यक्रम मन भावन रहेगा। हमें आपके पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार हमेशा की तरह। आप पता नोट कर लीजिए, पता है कार्यक्रम मन भावन द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी मालवा हाउस इंदौर मध्य प्रदेश, पिन कोड है 452001। तो आपके पत्रों के इंतज़ार के साथ साथ हम हमेशा पेश करेंगे आपके लिए आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। इसी तरह मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। और अब दीजिए इजाजत मनीष कुमार सोनी को, नमस्कार।

मन भावन, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पंडित जी आर बेहरे का गाया राग शुद्ध कल्याण। विलंबित एक ताल में निबद्ध रचना अभी आपने सुनी। शास्त्रीय संगीत का प्रसारण आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से किया गया।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचारों को हम रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रस लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। साथ ही भारत कतर सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार एलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: एलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों की व्यापक निगरानी के लिए सहमत हो गया है। इसके बदले अमेरिका हार्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील देगा और कड़े नियमों के तहत रोकी गई वित्तीय रियायतें जारी करेगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने मौजूदा कूटनीतिक बातचीत के दौरान लचीला रुख अपनाया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने परमाणु निगरानी ढांचे के दायरे को लेकर अमरीका के दावों को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्पष्ट किया कि ईरान ने अपने विशिष्ट परमाणु केंद्रों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसियों द्वारा निगरानी के लिए कोई सहमति नहीं दी है। पुरुष हॉकी में भारत ने एफआईएच प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।